सुप्रभात श्रोताओं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त सन 2026 ईस्वी। सुबह की 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

सुबह की 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

0: यह आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण

0: तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The nation celebrated its 80th Independence Day yesterday. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag from the ramparts of the Red Fort and made several important announcements. Addressing the nation, the Prime Minister said, over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। श्रोताओं, सुबह की पहली किरण जब धरती को छूती है तो ऐसे लगता है जैसे प्रकृति स्वयं हमें यह संदेश दे रही हो कि बीती हुई रात चाहे कितनी भी गहरी रही हो, हर सुबह अपने साथ प्रकाश लेकर आती है। और शायद यही अध्यात्म भी है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, अशांति से शांति की ओर बढ़ना, अहंकार से समर्पण की ओर बढ़ना और स्वयं से मिलते हुए परमात्मा तक पहुंचना। श्रोताओं, भक्ति वह भाव है जिसमें मन कृतज्ञ हो जाता है, वाणी में मधुरता आ जाती है, कर्म में पवित्रता आ जाती है और जीवन में दूसरों के लिए करुणा जन्म लेती है। इसी पावन भाव के साथ आइए आज की सुबह को प्रभु स्मरण से आरंभ करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं।

श्रोताओ, गणपति का स्मरण केवल किसी कार्य के आरंभ की परंपरा नहीं है, बल्कि एक सुंदर जीवन दर्शन भी है। हम कहते हैं श्री गणेश करना, अर्थात किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ संकल्प से करना। गणेश जी का विशाल मस्तक हमें विवेक और व्यापक सोच की प्रेरणा देता है। बड़े कान कहते हैं पहले सुनिए फिर बोलिए, छोटी आंखें कहती हैं एकाग्र होकर लक्ष्य को देखिए, और उनका सरल स्वरूप हमें बताता है कि ज्ञान जितना बढ़ता है विनम्रता उतनी ही बढ़नी चाहिए। और जीवन में जब कोई नया रास्ता शुरू करें तो केवल सफलता की प्रार्थना न करें, प्रार्थना यह भी हो कि हे प्रभु, रास्ता कठिन हो तो धैर्य देना, सफलता मिले तो विनम्रता देना, और असफलता मिले तो उससे सीखने की बुद्धि देना। और अब इसी भक्ति भाव को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं उस भूमि की ओर जहां प्रेम स्वयं साधना बन गया, जहां बांसुरी की एक धुन ने संसार को प्रेम करुणा और समर्पण का संदेश दिया। आइए स्मरण करें भगवान श्री कृष्ण का।

श्रोताओं, श्री कृष्ण की जीवन लीला हमें एक अद्भुत संतुलन सिखाती है। वे बांसुरी बजाते हैं तो जीवन में संगीत भर देते हैं, माखन चुराते हैं तो बालपन की निश्चलता दिखाई देती है, मित्रता निभाते हैं तो संबंधों की गरिमा समझ में आती है, और कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बनकर खड़े होते हैं तो कर्म का महान संदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां हमारे हाथ में हमेशा नहीं होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा कर्म कैसा होगा यह हमारे हाथ में अवश्य है। जीवन में भी कितनी ही बार हमारे सामने अपना अपना कुरुक्षेत्र आता है,

कभी निर्णय कठिन होते हैं, कभी रिश्ते उलझ जाते हैं, कभी मन स्वयं अपने ही प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज पाता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का संदेश हमें भीतर से संभालता है, कर्तव्य करते चलिए, परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को मत खोइए, क्योंकि जीवन का सौंदर्य केवल मंजिल में नहीं, उस यात्रा में भी है जो हमें मंजिल तक लेकर जाती है। और अब इसी धर्म मर्यादा और आदर्श की भावना के साथ आइए स्मरण करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का।

श्रुतो राम केवल एक नाम नहीं है, राम एक आचरण है। राम हमें सिखाते हैं कि शक्ति हो तो भी मर्यादा न छोड़ें, अधिकार हो तो भी विनम्र रहें, विपरीत परिस्थितियां आए तो भी सत्य का साथ न छोड़ें। श्री राम की जीवन लीला हमें ये सीख देती है कि मनुष्य की महानता इस बात से नहीं होती कि उसके जीवन में कठिनाइयाँ कितनी कम है, बल्कि इस बात से होती है कि कठिनाइयों के बीच भी उसके संस्कार कितने जीवित रहते हैं। आज के समय में जब जीवन की गति बहुत तेज हो गई है, शायद हमें श्री राम के जीवन से यही सीख लेने की आवश्यकता है। सफल होने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है और बड़ा बनने से पहले भीतर से सच्चा बनना जरूरी है। श्री राम के नाम के साथ ही स्मरण आता है उस महान भक्त का जिसने अपने आराध्य के प्रति समर्पण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की जिसकी तुलना संसार में विरले ही मिलती है, और वो हैं पवन पुत्र हनुमान जी। लीजिए सुनिए हनुमान जी की महिमा।

श्रुतो गुरु, यह केवल एक संबोधन नहीं है बल्कि जीवन की सबसे सुंदर अवधारणाओं में से एक है। गुरु वह है जो हमें केवल ज्ञान नहीं देता है बल्कि ज्ञान को जीने का रास्ता दिखाता है। अंधेरे कमरे में दीपक जला देना सरल है, लेकिन किसी भटके हुए मन को दिशा देना यह गुरु की कृपा है। गुरु हमें ये नहीं बताते हैं कि जीवन में केवल सुख ही मिलेगा, वे हमें ये सिखाते हैं कि दुख आए तो उससे टूटना नहीं है, सुख आए तो उसमें बहकना नहीं, सफलता मिले तो अहंकार नहीं करना और असफलता आए तो स्वयं को समाप्त नहीं समझना। श्रोताओं, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु को इसीलिए इतना ऊंचा स्थान दिया गया है क्योंकि गुरु व्यक्ति को उसके भीतर छिपे प्रकाश से परिचित कराता है। एक अच्छा गुरु हमारे हाथ में तैयार उत्तर नहीं रखता है, वह हमारे भीतर प्रश्न पूछने और सही उत्तर खोजने की क्षमता पैदा करता है। इसलिए गुरु बाहर भी हो सकते हैं और भीतर भी। माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, शिक्षक हमारे ज्ञान के गुरु हैं, अनुभव जीवन का गुरु है, और कभी कभी हमारी अपनी गलतियां भी हमें वह सिखा जाती हैं जो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती है। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा केवल चरणों में सिर झुकाने में नहीं बल्कि गुरु की दी हुई सीख को अपने आचरण में उतारने में है। लीजिए सुनिए गुरुवाणी का शब्द।

0: श्रोताओं, अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन। विषय है जीवन का सार, स्वर श्यामानंद जी का है।
1: संसार में दो तरह की धाराएं बहती है, एक चिंतन की धारा है जो ईश्वर की ओर हमें मोड़ देती है, एक चिंता की धारा है जो संसार की ओर हमें मोड़ती है। अगर हम चिंतन की धारा में बहने लगे तो चिंतन के माध्यम से ईश्वर का सान्निध्यता प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन चिंतन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों को त्यागना जरूरी है, कुछ बातों को समझना जरूरी है, जिसके अंदर अनिवार्यता यह है। जैसे संयोग जन्य, जो संयोग के द्वारा जो सुख की प्राप्ति होती है वो हमें चिंतन की धारा से विमुख कर देती है, तो संयोग के द्वारा जो सुख की अनुभूति हमें होती है उसमें हमें लिप्तता, संसार में आसक्ति, संसार के साथ अपनापन ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें चिंतन की धारा से हम बह जाते हैं। दूसरी बात है, जिस बात को हम भोग करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो भोग से सुख की प्राप्ति नहीं होती। भोग को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। दूसरी बात है विषयों की इच्छा, अगर विषय में आपका मन रमा हुआ है तो विषय से अलग हट करके चिंतन की धारा में बह करके विषय को त्यागना। तीसरी बात है संग्रह की इच्छा, किसी पदार्थों का हम संग्रह कर रहे हैं, संग्रह इतना हम करते हैं, संग्रह करते जाते हैं लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती, त्याग की भावना प्रकट नहीं होती, और एक एक चीज़ को संग्रह करते जाते हैं। जैसे मधुमक्खी शहद को संग्रह करती है, कोई लूट करके ले जाता है, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। संग्रह करना तो हर व्यक्ति को आवश्यक है, लेकिन संग्रह की इच्छा को त्यागना ही सबसे बड़ा त्याग है। एक बात और है कि मन की इच्छा का त्याग, मन में इतने तरंग हमारे उठते हैं जिन तरंगों को मिटाना बड़ा कठिन काम होता है, मन में तरंग उठने की इच्छा को ही त्यागना सबसे बड़ा त्याग माना गया है शास्त्रों में। इस करके मन में जो तरंग उठते हैं, कई प्रकार के तरंग उठते हैं, भावनाओं के तरंग उठते हैं, तरह तरह के जो विचार उठते हैं उन विचारों को त्यागना भी, मन को समझाना या मन को त्याग के माध्यम से ईश्वर की ओर जोड़ना है, ये भी एक चिंतन की एक धारा है। और एक बात और है बड़ाई की इच्छा, इंसान चाहता है दुनिया में बड़ाई हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो, बड़ाई की इच्छा को भी त्यागना इंसान को बहुत जरूरी काम है। इसलिए हर बार अपनी बड़ाई, अपने धर्म की बड़ाई, एक संप्रदाय की बड़ाई, एक व्यक्ति की बड़ाई, अपनी प्रतिष्ठा की बड़ाई, उससे भी इंसान डूबता हुआ जाता है तो चिंतन की धारा वहाँ भी टूट जाती है। इसलिए चिंतन के द्वारा ईश्वर के करीब होने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक बात और है आराम की इच्छा, आराम की धारा को भी त्यागना बहुत जरूरी है। जैसे आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, प्रातःकाल शीघ्र उठें, परमात्मा के भजन में लग जाएं, प्रातःकाल शीघ्र उठें और किसी अच्छे काम पे लग जाएं, तो हमारा शरीर जितना सुस्तता चाहता है इतना ही और आराम भी बढ़ता जाता है, आराम भी बढ़ता जाता है। जितने आराम की इच्छा को त्यागने का अभ्यास करेंगे उतने हम परमात्मा के सान्निध्य में होंगे। जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ने वाला विद्यार्थी सफल होना चाहता है लेकिन आराम को नहीं त्याग सकता, एक व्यापारी है सफल होना चाहता है लेकिन आराम को नहीं त्याग सकता, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति है सफल होना चाहता है लेकिन आराम को नहीं त्याग सकता। आराम जितना त्यागते हुए जाएंगे उतना ही हम परमात्मा के करीब होंगे और अपने कार्य में सफल होते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है भोगों की इच्छा का त्याग। हमारे मन में तो भोग की बड़ी लालसाएं बढ़ती रहती है क्योंकि संसार को भोगों के द्वारा तृप्त कभी नहीं किया जा सकता। जितना भोगों को त्यागने की इच्छा हमारे मन में प्रकट होगी उतना हम भोगों से दूर होते जाएंगे। इसलिए भोगों का त्याग, एक एक चीज़ का त्याग हम करते जाएं उतने हम निर्मल बनते जाएंगे, ईश्वर के करीब होते जाएंगे, परमात्मा के करीब होते जाएंगे। हमारी आत्मा तो निर्मल है ही पहले से ही, लेकिन मन को विकारों ने घेर रखा है। जैसे प्याज के छिलके होते हैं, एक एक छिलके को उतारते जाओ अंदर प्याज का कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे मन के अंदर विकार को उतारते जाएं तो विकार शून्य मन होने के बाद अपने आप आत्मा में तृप्ति आती है और चिंतन की धारा हमारी अविरल गति से बहने लगती है, तो ये जीवन का सार होगा।
0: श्रोताओं, अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। विषय था जीवन का सार, वाचक स्वर श्यामानंद जी महाराज का था। मीडियम वेव 326.2

0: 7 9 मीटर पर यह आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए अब सुनिए हमारे चैनल से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में सवेरे 7:10 पर प्रगतिशील किसान भाइयों के लिए उपयोगी जानकारी का विषय रहेगा, पशुओं के लिए संतुलित आहार और पोषण। मानस गान आप सुनेंगे सवेरे 7:20 पर। आज आप सुनेंगे भाग 336 का पाठ। सामाजिक विषयों पर चर्चा और फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा सवेरे 7:30 पर। सुप्रभात। आज के अंक में फिजियोथेरेपिस्ट प्रकुल खत्री से नवीन सिसोदिया की बातचीत सुनवाई जाएगी। सुगम संगीत कार्यक्रम में कुछ भक्ति रचनाएं आप सुनेंगे सवेरे 8:45 पर। मरुमंगल कार्यक्रम में प्रभु राम कलाकार रहेंगे सवेरे 9:10 पर। कुछ युगल हिंदी फिल्मी गीत आप सुनेंगे सवेरे 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फनकार होगा प्रातः 10 बजे। फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे प्रातः 11 बजे। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत होगा दिन में 12:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में गजलें सुनिए दिन में 12:30 पर। खेत खलिहान कार्यक्रम में जानकारी होगी मृदा स्वास्थ्य के लिए जैविक खाद विषय पर, समय रहेगा दिन में 12:50 का। महिला जगत कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। उर्मिला सेठी की प्रस्तुति में आज के अंक में सुनीता रानी की वार्ता होगी सफल स्वयं सहायता समूह की सफलता। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे दोपहर बाद 3 बजे से। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। नौजवान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी संध्या 5 बजे। आज के अंक में आपकी पसंद के तहत युवा श्रोता अपनी पसंद के गीत सुनेंगे। सराइकी प्रोग्राम का वक्त रहेगा संध्या 6:05। ग्रामीण परिवारों के लिए कार्यक्रम होगा चौपाल संध्या 7 बजे। जानकारी के विषय रहेंगे पशुओं में परजीवियों की रोकथाम, भिंडी के प्रमुख कीट व प्रबंधन, गोबर खाद। और आज के अंक में कवि विनोद स्वामी का राजस्थानी काव्य पाठ भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। और स्पोर्ट्स स्कैन का रिले हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात्रि 8:30 पर। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का रिले होगा दिल्ली से रात्रि 10 बजे। सुगम संगीत में गजलें सुनिए रात्रि 9:15 पर। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। ये दोनों समाचार बुलेटिन हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। देशेन ह्यः अशीतितमः स्वातन्त्र्य दिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रियध्वजम् आरोहितवान् तथा अनेकाः महत्वपूर्णाः घोषणाः कृतवान्। राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् विगतेषु 12 वर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वसंकल्पेन समर्पणेन च देशं नूतनासु उन्नतिषु नेतुं सर्वसम्भवं प्रयत्नम् अकुर्वन्।

0: प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् बृहन् स्वप्नाः दृढतराः संकल्पाश्च राष्ट्रस्य प्रयत्नानां समग्रं स्तरं सामर्थ्यं च वर्धयन्ति।
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का

0: शिक्षाणां कृते निर्धनमध्यमवर्गीयपरिवाराणां युवभ्यः निःशुल्कम् अन्तर्जालमाध्यमेन प्रशिक्षणं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। सः इदमपि घोषितवान् यत् प्रशासनेन आगामि एकवर्षे एककोटियुवभ्यः AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्ता कौशलस्य प्रशिक्षणं प्रदातुं निर्णयः कृतः। केन्द्रीयसहकारितामन्त्री अमितशाहः अद्य राजस्थानस्य अल्वरनगरे स्थिते अल्वर सरस दुग्ध परिसरे नूतनस्य दुग्ध संयंत्रस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। सहकारिता मन्त्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् अवसरे अन्तर्जालीय माध्यमेन शिलान्यासः क्रियते तथा राजस्थानस्य 17 जनपदेषु 260,000,000,000 रूप्यकाणां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनमपि अन्तर्जालीय माध्यमेनैव करिष्यते। एतदतिरिक्तम् आजीविकोत्सवस्य अन्तर्गतं नवनियुक्तेभ्यः 15,000+ कर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि वितरिष्यन्ते। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् अद्यारभ्य तमिलनाडुराज्यस्य 2-दिवसीययात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ असौ चेन्नई चेङ्गलपट्टु तिरुवरूर तंजावूर नगरेषु विविधेषु शैक्षणिकेषु स्मारकेषु साहित्यिकेषु च कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य श्रीराधाकृष्णन् चेङ्गलपट्टुनगरे SMR विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थायाः 22वें दीक्षान्त समारोहे भागं ग्रहीष्यति। सः चेन्नई नगरे नागालैंड मणिपुर पश्चिम बंगाल राज्यानां पूर्वराज्यपालस्य प्रथम पुण्यतिथेः कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। ततः परम् उपराष्ट्रपतिः चेन्नई नगरे इकोज ऑफ अ नेशनलिस्ट माइंड इति पुस्तकस्य विमोचन कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली परिवहन निगमस्य बसयानेषु महिलायात्रिणां कृते प्रचलितायाः कागदनिर्मितपाटलचटिकाव्यवस्थायाः अवधिः अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं विस्तृतः अस्ति। परिवहनविभागस्य आदेशानुसारं निःशुल्कबसयात्रायै महिलाः DTC अथ दिल्ली क्लस्टर् इत्येतयोः बसयानेषु कागदनिर्मितपाटलचटिकायाः उपयोगं निरन्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रथमवारम् आयोजिता सूर्यपथ त्रिरङ्ग वैश्विकयात्रा ह्यः सम्पन्ना। इयं यात्रा पश्चिमदिशि फिजी देशादारभ्य संयुक्तराज्यामेरिकापर्यन्तं 45 देशेषु बहुषु च कालक्षेत्रेषु सम्पन्ना। अमृतोद्यानम् अद्यारभ्य आगामि मासस्य 15 दिनाङ्कपर्यन्तं सामान्यजनेभ्यः उद्घाटितं भविष्यति। अस्माकं वार्ताहरानुसारम् उद्यानं प्रातः 10 वादनात् सायं 6 वादनपर्यन्तम् उद्घाटितं भविष्यति। अन्तिमप्रवेशः सायं 5 वादनपर्यन्तमेव भविष्यति। अनुरक्षणकार्याय उद्यानं प्रत्येकं सोमवासरे पिधानं भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश

0: नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज UGC नेट, CSIR नेट और ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। PhD कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने DTC बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार निशुल्क बस यात्रा की पात्र महिलाएं DTC और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। यह योजना आज से लागू हो गई है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुई हवाई हमलों की वीडियो इस बात का प्रमाण है। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। वर्षा के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का ही हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
2: Stressing on empowerment of youth and women for a Viksit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।

0: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
1: The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west across 54 countries and multiple time zones. External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Launched from the High Commission of India in Fiji, the relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. Union Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Alwar, Rajasthan today. The Ministry of Cooperation informed that at the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be e-inaugurated. Vice President C.P. Radhakrishnan will be on a two-day visit to Tamil Nadu beginning today. During the visit, he will participate in a series of academic, commemorative and literary events in Chennai, Chengalpattu, Tiruvarur and Tanjavur. Today, Mr. Radhakrishnan will attend the 22nd convocation of the SRM Institute of Science and Technology in Chengalpattu. He will also attend the first death anniversary function of former Governor of Nagaland, Manipur and West Bengal in Chennai. The Central Board of Direct Taxes, CBDT, has notified the Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme Rules 2026. It enables eligible taxpayers to declare certain undisclosed foreign assets, undisclosed foreign income or undeclared foreign assets on payment of a specified tax or fee. The scheme will come into force from today and the last date for filing a declaration under the scheme is 31st of December this year. The National Testing Agency, NTA, will release the provisional answer keys for UGC NET June 2026, CSIR NET ICAR All India Entrance Examination for Admission and All India Competitive Examination for PhD programs today. In a social media post, NTA said the provisional answer keys will be published on its official website. Amrit Udyan will be open to the general public from today till the 15th of the next month. Our correspondent reports the garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. And in men's cricket, India will resume their first innings at the overnight score of 288 for 2 against Sri Lanka on the second day of the first test at the Gaul International Stadium today. Dev Dutt Padikkal remained unbeaten on 131 while Rishabh Pant was on 27 when stumps were drawn yesterday evening. KL Rahul retired hurt on 77. And that is the end of this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं. प्रातः के 7:10 हुए हैं. खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान भाइयों के लिए आज उपयोगी जानकारी का विषय है पशुओं के लिए संतुलित आहार और पोषण.
3: किसान भाइयों राम राम. किसान भाइयों आपनों जी को जीवन है वो अपने पशुधन गए इर्द गिर्द घूमते रहे. दूध होगी, दही होगी, राबड़ी होगी, छाछ होगी, ऐसा सब को जिको मुख्य स्रोत है वो अपनो पशुधन ही तो है. तो अपने भी पशुधन ने स्वस्थ राखण खातर अच्छो भी दूध को उत्पादन बनाए राखण खातर आपा भी ने के हिसाब संतुलित आहार दे सका आज आपा ई बात पे चर्चा करांगा. पशुओं को जिको स्वास्थ्य है और उत्पादन है वो मुख्य आपा जिको भी बिना आहार देवा बिंगी मात्रा पर और बिंगी गुणवत्ता पर निर्भर करें. बैलों का दूध उत्पादन पे कुल लागत को लगभग 70% खर्चो आवे. इन खातर दूध उत्पादन को जिको भी लाभ है या हानि है वह अपने पशुधन ने जिकी भी आपा खुराक खुआ बैंग ऊपर निर्भर करें. कई किसान भाई अपना ऐसा है जिका पशुओं ने आमतौर पर एक ही तरीका को चारो देवे है जीव के वह अपना जिका पशुधन ने संतुलित आहार मिल को नहीं पावे और जिको अपनो पशु है बिंगो स्वास्थ्य तो खराब हो वह सागे सागे बिंगो दूध को उत्पादन है वो भी गिर जाए. किसान भाइयों आपा देखन भी लाग रहे हैं आजकल की शहरीकरण गए और बढ़ती हुई आबादी के कारण जिको अपने चारा के अधीन क्षेत्रफल है बा जिकियां भी धीरे धीरे घटने लाग रही है. तो इन वास्ते आज अपने वास्ते आज चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने पशुओं ने संतुलित आहार जरूर देवा. संतुलित आहार में भाई लोग

0: बात करा तो ईसो आहार है जो अपना जीका पशु का शरीर है, पशु का जीका भी शरीर का काम धंधा है, जीका देखा अपना जीवन निर्वाह हो गया, दूध उत्पादन हो गया या और भी जीकी जरूरी आवश्यकता है बैंगे खातर आवश्यक पोषक तत्व हो गया, जिया कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, खनिज और विटामिन आदि जीका है वह उचित मात्रा में बिना पूरा करे वो या पास संतुलित आहार कह देवाए नहीं। एक हुआ है भाई लोगों का जीवन निर्वाह खातर जिको आहार हुआ है वो आहार हुआ है जिका कि अपने नाम ही समझ मान लाग रहे हैं कि भाई सिर्फ बिना चालन फिरन खातर और जीन खातर जिको आप आहार देवा वो जीवन निर्वाह आहार हो जाए। उत्पादन आहार वो हुआ है भाई लोगों का जिका कि बिंग दूध उत्पादन बढ़ाने खातर या और भी आपा किसी भी प्रकार को अगर आपा कोई पशु उत्पादन ले लाग रहे हैं तो बिना बढ़ाने खातर अलग हुआ आप दे देवा जिको वो उत्पादन आहार हो गया। एक भाई लोगों कह दे आपा प्रजनन आहार जब अपनों पशु है जिको वो ब्याह नाल हो तो भी टाइम पे बिना जिको अलग आहार दियो जाए वो प्रजनन आहार आपा बिना कह दे। अब भाई लोगों का कुछ आपा आवश्यक पोषक तत्व है बंग ऊपर जब आपा बात करा तो जिमें सबों पहले आपा देखा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भाई लोगों का मुख्य है तो आपा देखा तो अनाज में और जिको चारो है भी में आपा ने मिले हैं। इन मुख्य काम के हुआ है जिको अपने पशुओं ने वो ऊर्जा प्रदान करे और सागे सागे जिको प्रोटीन और वसा है भी ने भी पचान में मदद करे। वसा ने देखा भाई लोगों आपा तो वसा के अपने जिको पशुओं में ऊर्जा प्रदान करने खातर सारू जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 2.5 गुना ज्यादा ऊर्जा पशुओं ने वसा दे देवे। प्रोटीन पे भाई लोगों आप बात करा तो अपने जिकी पशुधन की कोशिका है बीने बनाने खातर प्रोटीन को मुख्य योगदान है। प्रोटीन की बात करा तो अपने दाला में बांगे छिलका में दाल वाली जी की फसल है बांगे चारो तेल वाली जी की फसल है बांगी खड़ी में पायो जाए। दूध उत्पादन बढ़ाने खातर और बीमारियों बचाने खातर प्रोटीन भी बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज और लवणों के ऊपर जब आप बात करा तो अपने पशुओं ने मुख्य रूप में 15 खनिज तत्वों की जरूरत हुए हैं। इमु की तो यह है जिका आपा ने ज्यादा मात्रा में पशु ने देना हुआ है जिन्हें आपा मुख्य खनिज लवण भी कह देवा जिया कैल्शियम हो गयो, पोटेशियम हो गयो, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर और कई ऐसा खनिज तत्व है जिका आपा थोड़ी मात्रा में बाना दे देवा तो बाना आपा गौण खनिज लवण भी कह देवा जिया आयरन हो गयो, कॉपर हो गयो, मैग्नीज हो गयो, जिंक हो गयो, कोबाल्ट हो गयो, आयोडीन हो गयो और सिलिकन। खनिज तत्व जिका हुआ है वह अपने पशु के शरीर खातर बहुत ही जरूरी हुआ है। पशुओं की हड्डी और दांत है जिका वह खनिज तत्वों में बनेडा हुआ है और जिकी खून की कोशिका हुआ है बा में आंगो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। जिका खनिज तत्व हुआ है वह अपने पशु की दूध की मात्रा के सागे सागे बिंग दूध की गुणवत्ता ने भी बढ़ावा है। अब भाई लोग अपने पशुओं ने जितना पोषक तत्व की जरूरत हो बीहू ज्यादा महत्वपूर्ण आप बात करें तो पानी की जरूरत हो। यदि अपने पशु के शरीर में वसा 10% कम हो जाए और प्रोटीन 50% टाइम भी कम हो जाए तो भी आपने पशु है जिको वो जिंदा रह सके, लेकिन अगर आपने पशु के शरीर में पानी है जिको वो 10% भी कम हो जाए तो आपने जिको पशु है भींगी मौत हो सके। पशुओं ने जिकी पानी की जरूरत हो बांगे शरीर के हिसाब हूँ और जी हिसाब को वो चारों खान लाग रहे हैं जितो बिंगो दूध उत्पादन है और के हिसाब को मौसम है बैंग ऊपर निर्भर करें। पशु की जिकी आम आवश्यकता हो बिंग अलावा 1 किलो दूध उत्पादन खातर गाय या भैंस ने 4-5 किलो पानी रोज की जरूरत हो। पानी है जिको वो शरीर में कई काम करे जिया शरीर की कोशिका है बाने मजबूत बनावे बामे लचीलोपन ले गावे सागे सागे जितनी भी रासायनिक क्रिया है बा सारी पानी के सागे ही हुए। अब आप बात करा कि आपनों जिको पशु आहार है तो बिंगी के विशेषता होनी चाहिए जिको आप अपने पशु ने देन लाग रहे हैं तो सब जरूरी बात तो इमें हर तरीके का पोषक तत्व है वह उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इनके सागे सागे जिको भोजन है वो पाचक होने के सागे सागे जिको पौष्टिक भी होना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों ऐसी सारी बातों को आपा सगड़ा ने ध्यान रखना है पर अब तो टाइम ही तो यह आज्ञा दियो। राम राम सा राम राम।
1: श्रोताओ खेतीहर वास्ते कार्यक्रम में अभी तरक्की पसंद काश्तकार भाई उपयोगी जानकारी सुन रहे थे पशुओं के लिए संतुलित आहार और पोषण विषय पर। लीजिए सुनिए एक राजस्थानी लोक भजन।

श्रोताओं, अभी आपने प्रकाश चंद्र शर्मा के स्वर में राजस्थानी लोक भजन सुना। यह आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:20 हुए हैं। लीजिए, अब सुनिए मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 336 का पाठ।

रावण का यज्ञ विध्वंस करने के लिए वानर भालू आ पहुंचे हैं, किंतु अपने उत्पात से जब वे उसे वेदी से नहीं उठा पाए तो उसके शरीर पर अपने भीमकाय दांतों और लातों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, किंतु उसका ध्यान तब भी भंग नहीं हुआ। वानर भालुओं ने तब वहां की स्त्रियों के केश पकड़कर महल से बाहर घसीटना आरंभ किया। रावण अब अपना धैर्य खो बैठा और उठकर वानरों के पैर पकड़ पकड़ कर उन्हें धरती पर पटकने लगा, किंतु इस प्रकार उसका यज्ञ तो भंग हो ही गया। रावण अपनी सेना फिर से सजाकर युद्ध भूमि की ओर अग्रसर होता है। अब शकुन रूप में उसके सिर पर गीदमंड

आ रहे हैं, किंतु इसकी अनदेखी करके वह युद्ध का डंका बजवाता है और एक बार फिर घमासान युद्ध होने लगता है। युद्ध के बाद युद्ध, फिर और युद्ध। देवताओं का धैर्य टूटने लगा है। वे प्रभु से विनती करते हैं कि अब और विलंब न करके वे रावण का वध करें। श्रीराम अपना शारंग धनुष लेकर जब युद्ध के लिए अग्रसर होते हैं तो धरती डगमगाने लगती है।

श्रोताओं, अभी आपने श्री रामचरित मानस का पाठ सुना मानस गान कार्यक्रम में। आज आप सुन रहे थे भाग 336 का पाठ। मीडियम वेव 326.79 मीटर पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं, अभी आपने किशोर कुमार की आवाज़ में अंदाज फिल्म का नगमा सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। श्रोताओं, सुबह का समय केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन को ये याद दिलाने का भी समय है कि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम जीवन में बहुत सी चीज़ों के लिए समय निकाल लेते हैं, काम के लिए, परिवार के लिए, मोबाइल और सोशल मीडिया के लिए, मनोरंजन के लिए, लेकिन अक्सर अपने शरीर के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। शरीर भी एक मशीन की तरह है श्रोताओ, उसे चलाते रहना जरूरी है। जैसे किसी वाहन को लंबे समय तक खड़ा छोड़ दिया जाए तो उसके पुर्जे अपनी सहजता खोने लगते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी लगातार निष्क्रिय रहने से जकड़न, कमजोरी और कई तरह की परेशानियों का सामना कर सकता है। श्रोताओ, आज हमारी जीवन शैली पहले की तुलना में बहुत बदल गई है। घंटों कुर्सी पर बैठना, लगातार मोबाइल या कंप्यूटर देखना, पैदल चलने की आदत कम होना और शारीरिक गतिविधियों के लिए समय ना निकाल पाना, ये सब हमारे शरीर पर अपना असर डालते हैं।

0: ऐसे में फिजिकल एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी केवल बीमारी या चोट लगने के बाद की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शरीर को सक्रिय और लचीला और मजबूत बनाए रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन श्रोताओ, व्यायाम का भी एक सही तरीका होता है। हर व्यक्ति की उम्र, शारीरिक क्षमता और आवश्यकता अलग अलग होती है, इसलिए कौन सी एक्सरसाइज किसके लिए उपयोगी है, कितनी देर करनी चाहिए, किन परिस्थितियों में सावधानी जरूरी है, इन सब बातों की सही जानकारी होना भी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर प्रकुल खत्री हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं नवीन सिसोदिया। लीजिए सुनिए।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, हमारे शरीर की जो संपूर्ण स्वास्थ्य है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे हड्डियों, जोड़, मांसपेशियों का, क्योंकि अगर इनमें कोई भी तरह का बदलाव होता है, कोई दर्द होता है, कोई चोट होती है, तो हमारा जो दैनिक संतुलन है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। हड्डियों और जोड़ों में लगी चोट का इलाज अक्सर हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, लेकिन किसी भी ऑपरेशन आदि के बाद रिकवरी हेतु जो थेरेपी दी जाती है वो दी जाती है फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा। साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न रोगों के इलाज में काम करते हैं और उनको पैदा होने से रोकने से संबंधित कार्य भी ये करते हैं। फिजियोथेरेपी के कार्य, इसके प्रकार और इसके विस्तार के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमने आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रकुल खत्री को। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। प्रकुल जी, आपका हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: प्रकुल जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या होती है।
2: फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। WHO के अकॉर्डिंग जो है वो ये बताया गया है कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम बिना सर्जरी या बिना मेडिसिन के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हम पेशेंट की मसल्स, पेशेंट के जॉइंट्स को मोबिलाइज करते हैं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं ताकि पेशेंट जो है अपना काम इजीली कर सके, अपने दैनिक कार्य जो भी हैं वो इजीली कर सके। तो विदाउट मेडिसिन और विदाउट सर्जरी का जो ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी है। इसे हम एक्सरसाइज थेरेपी, हम मॉडलिटीज इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से और मोबिलाइजेशन के थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं।
1: प्रकुल जी, जैसे आपने बताया कि जो सर्जरी है और मेडिसिन है इनकी आवश्यकता फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं पड़ती है, तो जो फिजियोथेरेपी है वो आपने उसके कई तरीके बताए उपचार करने के, मुख्य कौन कौन से उसमें है?
2: फिजियोथेरेपी मुख्य रूप से हम जो जोड़ों के दर्द है उसको हम देखते हैं, मांसपेशियों के दर्द को हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं किसी के नस में कोई नाड़ी का दबाव आ गया नर्वस सिस्टम का, तो वो भी हम फिजियोथेरेपी में ट्रीट करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी में जैसे गिर के चोट लग जाना, मांस फट जाना, इन सब का इलाज फिजियोथेरेपी में किया जाता है। इसके अलावा सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हो गए और डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो गए, उनको रिहेबिलिट करना, प्रॉपर अपनी पोजिशन रहना, उनको डेली एक्टिविटी के लिए कैपेबल करना, ये फिजियोथेरेपी का काम रहता है।
1: फिजियोथेरेपी किस प्रकार एक व्यक्ति को जो मसल्स हैं उनको ताकतवर बनाने का कार्य करती है?
2: फिजियोथेरेपी एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का इसमें प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम देखते हैं भी पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी कौन सी मसल्स को हम टारगेट करना है, उसको क्या इश्यू आ रहे हैं, तो उस मसल्स को हम एक्सरसाइज के थ्रू जो है हम उसको मजबूत करते हैं। उसमें कोई अगर हमें लगता है भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम इलेक्ट्रिक मॉडलिटीज और मैनिपुलेशन के द्वारा भी उसको ट्रीट करते हैं।
1: जी प्रकुल, जैसा कि मसल्स की अगर बात चलिए तो जिम जाना भी मसल्स के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, तो जिम जाकर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना और फिजियोथेरेपी लेके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना किस प्रकार भिन्न है?
2: एक हेल्थी पर्सन जिम जाके मसल को मजबूत बनाता है, वो मसल को ट्रेन करता है, वो बहुत जरूरी है मसल स्ट्रेंथनिंग। फिजियोथेरेपी में ये है कि जो मसल वीक हो गया है, जो कमजोर हो गया है, जैसे किसी का लिगामेंट इंजर्ड हुआ, उसने ACL रिपेयर कराया, तो तुरंत वो जिम नहीं जा सकता, डॉक्टर उसको 3 वीक के लिए अलाउ नहीं करते, भी मूवमेंट अवॉइड करते हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपी काम करती है। उसके बाद धीरे धीरे हम उसको मसल को मजबूत करते हैं, जैसे हमको लगता है पेशेंट फिट है देन वो जिम के लिए जा सकते हैं।
1: जी, आपका अर्थ ये हुआ कि जो जिम है वो फिजियोथेरेपी से अलग तरह से काम करता है।
2: बिल्कुल सर।
1: आपने रिहेबिलिटेशन शब्द का भी उपयोग किया, कौन कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं जो मुख्य रूप से जिनमें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है?
2: मैंने रिहेबिलिटेशन का मतलब है पुनर्वास, एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है कि फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
1: जी,
2: ऑर्थोपेडिक की जो भी सर्जरीज होती है उसको सर्जन ने अपना बहुत अच्छा काम किया, बोन को जोड़ा, लिगामेंट को रिपेयर किया,

0: नी रिप्लेसमेंट किया, शोल्डर रिप्लेस किया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट रोल है उसके रिहेबिलिटेशन का. अगर रिहेबिलिटेशन सही नहीं होगा तो वो सर्जरी कामयाब नहीं हो पाएगी
1: जी.
0: तो इसलिए रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि धीरे धीरे जो पार्ट सर्जन ने सही किया है उसको हम मोबिलाइज करें, उसको मूवमेंट में लेके आए, उसको कैपेबल बनाएं, ताकि पेशेंट सही रूप से अपना काम कर सके.
1: आपने जिस प्रकार नाम लिया स्पोर्ट्स इंजरी में, एक सबसे बेसिक इंजरी है ACL की इंजरी. ACL की इंजरी वाले पेशेंट को कितना वक्त लगता है फिजियोथेरेपी के बाद एक सामान्य चलने फिरने में या फिर हम कहें खेल में वापस जाने में?
0: ACL सर्जरी में क्या है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है वो पेशेंट को इजी एक्टिविटी में एक बार हम रखते हैं, क्योंकि ग्राफ्ट जो लगता है, जो ग्राफ्ट लगाया जाता है वो बॉडी किसी पार्ट से निकाल के लगाते हैं, तो उसको दोबारा उस पार्ट में यानी कि उसको यूज टू होने के लिए या उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर पहुंचने के लिए 3 महीने का समय लगता है. तो उससे पहले हम फिजियोथेरेपी में उनको पेशेंट को जो है वो चलना, वॉकर के साथ चलना, अपनी एक्टिविटी करना और पैरों की एक्सरसाइज करना, नी की एक्सरसाइज करना, हम ये सब चलाते हैं, थोड़ा बहुत उनको स्टेयर चढ़ाना. लेकिन धीरे धीरे धीरे क्या है कि 3 से लेकर 6 महीने में पेशेंट स्पोर्ट्स की तरफ दोबारा जा सकते हैं. इसका 6th मंथ का प्रोटोकॉल होता है
1: जी. और इसके अलावा एक जो मेजर सर्जरी आजकल हम देखते हैं नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है, उसमें कई बार आजकल तो ये भी सुविधा है कि दोनों नीज एक साथ रिप्लेस कर दिए जाते हैं, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल रहता है फिजियोथेरेपी का?
0: नी रिप्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया. पेशेंट क्या करता है, पेशेंट बोलता है सर 15 दिन एक्सरसाइज करा दो, 20 दिन एक्सरसाइज करा दो. बट एक्चुअली क्या है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद मिनिमम हमें 3 मंथ का एक टाइम चाहिए होता है पेशेंट को प्रॉपर रिहेबिलिट करने के लिए. सबसे पहले जरूरी होता है, क्योंकि जिसका नी रिप्लेस हुआ है वो पिछले कई सालों से आर्थराइटिस से परेशान है, उसकी नी की कंडीशन खराब थी तभी उसने जाके ऑपरेशन कराया.
1: जी बिल्कुल.
0: तो हमें यह भी देखना पड़ेगा अभी कितने समय से खराब है, पिछले 10 साल से नहीं खराब है, डॉक्टर ने रिप्लेस कर दिया और हम चाहते हैं 15 दिनों में हम चल पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो धीरे धीरे क्या होता है कि मसल को मजबूत करते हैं, डेली एक्सरसाइज कराएंगे, सबसे पहले उसका रेंज ऑफ मोशन लेंगे, उस जॉइंट को खोलेंगे ताकि उसका पूरा रेंज ऑफ मोशन आए, घुटना मोड़ के पेशेंट बैठ सके, पूरा रेंज ऑफ मोशन. उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ पे हम काम करेंगे ताकि उसकी मसल मजबूत हो और वो अपनी डेली एक्टिविटी घूम फिर सके, चल सके, अपना सारा काम कर सके.
1: जैसा आपने कहा कि पुनः अपनी एक्टिविटीज को वापस कर पाए नी रिप्लेसमेंट वाला पेशेंट जो है, तो क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी से पूर्णतः साधारण लाइफ जी जा सकती है, उठना बैठना सीढ़ियां चढ़ना?
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि अच्छी अगर ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन अगर अच्छा होता है तो पेशेंट बिल्कुल अपना सभी काम जो है खुद कर सकता है और 3 मंथ के बाद वो अपना काम करने के लिए कैपेबल हो जाता है. आफ्टर 3 मंथ वो अपनी सारी एक्टिविटी करने लग जाता है पेशेंट.
1: जी, आपने इस बात का भी जिक्र किया कि हम उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, तो जो आपका प्रोग्राम है उसके बाद भी क्या उसको एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी होती है या उसके बाद वो छोड़
0: नहीं
1: सकते हैं?
0: उसके बाद भी उनको एक्सरसाइज घर में कंटिन्यू रखनी होती है, क्योंकि हीलिंग जो है वो लंबी चलती है अंदर से. तो क्या होता है कि धीरे धीरे पेशेंट क्या होता है कि एक्सरसाइज को अवॉइड करता जाता है, तो मसल टाइट होने के चांसेस रहते हैं. तो घर में भी एक्सरसाइज करना बाद में भी बहुत जरूरी है. टाइम टू टाइम सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी आपका बंद हुआ, उसके बाद 10 दिन 15 दिन या आफ्टर 1 मंथ आप एक विजिट थेरेपिस्ट के पास करें, ताकि करंट पोजीशन का पता चले और आगे क्या करना है उसको लेके गोल को सेट किया जाए.
1: प्रकुल जी, अभी बात सर्जरीज की चल रही है, तो सर्जरी तक पहुंचने की नौबत ना आए इसके लिए आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार कोई आदमी अपने नीज को बचा सकता है या फिर कोई बैक की इंजरी है उसको बचा सकता है, पोस्चर का उसमें क्या महत्व है, कौन सी एक्सरसाइज है जो रेगुलर वो कर सकता है बिना फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगी?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम पहले कैसे बचें. तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपना पोस्चर का ध्यान रखें. जैसे अभी बात चली पोस्चर की, तो सबसे बड़ा आज के टाइम में सिटिंग पोस्चर, लोअर बैक के आप केस देखेंगे खूब आ रहे हैं, कमर दर्द के ऑपरेशन के केसेस खूब आ रहे हैं. कारण ये है कि आजकल सिटिंग वर्क ज्यादा है, और सिटिंग वर्क ज्यादा होने के कारण क्या है कि बैक पे लोड ज्यादा है. इसके लिए कुछ एक प्रोटोकॉल है, कभी समय मिलेगा तो आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है डेस्क जॉब हम कर रहे हैं तो उसको कैसे हमें मैनेज करना है. बट अभी बात आई सर्जरी से बचने की, तो वही बात है कि पोस्चर का ध्यान रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज, स्ट्रेच एक्सरसाइज लगातार करें, सुबह स्ट्रेच एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ करें, मजबूत करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में लें, और थोड़ा ध्यान रखें, सेफ्टी रखें, चलते खेलते वक्त ध्यान रखें. स्पोर्ट्स में अगर हमको भागना है तो हम नी कैप लगा के दौड़ सकते हैं, ताकि क्या नी की इंजरी थोड़ी कम हो. हाई जंप लॉन्ग जंप में हम इसको यूज कर सकते हैं, तो प्रोटेक्टिव रहना हमें बहुत जरूरी है इंजरी के लिए.
1: प्रकुल जी, आपने बताया कि कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे आते हैं कि जो सिटिंग जॉब वाले हैं वो उसको अगर फॉलो करें तो काफ़ी हद तक इंजरी से बचा जा सकता है. हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को आप आज ही बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं.
0: एक आज के समय में सबसे बड़ा काम जो है वो डेस्क जॉब का है. हम सभी जो है वो जॉब करते हैं, सिटिंग हमारा काम ज़्यादा है. तो इसके लिए बेसिक मैं आपको कुछ 3-4 चीज़ बताता हूँ क्या करें. कि सबसे

0: तो ये करें कि अपने मोबाइल में एक अलार्म सेट करें हर आधे घंटे का।
1: जी
0: जैसे अलार्म बजे आप खड़े हों और खड़े होकर आप वॉक करके आए, यानी कि हर आधे घंटे बाद आपने खड़े होकर वॉक करना है। एक वीक तक आपने इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है। सेकंड वीक में आपने क्या करना है, कुछ डेस्क जॉब की एक्सरसाइज होती है, जैसे बैठे बैठे कंधे को हिलाना, कंधे को घुमाना, गर्दन को घुमाना,
1: जी
0: कमर को ट्विस्ट करना, एंकल को पंप करना, घुटने सीधे करना, तो चेयर पर बैठे बैठे हम कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: तो हर आधे घंटे के बाद हम क्या करें, इस एक्सरसाइज को भी हम आधे घंटे के बाद ये एक्सरसाइज करें, ताकि हमारे मसल में जो स्टिफनेस हो रही है वो स्टिफनेस नहीं रहे और मूवमेंट बने। इन दोनों को हम लगातार फॉलो करेंगे 2 वीक तक। थर्ड वीक में हम क्या करेंगे कि जितनी बार भी हमारे पास फोन कॉल आता है, क्योंकि हम काम करते हैं तो फोन आता है, तो कोशिश करेंगे अपनी कॉल हम खड़े होकर बात करें,
1: जी बिल्कुल
0: घूमते हुए बात करें, वॉक करते हुए बात। हमने क्या देखा अक्सर कि एक कान में फोन लगाया, गर्दन को टेढ़ा किया और हम काम कर रहे हैं, तो नेक का पोस्चर उससे गलत हो जाता है, तो नेक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। सर्वाइकल के केसेस इसके अंदर ज्यादा आते हैं, तो खड़े होकर वॉक करें। और फोर्थ वीक क्या करें, इनका ट्रायो तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ लेके चलेंगे।
1: जी
0: आधे घंटे बाद उठेंगे, उसके बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे बीच में ही, और लास्ट क्या करेंगे, जितनी बार कॉल आएगा फोन पे खड़े होकर बात करेंगे। तो इस चीज को फॉलो करेंगे तो हमारा क्या है कि जो फ्लो एक बना हुआ था वो ब्रेक होगा बार बार बार बार।
1: जी
0: हमारे मसल को क्या है कि बीच में थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, तो मसल भी स्टिफ थोड़ा लूज होगा, स्टिफनेस थोड़ी कम होगी, बीच में स्ट्रेच करेंगे तो।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने प्रोटोकॉल बताया। अगर हम सभी इसको फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम इंजरीज से बच पाएंगे, हमारी मसल्स जो है वो मजबूत रहेंगी। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा महिलाओं के लिए विशेषकर, कि आजकल देखा जाता है चाहे वो काम का दबाव हो या जीवन की भागदौड़ है, उनके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द जो है इन दिनों देखा जाता है कि काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उनके लिए आपका क्या विशेष सुझाव है?
0: तो सबसे पहले तो ये है कि महिलाएं डेली जो है वो सुबह अपनी एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, अपना वेट बढ़ने से रोकें। हमने देखा है कि लगभग महिलाएं घर में रहती हैं, अपना घर की एक्टिविटीज़ करती हैं, वो घर की एक्टिविटीज़ को वो अपना काम मान लेती हैं, भी हमने एक्सरसाइज करनी थी, हाँ घर को मैं सारो काम करा, हमारी एक्सरसाइज होगी। एक्चुअली ये नहीं है, घर में वो काम करते हैं, उनका जॉइंट लिमिटेड उसमें काम कर रहे हैं, लिमिटेड पैर काम कर रहे हैं, लिमिटेड हाथ काम कर रहा है, रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं आ रहा है। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले सुबह सुबह वो स्ट्रेच करें,
1: जी
0: योग करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपने वेट को बढ़ने से रोकें। दूसरी बात है न्यूट्रिशन की, कि हमें न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है लगभग क्या है, कार्बोहाइड्रेट का हम ज़्यादा रोटी सब्जी दाल चावल इस पे ज़्यादा हम जोर देते हैं, हम प्रोटीन पे जोर नहीं देते।
1: जी
0: हमें ज़रूरी है कि हमें प्रोटीन खूब मात्रा में मिले। इंडिया में बेसिकली हम देखते हैं कि प्रोटीन लगभग कम इंटेक होता है। क्यों इंटेक होता है, क्योंकि वेजिटेरियन लगभग सभी नॉनवेज प्रेफर नहीं करते, अंकुरित चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की कमी से क्या है कि प्रोटीन की कमी भी होती है। प्रोटीन कमी होगी तो मसल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होगा तो पेन की समस्याएं होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ज़रूरी है कि हम प्रॉपर तरीके से जो है किसी डाइटिशियन से या फिजिशियन से मिलके अपनी डाइट को देखें, अपने डाइट के अंदर प्रॉपर जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, जो हमें अमाइनो एसिड जो भी हमें टोटल चाहिए वो प्रॉपर तरीके से हम उसको लें, ताकि हम हेल्थी रहें और एक्सरसाइज करें।
1: जी प्रकुल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं तो हमारे जितने भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों या फिर हम कहें कि महिला हो या पुरुष हो, इनके लिए आप कोई एक संदेश फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते देना चाहें?
0: मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि सबसे पहले ज़रूरी है अपने शरीर को समय देना। आज हम भाग दौड़ में अपने घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में पैसा कमाने में लगे हैं, लेकिन हम शरीर को समय नहीं दे रहे हैं, जो मेन चीज़ है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सुबह उठ के हम एक्सरसाइज ज़रूर करें, अगर हम जिम जा सकते हैं तो ज़रूर जिम जाएं, स्ट्रेंथ ट्रेन मसल को पावर हम ज़रूर दें, क्योंकि अभी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो जो लास्ट का हमारा डिसेट है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक्सरसाइज को रूटीन में लें, अच्छा डाइट लें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
1: जी बहुत ही अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया। प्रकुल खत्री, आप हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में पधारे, श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: श्रोताओं, बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण बातें आपने सुनी। फिजियोथेरेपिस्ट प्रकुल खत्री से बातचीत कर रहे थे नवीन सिसोदिया। दरअसल श्रोताओं, शरीर हमें लगातार ये संकेत देता है, कभी गर्दन में दर्द के रूप में, कभी कमर की जकड़न के रूप में, कभी जल्दी थक जाने के रूप में, लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने शरीर को केवल बीमारी के समय याद न करें, बल्कि स्वस्थ रहते हुए भी शरीर की देखभाल करें। थोड़ी सी नियमित शारीरिक सक्रियता हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन सकती है। सुबह की सैर हो, हल्के व्यायाम हो,

स्ट्रेचिंग हो या अपनी क्षमता के अनुसार कोई अन्य शारीरिक गतिविधि। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने शरीर को निष्क्रिय न रहने दें। और एक बात विशेष रूप से याद रखने योग्य है कि व्यायाम कोई प्रतियोगिता नहीं है, हमें किसी दूसरे व्यक्ति से आगे निकलने के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर को बेहतर रखने के लिए व्यायाम करना है। अपनी उम्र और क्षमता को ध्यान में रखकर आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही व्यायाम करना अधिक समझदारी है, क्योंकि स्वस्थ जीवन का अर्थ केवल बीमारी से दूर रहना नहीं है बल्कि अपने शरीर में ऐसी ऊर्जा बनाए रखना भी है जो हमें जीवन के हर पड़ाव को उत्साह के साथ जीने की ताकत दे। तो आज सुबह अपने लिए एक छोटा सा संकल्प क्यों ना कर लें कि अपने शरीर को थोड़ा समय देंगे, थोड़ा चलेंगे, थोड़ा व्यायाम करेंगे और अपने स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकताओं में जगह देंगे। याद रखिए श्रोताओं कि शरीर हमारा जीवन भर का साथी है और इसकी देखभाल आज करेंगे तो यही शरीर कल हमारी जिंदगी को और बेहतर ढंग से जीने में हमारा साथ देगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने किशोर कुमार को सुना। फिल्म का नाम था दूर गगन की छाँव में। और चलते चलते दिल ने फिर याद किया, फिल्म का ये नगमा सुने मोहम्मद रफ़ी के स्वर में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात का रिले हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा

0: कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती हैं, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने की और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में

0: करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।
4: सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
5: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
6: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियों भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह

0: ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर नेहरू पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI skill के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।

0: And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Anuja. All dailies have covered Prime Minister's big shout out to Gen Z on Independence Day and his warning against intellectual naxals. Seven pillars, one goal. PM lays out blueprint for Viksit Bharat, writes Hindustan Times. Red Fort rings with Vande Mataram for the first time as smiles, flags and patriotism fill air, writes the Times of India and all the other dailies. The Sunday Times also refers to an army dog shot in the leg by terrorists in Kishtwar getting President Independence Day honour for showing bravery and extraordinary courage. Government brings scheme to disclose foreign assets, opening a one-time window for taxpayers to declare their undisclosed foreign income, cites The Hindu. A Financial Express headline says, India closer to private nuclear power as draft rules issued. Under pressure amid regulatory heat and rising cost, this festive season to be testy for sweets makers is another headline in the Financial Express. A master plan for Delhi 2047 proposes the Havelis of Chandni Chowk to Latians Delhi. Heritage buildings could soon get a lease of life by making them hotels and offices, notes the Sunday Express. And finally, the Economic Times carries a story of matchmaking startups using AI to narrow choices by creating user profiles based on dating history and personality, with traditional dating platforms losing steam. Under the headline, AI-led matchmaking apps getting all the investor love. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Surya Pat Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले ही इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन के निफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में ख्वातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके कुनबों पर माली बोझ कम हो सके। अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई जहानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। सूर्य पर तिरंगा, जो अपनी नवीयत की पहली मुहिम है और जिसमें 50 से ज्यादा भारतीय सिफारती मिशन शामिल थे, सान फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत ने छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की असासों के इंकशाफ की स्कीम शुरू की है। और शतरंज में आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का एजाज बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मुल्क ने कल अपना 80वां योम आज़ादी मनाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौमी परचम लहराया और कई अहम ऐलानात किए। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज़्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की।
3: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
2: विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने ऐलान किया कि गरीब और मतवसित तबके के खानदानों से ताल्लुक रखने वाले तलबा को मुख्तलिफ सरकारी मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम की जाएगी।

0: उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हुकूमत ने अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मस्नूई ज़हानत AI की महारत की तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीब और मुतवस्सित तबके के कुनबों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। मुल्क के नाम अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि इस इकदाम का मकसद मुसाबकती इम्तहानात के लिए तैयारी करने वाले उम्मीदवारों पर बड़े पैमाने पर मालियाती बोझ को कम करना है। उन्होंने कहा कि इस कदम से मुतवस्सित तबके के कुनबे को कोचिंग क्लासों में हजारों करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मस्नूई ज़हानत AI से हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से नौजवान आलमी AI शोबे में कायदाना रोल अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को 3 चीज़ों, लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: वजीर आजम ने कहा कि आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि साल 2030 में भारत दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों पर जोर दिया है कि वो इसे सियासी मसला बनाए बगैर पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन के निफाज की हिमायत करें। योम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तमाम पार्टियों से कहा कि वो आगे बढ़कर ख़वातीन का एहतराम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क की ख़वातीन को कानून साज असम्बलियों और लोकसभा में जल्द से जल्द 33% नुमाइंदगी हासिल हो। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को भारत की पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करने का मौका दिया जाना चाहिए।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: अपनी नौईयत की पहली सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले कल इख्तिताम पजीर हुई। इस रिले ने मशरक में वाकई मुल्क फिजी से मगरब में अमेरिका तक का सफ़र मुकम्मल किया और इस दौरान 54 ममालिक और मुख्तलिफ टाइम जोन्स का अहाता किया। वजारत खारजा ने बताया कि सूर्य पथ तिरंगा मुहिम को हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मनाया गया। फिजी में भारतीय हाई कमीशन ने शुरू होने वाले इस रिले में तिरंगे के जज्बे को एक तुलिया आफ्ताब से दूसरे तुलिया आफ्ताब तक पहुँचाया गया। इसके जरिए दुनिया भर में मौजूद भारतीय बिरादरी और भारत के दोस्तों को एक साथ जोड़ा गया। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में वाक़ अलवर सार्स डेयरी कॉम्प्लेक्स में एक नए डेयरी प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस मौके पर राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से संग बुनियाद रखा जाएगा और इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से ज्यादा नई तकरीरी पाने वाले अफराद को तकरीरनामे भी सौंपे जाएंगे। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने छोटे टैक्स दहिंदगान के गैर मुल्की असासों के इनकशाफ से मुतालिक स्कीम के जवाबी 2026 को नोटिफाई किया है। ये स्कीम आज से नाफिजुल अमल होगी। इस स्कीम के तहत ऐलान नामा जमा कराने की आखिरी तारीख इस साल 31 दिसंबर है। इस तारीख के बाद कोई भी ऐलान नामा दाखिल नहीं किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: छोटे टैक्स दहिंदगान के गैर मुल्की असासों के इनकशाफ से मुतालिक स्कीम 2026 के मालियाती एक्ट के चौथे बाब में शामिल एक बार रजाकाराना इनकशाफ की स्कीम के तहत टैक्स दहिंदगान मखसूस टैक्स या फीस अदा करके ऐसे असासों, गैर मुल्की आमदनी या गैर मुल्की असासों के बारे में बता सकते हैं जिनकी मालूमात का पहले इनकशाफ नहीं किया गया है। इनकम टैक्स महकमे ने टैक्स दहिंदगान की बेदारी में इजाफा करने और इस स्कीम को बेहतर तरीके से समझने में आसानी पैदा करने के लिए अपनी मुसलसल कोशिशों के हिस्से के तौर पर एक जामे FAQ दस्तावेज जारी की है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: मुल्क आज साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। BJP के सीनियर रहनुमा वाजपेयी ने 2018

0: में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। वाजपेयी 3 मरतबा भारत के वजीर आजम रहे। उनकी पहली मुद्दतकार 1996 में सिर्फ 13 दिन की थी। दूसरी मरतबा उन्होंने 1998 से 1999 तक 11 माह के लिए वजीर आजम की हैसियत से खिदमात अंजाम दी, जबकि 1999 से सन 2004 तक उन्होंने मुकम्मल मुद्दतकार पूरी की। उन्हें 2015 में भारत के आला तरीन सिविल एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। कौमी राजधानी में वाकई उनकी यादगार सदैव अटल पर अहम शख्सियात साबिक वज़ीर आज़म को गुलहाए अकीदत नजर करके खराज अकीदत पेश करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधा कृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को कौमी राजधानी में वाकई उनके मेमोरियल सदैव अटल पर गुलहाए अकीदत नजर किए। इस मौके पर साबिक सदर रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, दिल्ली की वजीर रेखा गुप्ता और बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन भी मौजूद थे। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी उम्मीदवारों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा ने मुबीना बेजाब्तियों के खिलाफ एहतजाज के ताज़ा प्रोग्रामों का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: एहतजाज के अगले मरहले के तौर पर तलबा लीडरों ने ऐलान किया है कि आज रियासत के तमाम 24 जिलों में वजीर आला हेमंत सोरेन और कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। उनका कहना है कि उनका एहतजाज 22वें दिन में दाखिल हो गया है, लेकिन उनके अहम मुतालबात अब भी पूरे नहीं किए गए हैं। रांची में पुतला नजर आतिश करने का प्रोग्राम अल्बर्ट ईका चौक पर मुनाकिद किया जाएगा। तलबा जेपीएससी के 11वें से 13वें इम्तहानात और जेएसएससी सीजीएल इम्तहान मनसूख करने के साथ साथ मुबैना बेजाबतगियों की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने रियासती सरकार को 18 अगस्त तक मुस्बत कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी आज रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आगाज करेंगे। इस इकदाम का मकसद रियासत में अहल शहरियों के लिए मियारी हिफ्जान सेहत की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी बंगाल इस स्कीम को नाफिज करने वाली 36वीं रियासत बन जाएगी। इस स्कीम से 1.5 करोड़ कुनबों को फायदा पहुँचने की उम्मीद है और फी साल फी कुनबा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज फराहम होगा। हर अहल कुनबे के रुकन को आयुष्मान भारत कार्ड मुफ्त जारी किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत रियासत के 1307 प्राइवेट और 627 सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। मुस्तफिदीन अस्पताल में दाखिले से 3 दिन पहले से लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक इस स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: इम्तहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट और PhD प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ICAR कुल हिंद दाखिला इम्तिहान और कुल हिंद मुसाबकती इम्तिहानात के लिए आर्जी आंसर की जारी करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर NTA ने बताया कि आर्जी आंसर की उसकी सरकारी वेबसाइट पर शाई की जाएगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो सिर्फ NTA की सरकारी इत्तला पर ही एतमाद करें। अमृत उद्यान आज से अगले महीने की 15 तारीख तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। ये बाग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि इसमें आखिरी दाखिला शाम 5 बजे तक होगा। देखभाल के लिए हर पीर को बाग बंद रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बाग की सैर के दौरान कई अहम मकामात देखने को मिलेंगे, जिनमें बालवाटिका, पुरुमेरिया गार्डन, बैनियन ग्रो, बोनसाई गार्डन, बैबलिंग ब्रुक्स, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल हैं। मौसम गर्मा के सालाना एडिशन की एक बड़ी कशिश मकामी और देसी फूलदार पौधे हैं, जो अपनी दिलकश रंगारंगी और माहौलियाती अहमियत के लिए मशहूर हैं। देसी पौधों के मजमू में बालसम, गुल मेहंदी और नागफना शामिल है। ये पौधे भारत के भरपूर नबाताती विरासत की अक्कासी करने के साथ साथ बागात में हयाती तनाव को भी फ़रोग देते हैं। नई दिल्ली से नीतिका की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा के इलाके, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाज़ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि शुमाल मशरकी भारत के बाज़ इलाकों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, झारखंड, कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दिन में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शतरंज में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कारलसन ने फ्रांस के शहर पेरिस में

0: श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कोटन सिटी चैनल से सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश के दौरे पर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार ने आशा सहयोगियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। और प्रदेश में बारिश का दौर धीमा, जयपुर और भरतपुर संभाग में आज हल्की से मध्यम बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर हैं। श्री शाह के कल उदयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। केंद्रीय गृह मंत्री आज चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अष्ट धातु से निर्मित 21 फीट ऊंची प्रतिमा और मिनी अटल स्मारक का अनावरण करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री कई विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा श्री शाह का कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके बाद वे अलवर पहुंचेंगे, जहां वे सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यहाँ विजयनगर मैदान में बड़ी जनसभा कर में अलवर में सरस डेयरी प्लांट में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीन सरस डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। अलवर के नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा। वीआईपी मूवमेंट के साथ शहर की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए 13 जगहों पर पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर।
1: केंद्रीय गृह मंत्री रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। श्री शाह नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन की घोषणा करेंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए राशि भी हस्तांतरित करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन, समृद्ध राजस्थान समारोह में आशा सहयोग

0: योगिनियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के उपहार के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिन बहनों को 1100 रुपए की राशि डीबीटी की। इस दौरान कुल 14 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं में 74 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी सीधे खातों में हस्तांतरित की। श्री शर्मा ने नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के चेक भी सौंपे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की हर बेटी को पोषण, शिक्षा और विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत की चौपाल से लेकर स्टार्टअप की बोर्ड मीटिंग तक भारत की नारी शक्ति का नेतृत्व दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए राजनीति प्रतिनिधित्व के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की महत्वपूर्ण पहल की गई है।
1: जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के हम आए थे कि हमारी महिला सशक्त है, हमारी महिला मजबूत है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, देश का नेतृत्व भी करना चाहिए, प्रदेश का नेतृत्व भी करना चाहिए, इसके लिए लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ कम करना है। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों के हजारों करोड़ रुपए कोचिंग पर खर्च होने से बचेंगे। उन्होंने कहा कि 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रतिभा की पहचान के लिए गांवों, शहरों और स्कूलों में प्रतिभा खोज अभियान भी शुरू किया जाएगा।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने वाजपेयी को असाधारण, दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के शब्दों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने राष्ट्र को सशक्त बनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के तहत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। ये योजना आज से लागू हो गई है। इसके तहत घोषणा दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। इसके बाद कोई घोषणा दाखिल नहीं की जा सकेगी। ये एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। आयकर विभाग ने योजना को समझने में करदाताओं की मदद के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल भी जारी किए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश का दौर मंद पड़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में राजधानी जयपुर में 13 शहरों में हल्की से मध्यम

0: बारिश हुई। करौली जिले में देर रात रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के चलते जिले के नदी नालों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। हालांकि राज्य के पश्चिम भाग में बारिश का दौर अब फीका पड़ने की संभावना है। वहीं पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में हल्की बारिश का दौर आगामी कुछ और दिन चलता रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य में 18 अगस्त तक प्रदेश के पूर्वी भाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए जयपुर और भरतपुर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। राजधानी जयपुर में आज बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाएगी। बैंड बाजों और शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से ये सवारी निकलेगी। इसके लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। गौरतलब है कि कल हरियाली तीज के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से शाही लवाजमे के साथ तीज की सवारी निकाली गई थी। पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे बढ़ाएगा। कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त पड्डिकल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश के दौरे पर चित्तौड़गढ़ और अलवर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। और प्रदेश में बारिश का दौर धीमा, जयपुर और भरतपुर संभाग में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः 9:10 हुए हैं। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में आज कलाकार हैं प्रभुराम।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: श्रोताओं, मरुमंगल कार्यक्रम में आज आप प्रभु राम की गाई लोक रचनाएं सुन रहे हैं।

शो तो अभी मरुमंगल कार्यक्रम सुन रहे थे। कलाकार थे प्रभु राम और साथी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप कुछ युगल हिंदी फिल्मी गीत सुनेंगे। कार्यक्रम में पहले सुने त्रिशूल फिल्म के लिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को।

शो तो अभी आपने त्रिशूल फिल्म के लिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। शब्द रचना साहिर की थी, संगीत खयाम का। और लीजिए सुनिए, कारवां फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए आराधना फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। गीतानंद बख्शी का है, संगीत SD बर्मन का।
1: तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मी के निहार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के कोटम सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। और लीजिए अब सुनिए गीत फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है फर्ज। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोताओ, अभी आप युगल हिंदी फिल्मी गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार।

आज की फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजीव कालिया का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, भारतीय हिंदी सिनेमा का संगीत एक ऐसा मधुर एहसास है जो कभी लोक संस्कृति की खुशबू लेकर आता है तो कभी शास्त्रीय संगीत की सुरीली तान बनकर हमारे दिलों को भिगो देता है। 1970 और 80 के दशक का सिनेमा अपनी सादगी, आत्मीयता और ठेठ भारतीयता के लिए जाना जाता है। उस दौर के संगीत की सबसे बड़ी पहचान थी गीतों की सरलता और गायकी की शुद्धता। श्रोताओ, आज 16 अगस्त है और आज जन्मदिन है। अपनी मधुर मखमली आवाज से सभी पर जादू बिखेरने वाली पार्श्व गायिका हेमलता का। हेमलता को भारतीय सिनेमा में गाए उनके अनूठे गीत उन्हें अन्य कलाकारों से अलग पहचान दिलाते हैं। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस खोल देते हैं। आज हम हेमलता जी को आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और आपको सुनवाते हैं आज के फनकार कार्यक्रम में हेमलता के गाए मधुर गीत। शुरुआत करते हैं उस ऐतिहासिक गीत से जिसने हेमलता को फिल्मफेयर अवार्ड दिलवाया। यशुदास के साथ उनका ये शास्त्रीय बंदिश पर आधारित गीत सुरों का अद्भुत संगम है। चितचोर फिल्म का ये नगमा है, लीजिए सुनिए।

फिल्म के लिए। यसुदास और हेमलता को सुना, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। श्रोताओं, पार्श्व गायिका हेमलता का जन्म 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में हुआ था, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के चुरू जिले के सहला गांव का निवासी है। गाने का शौक उन्हें बचपन से ही था, मगर पारिवारिक बंदिशों के कारण उन्हें गाने का मौका नहीं मिलता था और वो पूजा पंडाल में छुपकर गाया करती थी। और लीजिए अब सुनिए अखियों के झरोखों से फिल्म का ये नगमा।

शो तो अभी आपनी अखियों के झरोखों से फिल्म का नगमा सुना, हेमलता की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। श्रोतो, गायिका हेमलता के पिता का नाम जयचंद भट्ट था और वो शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे और वे उस्ताद वाहिद अली खान के शिष्य थे। हेमलता का बचपन कोलकाता में बीता और हेमलता को बचपन से ही संगीत की तरफ उनका झुकाव था और संगीत उन्हें विरासत में मिला था। और लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म आप तो ऐसे ना थे का ये नगमा। शब्द रचना निदा फाजली की, संगीत उषा खन्ना का है।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: श्रोतो, आज के फनकार कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पार्श्व गायिका हेमलता के गाए फिल्मी गीत। श्रोतो, 1966 में उनका परिवार बॉम्बे चला गया, जहां वे भारत के इस शहर के गिरगांव इलाके में रहने लगे और हेमलता को संगीत निर्देशक नौशाद अली से भी एक निमंत्रण मिला। उन्होंने उन्हें गाने के लिए कहा और उनकी आवाज़ सुनकर नौशाद अली बहुत प्रभावित हुए और वह एक गैर फिल्मी रचना गा रही थी। उन्होंने हेमलता से वादा किया था कि वो उन्हें अपनी फिल्मों में गाने के लिए मौका देंगे, लेकिन उन्होंने उन्हें सलाह भी दी कि जब तक उनकी आवाज़ परिपक्व ना हो जाए वो इंतज़ार करें। उन्हें 1967 में संगीत निर्देशक रोशन का निमंत्रण मिला और उन्होंने रूप रुपया के लिए उषा खन्ना की रचना के तहत अपना पहला गीत तुम खामोश मैं पुरजोश रिकॉर्ड किया और उनका पहला जारी किया गया गीत 10 पैसे में राम ले लो फिल्म एक फूल एक भूल वर्ष 1968 में था। और लीजिए अब सुनिए यशुदास के साथ हेमलता को इस गीत में।

0: श्रोताओं, अभी आपने दुल्हन वही जो पिया मन भाए का ये नगमा सुना, और अगला गीत आपको सुनवाएं उससे पहले ये संदेश।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, 70 और 80 के दशक में जब भी राजश्री बैनर की कोई पारिवारिक फिल्म आती थी तो हेमलता जी की आवाज़ उसकी आत्मा हुआ करती थी। फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए का ये जो गीत है वो भारतीय रीति रिवाजों और पारिवारिक मूल्यों की एक अटूट पहचान बन गया है। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, हेमलता ने अपने करियर की शुरुआत में एस डी बर्मन, एन दत्ता, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, राज कमल, उषा खन्ना, रविंद्र जैन सहित कई प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। हेमलता बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों जैसे नूतन, शबाना आजमी, रेखा, हेमा मालिनी, रामेश्वरी, योगिता बाली, सारिका और माधुरी दीक्षित की आवाज़ भी बनी। लीजिए सुनिए एक और गीत उन्हीं के स्वर में।

श्रोताओ, अभी आपने विश्वास फिल्म के लिए मुकेश और हेमलता को सुना। गुलशन बावरा का गीत था और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और लीजिए अब सुनिए फकीरा फिल्म के लिए हेमलता की आवाज़ में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: और लीजिए शो तो अब सुनिए।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अली जी शो तो कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुनैना फिल्म के लिए हेमलता को, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

शो तो आज के फनकार कार्यक्रम में आपने स्वर कोकिला हेमलता जी के गाए अमर और सदाबहार गीतों का आनंद लिया। उनके गाए नगमे न सिर्फ भारतीय संगीत का अनमोल खजाना है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान

का भी एक अटूट हिस्सा है। आज हेमलता जी का जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर हम सभी श्रोताओं की तरफ से भी उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमेशा स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु रहें और उनकी आवाज़ की मिठास यूं ही हमारे दिलों को सवारती रहे। और कार्यक्रम से अब संजीव कालिया को अनुमति दें। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे आज के फनकार। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम के साथ मैं हाजिर हूँ लक्ष्मी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कहते हैं कि संगीत केवल कानों से नहीं सुना जाता, बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। कई गीत बीते लम्हों में ले जाते हैं और कई किसी अपने की याद दिला जाते हैं। ऐसी मीठी यादों और खूबसूरत एहसास से सजी है आज की महफिल। तो शुरुआत करते हैं इस गीत से।

गीतों में छुपी होती है दिल की कई बातें, सुरों में सिमट जाती है बीती हुई रातें। आपकी फरमाइश, आपका प्यार और आपका साथ, इन्हीं से तो खूबसूरत बनती है हमारी मुलाकातें।

श्रोताओं, अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर की आवाज़ों में लावा फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत आरडी बर्मन का। इस गीत की फरमाइश की थी टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, चक 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, अवतार सिंह, काला मिस्त्री। इसी गीत की फरमाइश हम तक भेजी है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिडा, अलका मिडा, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, इसी गीत के लिए ही हमें संदेश भेजा है कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्षा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, गाउन 4M से कुलदीप, कुलविंदर सिंह, सुप्रीत, जसदीप, चक 15 PS से सरजीत सिंह जोशन, सरजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल सिंह जोशन मेलबर्न, रोबिन सिंह जोशन वेंकूर, मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज, केसी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महिंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा,

श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीलाल, जोनी बंसीवाल, धनराज बंसीवाल, शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कोसर, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जान, वार्ड नंबर 6 सिरसिला जिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा और सोनगरा परिवार। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है निगाहें, आवाज मोहम्मद अजीज की, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने निगाहें फिल्म का गीत सुना। इस गीत की फरमाइश की थी गांव बनवाला हनवंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और सारा मायल परिवार। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा। इसी गीत की फरमाइश की थी जिला मोगा पंजाब से स्वर्ण सिंह, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, इंशान छिपा, पूजा परिहार। इसी गीत की ही फरमाइश हम तक पहुंची है तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़ से पवन सुथार, अमरजीत सुथार, मोहन सुथार, सुनील सुथार, विष्णु सुथार। तहसील भादरा अनुपशहर से गजानन सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, महावीर लोहरा, ममता, मीतू, कीनू और पंकज सारस्वत। गांव जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। गांव अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया। गांव साबुआना फाजिलका से करण कंबोस, चरण कंबोस, रियांश और परिश कंबोस। इसी गीत के लिए ही फरमाइश की थी हमें जिला खरगोन सनावाद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा। गांव कोला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, भजन लाल मेला, सुनील मोहन, कैलाश, लक्षिता सुथार।

गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम प्रकाश बागड़िया, क्रियाश बागड़िया, योगेश बागड़िया, रजत और बेबी गरिमा बागड़िया, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है वारिस, आवाज़ें लता मंगेशकर किशोर कुमार की है, गीत के बोल वर्मा मलिक के हैं और संगीत उत्तम जगदीश का।

अभी आपने वारिस फिल्म का गीत सुना। इस गीत की फरमाइश की थी जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, गंज डूडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। इसी गीत की ही फरमाइश की थी हमें दत्तेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा। मंडी के सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद चांदनी, आशीष विश्वजीत, मोहनलाल प्रजापति। गांव ढाणी लाल खां नोहर से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, वंदना गोहर, मयंक गोहर, तन्वी गोहर, जयपाल यादव। इसी गीत के लिए ही हमें फरमाइश भेजी थी दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। गजरूटवाला से शमशूल कमर, राही साहिल, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरर, कृष्ण मुकेश तरर, रामचंद्र तरर, कपिल देव तरर, हिमानी जाखड़। सनावर से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युदव कड़वासरा, किशन का मायल, हनुमान सहारन, किडू राम झोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा, तन्वी बोट, अंकित कागड़ा। गांव खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा। काशी निवास बंगाली पंजा, नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जानवी रंभाड़े, वैष्णवी रंभाड़े, हर्षेल रंभाड़े और सोनू। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम दामिनी, आवाज़ें कुमार सानू, साधना सरगम की है। गीत लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम शवन ने।

इस गीत की फरमाइश की है लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्जवल दास मानिकपुरी, अलिका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता, कुलदीप गांधी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु डिघान खुराना, व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर अशोक कुमार साहिल, मिसेस संतोष साहिल, लाश्री गौरव साहिल, जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया, डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, तन्मय गजभिये, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी, फाल्गुनी जोशी, बोरखेड़ा पिटरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंत मूणत, चेतन नाहटा, दिशा कुश मूणत, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, इसी गीत की ही फरमाइश की है, जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो, जयपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, शालू कटारिया, रावल करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, शिवम ढुकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, शायना, विष्णु ढुकिया, ईवा धनिया, आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। इस गीत की फरमाइश की है सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित रितु और मुकेश जगताप। पश्चिम सिंहभूमि चाईबासा झारखंड से शिवा गोप प्रेम गोप कपिल गोप शिवाश गोप संगीता गोप लिपि गोप दीपाली गोप। बहलोल नगर से हरीश हैरी जगतार जहरी सुशील देलू राकेश चाहर। गांव सादेवाला सिरसा हरियाणा से रामेश्वर माहर परमेश्वरी माहर जिगर और जानवी। गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जागड़ा राजवाला कार्तिक व दिवांश। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे सैफोला सबाहत कीरत हुजरे रिहान शेख। महबूबपुरा सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद जावेद खत्री मोहम्मद इकबाल खत्री जैद मुनीरा बाबूभाई खत्री। हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा मदन डॉक्टर मदनलाल वर्मा। बाजार रोड मुंगसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा सबिश्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। जालना महाराष्ट्र से विजय पाटिल पदा भाई पाटिल चिरंजीव नैनेश्वर पाटिल कुमारी तेजस्वी पाटिल समस्त पाटिल आडगांव तालुका भोकरदन जिला जालना महाराष्ट्र से ये फरमाइश थी। जैन मंदिर वाली गली कूरावाली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन अंसारी नौरीन अंसारी आसना अंसारी मोहम्मद कैफ अंसारी। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े योगिता हागोड़े कुमारी प्रियाली हागोड़े पार्थ हागोड़े हागोड़े परिवार। गौतम नगर नादेड़ से प्रभाकर जोंगले आरती जोंगले नादेड़ महाराष्ट्र से ये फरमाइश भेजी है हमें। गांव बहलोल नगर से नतेंद्र झारेर भीमसेन झारेर लोकेश झारेर गौरव झारेर पुनीता झारेर और बेबी आरवी झारेर। मंडी के सिंहपुर से श्यामलाल राजपाल जयपाल संदीप कुमार चिमनलाल। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सिंदूर। आवाजें लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर की है। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की फरमाइश की है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन। गांव पंजोलिया, जिला जालौर, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया, चक साथ, डीबियन, भादुवाली ढाणी से टेकचंद चारण, संतोष देवी, सत्यप्रिय चारण, जयसिंह चारण, योगी श्री, रणजीत सिंह सुथार, गुरदेव सिंह भागड़िया, अन्य हरनेक सिंह भागड़िया। इसी गीत की फरमाइश की है हमें उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्ना गोस्वामी, अनु गोस्वामी। निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर ने हमें इसी गीत के लिए ही फरमाइश भेजी है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पी एस नावरकर, निर्मला कावरकर नावरकर, विशाल नावरकर,

कस्बा गुनोर यूपी सी फारूक अली खान फैजी फरान फरहीन फरान फारिया ताहिरा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर वीरक जैतेग वीरक मीका वीरक चक एक पी अनूपगढ़ से गुरबचन बेदिल राज बेदिल बलविंदर थिद रूबी गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी सौरभ डूडी अलीका तहसील डबवाले से रूप सिंह लखोत्रा करमजीत लखोत्रा सरवजीत लखोत्रा रानी सोनू रजनी फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया श्रीमती सरोज चौरसिया सरिता चौरसिया सुजाता चौरसिया सुबोध सलोनी चौरसिया संजू लला चौरसिया पूजा पिंकी चौरसिया बाबू शिवा शिवानी चौरसिया पवन गोड़ और योगेंद्र नायक कास कस्बी गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा विमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा सरवन डिनवा हंसराज भाटिया मनीराम रंजीत राम किरोड़ीवाल सुरेंद्र भादु गोदूर रोड धुलिया से मनोहर मगर यामिनी मगर उदयन और अर्पिता बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक नामदेव समर्थ नामदेव और सौर्य नामदेव आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है कुदरत का कानून। आवाज़ें लता मंगेशकर और शबीर कुमार की है, गीत समीर का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश की है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, सूरतगढ़ से सुरजीत सिंह लेखराज, पवन कुमार, रवि कुमार, कुंदन लाल साक्य, छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर, जिला मुरादाबाद, गांव दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, वीरंग गांव गुजरात से अजीत भावसर, पमिला भावसर, भावेश कुमार भावसर, सनी भावसर, गांव हीरावाली पंजिल फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारिक, भूपेंद्र पारिक, जगत मडावरा, राजू मडावरा, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, गजडुवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, गाड़गी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखड़े, कल्पनाताई लोखड़े, शैलेश लोखड़े, प्रतीक्षा लोखड़े, स्वपील लोखड़े, रक्षता लोखड़े, रियांश लोखड़े और पूरा लोखड़े परिवार, राजकोट से जैमिन जैन, हेमंत हेतल जैन, कृष्णा जैन, राजेश जैन, गांव पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से इसी गीत की फरमाइश की है दीपेश वर्मा, पूना वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने, कमल साहनी पीगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, मुंगी पैठण महाराज से बाबा साहब गंगड़कर, साखरबाई गंगड़कर, परमेश्वर रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी और कंगनकर परिवार, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजनी

इसी गीत के लिए ही हमें कुछ पत्र भी मिले हैं। गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित हेमंत, श्री गंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जसपाल सिंह सिद्धू, जगमोहन सिंह अनेजा, नरेश कुमार शर्मा, साधु शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, नगराना से लालचंद नाथ, प्रेम, सोनू, मंजू, प्रदीप, रेणु, राहुल, दीपक, रीटा, पीयूष, योगेश नाथ, कनेरा मोहला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका वंश बत्ता, मंडी गोलुवाला से बिलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान, गांव लोदेसर से पप्पूराम गार, टीमन बाई, ललिता बाई, संतोष देवी, रुचिका, गीदरवाड़ा पंजाब से मंजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल, बेबी हिनाशा, पदमपुर से पवन तनेजा, योगेश तनेजा, भुच्चो गेंचिया से परेम सिंह जोड़ा, मंजीत को जोड़ा, करणवीन, करण, दपिंद्र, वरिंद्र, सिमरन, एकम, दमन, अभिजोत, डबवाली हरियाणा से जेके बोकलिया, श्रीमती सुनीता बोकलिया, संजय, अनिल, मीनू बोकलिया, पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमनदीप गिल, बलजीत गिल, दिशा मोहला, जगदार जग्गा, बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक और शोभा नायक।

साथ ही इस गीत के लिए हमें पत्र भेजा है 32 बीबी से सनी शेषपाल, रोशनी देवी, केसी सिंहपुर से गुरबचन सिंह भट्टी, घरजातिया से भगवान दास चौहान, गांव सातस कीकरवाली से बलवंत राम, बाबा हंसनाथ भालूराम, मदन काटपाल, धर्मपाल चोपड़ा, विद्या देवी चोपड़ा, रुद्र बाबा, गांव दोवी से ठाकुर रघुवीर सिंह, अजयपाल सिंह, शक्ति सिंह, गुरदीप शेरगिल, चंद सिंह सरा, गांव धनुर से डॉक्टर पुरुषोत्तम खन्ना, गांव 17 एफ के सी सिंहपुर से पृथ्वीराम, जसनदीप, नंदराम, ताराचंद, तीरथ सिंह, जगमेल सिंह, मटिली राठान से जीत सिंह, दिलबाग सिंह, गांव 8 स्थानी से बाबूलाल, सुभाष चाजड़िया, बाबा मंगलनाथ, बाबा लाल चंद, कृष्णलाल चावरिया,

इसी के साथ ही अनवो गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत का समय रहेगा दिन में 12:30 पर। खेत खलियान कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर। बहनें अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी 1:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगी भरोसा करिए भरोसेमंद रहिए आधुनिकता के मायने, रफ ड्राइविंग से बचें कुछ मीठा हो जाए। और साथ ही वार्ता सुनेंगी स्वयं सहायता समूह की सफलता और वार्ताकार होंगी सुनीता रानी।

युवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम की सभा में 5 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद। सरायकी का समय रहेगा 6:05 पर।

चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे पशुओं में परजीवियों की रोकथाम, भिंडी के प्रमुख कीट व प्रबंधन, गोबर खाद, बाजार भाव और मौसम की जानकारी और साथ ही राजस्थानी काव्य पाठ सुनेंगे आप और कवि विनोद स्वामी।

नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे रात 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवार संगीत सभा आप सुनेंगे रात 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण समय है।

कॉटन सिटी चैनल सूरत घर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपके दिल की किसी पुरानी खिड़की को खोल देंगी, और कुछ ऐसे गीत जो इस खिड़की से आती हुई ठंडी हवा की तरह आपकी यादों को छू जाएंगे। आज हम लेकर आए हैं साथियों, जिंदगी एक किताब है। कुछ पन्ने हंसाते हैं, कुछ रुलाते हैं, कुछ पन्ने याद रह जाते हैं और कुछ गीत बनकर हमेशा साथ निभाते हैं। तमन्नाओं से शुरू होगा, सांसों की खुशबू से गुजरेगा आज का सफ़र। प्रेम की गर्माहट को महसूस करेगा, आंखों की भाषा पढ़ेगा, हवाओं से बात करेगा और अंत में दिल की पुकार तक पहुंचेगा। तो शुरुआत करते हैं इस सफ़र की इस गीत से।

साथियों, तमन्ना का कोई अंत नहीं होता। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। शायद इसी का नाम जिंदगी है, जहां मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है। तो लीजिए, सुनिए मुकेश की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम होली आई रे।

साथियों, प्रेम को समझने के लिए हमेशा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कभी एक नज़र काफ़ी होती है, कभी एक मुस्कान, और कभी सिर्फ किसी सांसों का एहसास। सुनते हैं स्वयंवर फिल्म का ये गीत आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

साथियों, मोहब्बत आवाज़ नहीं करती, बस महसूस होती है, कभी धड़कनों में, कभी आँखों में और कभी किसी की खामोशी में। तो अगला गीत उन्हीं आँखों के नाम।

साथियों, इंसान कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, उसके भीतर एक कोना हमेशा ऐसा रहता है जहाँ कुछ पुरानी यादें चुपचाप बैठी रहती हैं। कभी कोई गीत उन्हें जगा देता है, कभी कोई खुशबू, कभी कोई मौसम, और कभी अचानक चलने वाली हवा। हवा कभी संदेश लेकर आती है तो कभी किसी की याद, और कभी किसी आने की आहट।

साथियों, ज़िंदगी लंबी हो ये ज़रूरी नहीं, ज़िंदगी में पल खूबसूरत हों ये ज़रूरी है, रिश्ते बहुत हों ये ज़रूरी नहीं, जो हो उनमें अपनापन हो ये ज़रूरी है। गीत बहुत हैं और ये ज़रूरी नहीं बस एक गीत ऐसा हो जो सुनते ही दिल कह उठे कि ये तो मेरी कहानी है। इसी उम्मीद के साथ ही आज का ये सफ़र यहीं पर समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे गजल गायक पंकज उदास को।

0: जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलियान।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, जियां जियां टाइम निकलन लाग रहे है, बियां बियां अपना किसान भाई कम टाइम में ज्यादा मुनाफा कमाने की सोचे और इन सोच सोच में ज्यादा खाद उर्वरक कीटनाशक नाखनो शुरू कर दियो, जके की वजह से पर्यावरण प्रदूषण के सागे सागे बांत बांत की बीमारियां और जमीन खराब होने लाग रही है। भाई लोगों, ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करने से भूमि भी बंजर होने लाग रही है और जको कीटनाशकों से या रासायनिक खादा से उपजेड़ो अनाज आप खावा तो बीच कई तरह की बीमारियां भी ज्यादा पैदा हो रही है। आजकल आप देखा कि कीटनाशकों के छिड़काव से अपनो पर्यावरण भी प्रदूषित होने लाग रही है, छोटा मोटा पक्षी जानवर भी खत्म होने लाग रहे हैं। इन वास्ते आप मान सका कि कीटनाशकों के प्रभाव से पूरी जिंदगियां खतरे में आ रही है। जठा तक हो सके आप कीटनाशकों को छिड़काव और बुरकाव पर आपने

नियंत्रण करना जरूरी है और आपने जैविक खेती करने की जरूरत है। जैविक खेती जो अन्नदान तो अच्छा स्वास्थ्यवर्धक होवेगा ही, इनके अलावा बीमारियां पर भी रोकथाम हो सी। जैविक खेती करने से भूमि प्रदूषण कम होने के सागे सागे जमीन की ताकत में भी बढ़ोतरी हो सी। जका जीव जंतु किसान हितैषी है वे भी बचा रहेगा। इन वास्ते आपा जैविक खेती की तरफ ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। किसान भाइयों, जैविक खादा को आपा ने ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, जिया गोबर की खाद। भाई लोगों, घरेलू पशु जिया गाय भैंस बकरी ऊंट आगे मल मूत्र और गोबर से आ खाद तैयार कर सका। भाई लोगों, गोबर की खाद में 0.5 से 1% नाइट्रोजन, 0.4 से 0.8% फॉस्फोरस, 0.5 से 1.3% तक पोटाश, 40 ppm जस्तो, 2.8 ppm तांबो और इया ही लोहा मैंगनीज जिसा तत्व भरपूर मात्रा में गोबर की खाद में मौजूद होवे। जे किसान भाइयों आपा खेत में गोबर की खाद को प्रयोग करा तो इसे माटी की भौतिक रासायनिक और जैविक संरचना में सुधार कर सका। अब बात करा आपा कंपोस्ट खाद के बारे में। कंपोस्ट खाद तैयार करने खातर खरपतवार फसल अवशेष पशुओं को बचेड़ो चारो पेड़ पौधा की पत्तियां कूड़ो कचरो और दूसरो कार्बनिक कचरो जका ने सड़ा के कंपोस्ट खाद आपा तैयार कर सका। इमें 0.4 से 0.8% तक नाइट्रोजन, 0.3 से 0.6% तक फास्फोरस और 0.7 से 1% तक पोटाश हो। किसान भाइयों, कंपोस्ट खाद आपने जितनी प्रति बीघा अपना कृषि वैज्ञानिक बतावे बिंगे हिसाब से खेत में बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहली नागे माटी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए ताकि अपनी भूमि की उर्वरा ताकत भी बनी रहे और टेम सारू नाखड़ी खाद से अपनी फसल भी बढ़िया हो। इन वास्ते भाई लोगों, खेत में जीवांशों की मात्रा बढ़ाने खातर आपा कंपोस्ट खाद तैयार करके खेत में जरूर डालनी चाहिए। अब बात करा भाई लोगों वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में। आ खाद भाई लोगों कैंचुआ से तैयार करी जाए और इन्हें ही आपा कैंचुआली खाद केवा। भाई लोगों, प्रकृति कैंचुआ ने अद्भुत क्षमता दी है जगह की वजह से कैंचुआ खुद के बाहर से ज्यादा मल मूत्र त्याग करके उच्च कोटि की खाद तैयार कर सके। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट खाद में 2.5 से 3% तक नाइट्रोजन होवे और 1.5% से 2% तक फास्फोरस होवे। यहाँ ही 1.5% से 2% तक पोटास ई खाद से आप खेत खातर ले सका। इन वास्ते वर्मी कंपोस्ट खाद एक अच्छी और बढ़िया खाद है। कंपोस्ट खाद में एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा गोबर की सड़ी गली खाद से 8 गुना ज्यादा होवे। ई खाद गए एंटीबायोटिक गुणा की वजह से अपनी खड़ी फसल में कीट रोग भी बहुत कम लगे। इनके अलावा वर्मी कंपोस्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व भी भरपूर और संतुलित मात्रा में होवे। इनके सागे एंजाइम विटामिन भी वर्मी कंपोस्ट खाद में भरपूर होवे। इन वास्ते अपना किसान भाई कैंचुआ से खाद तैयार करके खेत ने उपजाऊ और बढ़िया बना सके। भाई लोगों, भूमि की कठोरता ने खत्म करने खातर अपन जैविक खादांगों ही प्रयोग करना चाहिए ताकि भूमि बंजर होने से आप बचा सका। वर्मी कंपोस्ट खाद आपा खेत में या घरे भी तैयार कर सका। आपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से कैंचुआ ले आगे आपा खाद तैयार कर सका। इनमें ज्यादा खर्चो भी कौन लागे और ज्यादा टेम भी कौन लागे। इन वास्ते घरे या खेत में जठे भी जीगा मिले बठे आपा छोटो मोटो वर्मी कंपोस्ट शेड या टब तैयार कर लेवा। इनके अलावा किसान भाइयों, आपा खेत ने ज्यादा बेहतर तरीका से उपजाऊ बनाने खातर हरी खाद को भी इस्तेमाल कर सका। हरी खाद बनाने के लिए आपा दलहनी और अदलहनी फसलों ने हरी अवस्था में ही माटी में जुताई हल से मिला देवा ताकि माटी में जीवांश की मात्रा भी बढ़िया बनी रहे। इनके अलावा हरी खाद प्रयोग करने से माटी की भौतिक रासायनिक और जैविक दशा पर अनुकूल प्रभाव पड़े। किसान भाइयों, हरी खाद के प्रयोग से भूमि में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिले। इनके अलावा माटी की जल धारण क्षमता में भी बढ़ोतरी होवे और माटी भुरभुरी कणाकार बन जाए जकि अपनी फसल के लिए फायदेमंद होए। इन वास्ते आपा अपने खेत में हरी खाद को इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, हरी खाद तैयार करने के लिए डेंचा सनई ग्वार जैसी फसलों की बीजांत करके आपा हरी खाद तैयार कर सका। भाई लोगों, आपा जीवाणु खाद इस्तेमाल करके भी भूमि की उर्वरा ताकत बढ़ा सका और अच्छी पैदावार भी ले सका। भाई लोगों, जीवाणु खाद से फसलों की पोषक तत्वों की पूर्ति आपा कर सका। किसान भाई, जीवाणु खाद एकदम प्राकृतिक और आसानी से तैयार होने वाली खाद है। इनकी उत्पादन लागत रासायनिक उर्वरकों की तुलना में कई गुना कम होवे। राइजोबियम जीवाणु दाला सागे मिल गए लगभग 100 से 300 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक उपलब्ध करवा देवे। भाई लोगों, जीवाणु खाद से फास्फोरस

0: गोलक जीवाणु भूमि में उपस्थित ए घुलनशील फास्फोरस ने घुलनशील अवस्था में लिया के पौधा ने घणो सारो फायदो पुगावे। इन वास्ते मान सका के जीवाणु खाद फसल भूमि और पर्यावरण के लिए बढ़िया खाद है। किसान भाइयों, अपना कई भाई लोग है जका अपनी खड़ी की खाद तैयार करके भी खेत में ना के तिलहनी स्यू तेल निकलने के बाद जकी खड़ बच जावे बीच यूँ खाद तैयार भी आपा कर सका। खड़ी की खाद में नत्रजन को प्रतिशत गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद की तुलना में ज्यादा होवे। पोषक तत्वों की मात्रा खड़ी की प्रकृति पर निर्भर करे। जी हम बात करा महुआ की खड़ी में 2.8%, अरंडी की खड़ी में 4.4%, नीम की खड़ी में 5.2%, सूरजमुखी की खड़ी में 7.9% तक नत्रजन होवे। इनके सागे फास्फोरस पोटाश भी पूरी मात्रा में होवे। इन वास्ते दूसरी खाद के सागे आप खड़ी की खाद तैयार करके खेत को उपजाऊपन बढ़िया बना सका। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिका और विशेषज्ञों की राय माना तो आप साल भर में 2 या 3 फसलों की बीजांत करा। और एक बात आ भी है कि आप हर साल 1-2 तरिया की किस्मा ने लेके ही बीजांत करता रहा। लेकिन जे आप हर साल भांत भांत की फसलां बीजांत करा, यानी फसल चक्र अपना के बीजा, तो अपनी माटी की उर्वरा शक्ति तो कायम रह रही है। इनके अलावा खर्चा पानी की भी बचत चौकी हो जाए। किसान भाइयों, फसल चक्र अपनाने से कई तरह का लाभ आपा ने होवे। जिया माटी को कटाव भी कम होवे, फसल चक्र से कई तरह की बीमारियां और कीट भी कम लगे। इन वास्ते आपा ने फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। किसान भाइयों, फसल चक्र अपनाता टाइम आपा ई बात को ध्यान रखना है कि एक बार गहरी जड़ वाली फसल के बाद में आपा ने कम गहरी जड़ वाली फसल की बीजांत करनी चाहिए। इसी फसलों की जड़ा ज्यादातर गहरी और माटी के अंदर तक होवे, जिसू पौधा माटी के ऊपर शू आपको भोजन पानी न लेगे, अंदर गहराई शू पोषण लेवे, जका की वजह शू जमीन के ऊपरी सतह पर मौजूद जरूरी पोषक तत्व काम को नहीं आवे। और आप जे दूसर बाई फसल बीज से तो माटी का पोषक तत्व खत्म होता जाएगा। जे आपा फसल फिर बदल करके बीज से तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और जमीन में उर्वरा शक्ति पैदा होने को जमीन ने मौको भी मिलते रहेगा। इनके अलावा आप ई बात को भी ध्यान रखा कि ज्यादा खाद लेने वाली फसल के बाद कम खाद से पकाने वाली फसल बीजनी चाहिए। जे आप ज्यादा खाद लेके पका वाली फसल बार बार बीजता रहे तो खाद की खपत ही तो ज्यादा हो जाएगी, हैर आपने बिंगी पूर्ति करनो ओखो हो जाएगा। इनके अलावा माटी की रंगत में भी फर्क देखने मिल सी। जे आप फसल चक्र अपना आगे बीजांत करांगा तो किसान भाइयों, पहली फसल में नाखड़ी खाद अपनी दूसरी फसल में भी अच्छो असर करेगी। इनके अलावा पानी सिंचाई की बचत को भी ध्यान रखना है, यानी ज़्यादा पानी वाली फसल के बाद आप कम पानी वाली फसल बीजा। इशू एक तो सिंचाई के साधना को आपने ज़्यादा उपयोग को नहीं करना पड़े, दूसरी बात आ कि जमीन में ज़्यादा दिन पानी टिके रहने से जमीन में होवन वालों वायु संचार में भी की भी तरियांगी बाधा को नहीं आवे, क्योंकि ज़्यादा पानी जमीन में रहने से जरूरी जीवाणु क्रियाशीलता बाधित हो जाए। इशू भूमि ने बचाने खातर आप उदाहरण के तौर पर देखा तो धान की फसल के बाद चना की बीजांत करनी चाहिए। किसान भाइयों, फसल चक्र अपनाता टाइम आप ई बात को भी ध्यान रखा कि अनाज वाली फसलों के सागे सागे दलहन की फसलों को भी बीजांत आपने फसल चक्र के दौरान करना चाहिए। जिया लोबिया की फसल के बाद कणक की बीजांत आप कर सका, क्योंकि ई तरिया शू फसल जब आप काट लेवा तो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा काफी हद तक रह जावे, क्योंकि आप जब भी अदला बदली की फसल बीजा तो आपने नाइट्रोजन खाद या यूरिया की ज्यादा जरूरत कौन पड़े और अपनों खर्चो पानी भी बचे। किसान भाइयों, मूंग लोबिया के बाद कणक की ही बीजांत करा तो बढ़िया रहसी। और एक बात आ ध्यान रखनी है कि आप बेई फसल बीजा जकी फसल में ज्यादा खेचल ना करनी पड़े और अपनों पीसो टको भी कम लगे, तो आ बातों को आपने ध्यान रखना है जिसो आप अच्छी पैदावार अच्छी उपज ले सका। पर अब मैं खेत का नहीं चालू सा, राम राम सा राम राम।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अष्ट धातु से निर्मित 21 फीट ऊंची प्रतिमा और मिनी अटल स्मारक का अनावरण किया। इसके बाद श्री शाह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज मैदान में पहुंचे, जहाँ वे इस समय अटल गौरव स्मृति समारोह को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री ने 15 जिलों के लिए 5,659 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद श्री शाह का आज ही अलवर जाने का कार्यक्रम है, जहां से राज्य के 17 जिलों के लिए 6,453 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान गृह मंत्री सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। श्री शाह विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। वे विजयनगर ग्राउंड में जनसभा

0: यहां से राज्य के 17 जिलों के लिए 6453 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान गृह मंत्री सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। श्री शाह विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। वे विजयनगर ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री शाह नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन की घोषणा करेंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए राशि भी हस्तांतरित करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी शामिल हैं। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने वाजपेयी जी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के शब्दों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने राष्ट्र को सशक्त बनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज जोधपुर के जिला न्यायालय परिसर में 60 कोर्ट क्षमता वाले नए 7 मंजिला भवन का उद्घाटन किया और नए हाईकोर्ट गेस्ट हाउस की आधारशिला रखी। सीजेआई का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 25वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने और समारोह को संबोधित करने का कार्यक्रम है। साथ ही लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोड मैप विषय पर आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं सीजेआई का प्रमुख अधिवक्ता संगठनों द्वारा आयोजित संयुक्त सम्मान समारोह में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। राजधानी जयपुर में आज बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाएगी। बैंड बाजों और शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से ये सवारी निकलेगी। इसके लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में भरतपुर, धौलपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई और कुछ स्थानों पर तेज बरसात रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, कोटा में दिन भर रुक रुक कर तेज बरसात का दौर चला। वहीं टोंक, बूंदी, अलवर और चित्तौड़गढ़ के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। इधर राज्य के पश्चिमी भागों में बारिश का दौर थमने के बाद अब फिर से धूप निकलने से गर्मी और उमस बढ़ने लगी है। प्रदेश में सबसे अधिक 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल और परसों प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि 19 अगस्त से एक बार फिर पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। अब कार्यक्रम सुनिए महिला जगत।

आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। बहनों, अपने वादे के मुताबिक और आपके भरोसे के मुताबिक उर्मिला हाजिर है आज का महिला जगत कार्यक्रम लेकर। सबसे पहले स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, एक पंक्ति हम सबने सुनी है, भरोसा करिए, भरोसेमंद रहिए। ये पंक्ति एक खूबसूरत एहसास है और एक खूबसूरत और गहरा विचार है। ये किसी भी मजबूत रिश्ते, दोस्ती और समाज की नींव है। बहनों, भरोसा एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। किसी के भरोसे को जीतने के लिए ज़रूरी है कि हम भरोसेमंद रहें और हम हमेशा ईमानदारी से बात करें, अपने काम के प्रति भी ईमानदार रहें और अपने बातों के प्रति भी। और बहनों, झूठ बोलना गलत हो जाता है क्योंकि झूठ बोलने से भरोसा टूट जाता है। इसलिए हमेशा सच बोलें, स्पष्ट बोलें, जिससे कि हमारा भरोसा कायम रहे। इसके साथ ही साथ बहनों, ये भी ज़रूरी है कि हम अपना काम समय पर करें और जो भी हमने वादा किया है, जो भी हमने कहा है, वो हम करके दिखाएं। यानी हमारी कथनी और करनी में समानता हो, क्योंकि करके दिखाना ये बहुत मायने रखता है। हम दूसरों की भावनाओं को समझें और उनके प्रति सहानुभूति रखें, जिससे कि हमारा भरोसा और मजबूत होता है। किसी को भरोसा दिलाने के लिए वादों में और कर्मों में वचनबद्ध रहें। जो भी आपने वादा किया है वो आप वादा निभाएं और अपने कर्मों से भी वचनबद्ध रहें। यानी अपने कर्म, अपना कार्य ईमानदारी, लगन और तत्परता से करते रहें। बहनों, विश्वास रिश्तों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्वास दोनों तरफ से होता है तो रिश्ता बहुत मजबूती से निभता है, लंबे समय तक चलता है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें और कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसे शब्द बोलें, कुछ ऐसा हमारा व्यवहार हो कि दूसरे भी हम पर पूरा भरोसा करें। तो बहनों, बातें तो हम बहुत सारी करेंगे और अपने भरोसे को हम मजबूत भी करेंगे, लेकिन यकीन मानिए, आप भरोसा रखिए, इसी विषय पर बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन वादा आपसे किया है आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, हम सुनते हैं प्यारा सा गीत।

बहनों, हम किसी दूसरे को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो कर ही सकते हैं। इसलिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने शब्दों पर भी। हम अपनी वाणी से और अपने शब्दों से किसी को भी चोट ना पहुंचाएं, किसी की भावनाओं को आहत ना करें, और किसी के भी चरित्र या फिर योग्यता के बारे में हम तुरंत राय बना लेते हैं। ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है, लेकिन बहनों ज़रूरी है कि हम समय समय पर सामने वाले की सराहना करते रहें। हो सकता है कि वो व्यक्ति उस सराहना का वास्तव में हकदार हो जो हम पहली नज़र में नहीं देख पाए हैं, और किसी की भी पिछली गलतियों को भूल जाएं तो बेहतर होता है। इससे विश्वास धीरे धीरे बनने लगता है, और किसी को भरोसा दिलाने के लिए हम नकारात्मक विचारों से दूर रहें और किसी की भी आलोचना करने से बचें। हमेशा उनके गुणों को देखें, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करें। खुद पर विश्वास रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो सामने वाला भी हम पर विश्वास करता है, और इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और दूसरे भी हम पर भरोसा करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बहनों, भरोसा एक दिन में तो नहीं बनता है, निरंतर प्रयासों से बनता है। यदि हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाए हैं तो हम बार बार उसे देखते रहें। हो सकता है वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो, और यदि कोई हम पर भरोसा नहीं करता है तो हम अपने कर्मों से, अपनी वाणी से अपने आप को सुधारते रहें, अपने आप को निखारते रहें, और होगा एक दिन यूं कि लोग हम पर भरोसा करने लग जाएंगे। और सामने वाले की बातों को ध्यान से सुने। केवल अच्छे वक्ता नहीं, अच्छे श्रोता भी बनने, ये बेहद ज़रूरी होता है। यदि हम अच्छे श्रोता बनते हैं तो हमारा भरोसा बहुत मजबूत हो जाता है। और एक बार फिर से प्यारा सा गीत।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं?
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में?
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: बहनों, लगभग 10 से लेकर 20 स्थानीय लोगों या विशेषकर महिलाओं का एक छोटा सा ग्रुप, एक स्वैच्छिक संगठन होता है जिसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह। इस पर हम आपको वार्ता सुनवा रहे हैं सुनीता रानी की, और वार्ता है स्वयं सहायता समूह की सफलता।
4: स्वयं सहायता समूह, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, स्वयं सहायता यानी जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इसमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की 10 से 20 महिलाएं अपना एक समूह बनाती हैं। इस समूह में महिलाएं थोड़ी बहुत बचत करके अपना पैसा इकट्ठा करती हैं, और यही पैसा वह अपने समूह के जरूरतमंद सदस्य को कम ब्याज पर देती हैं, जिससे वह महिला सदस्य अपना कोई भी लघु व्यवसाय चालू कर सकती हैं। कई ऐसे घरेलू लघु व्यवसाय हैं, जैसे अचार, पापड़, सिलाई, कढ़ाई, जो वह अपने घर बैठे ही कर सकती हैं। ये सभी काम वह अपने घर के काम के साथ साथ भी कर सकती हैं। इससे महिलाओं की गरीबी तो कम होती ही है, साथ ही जागरूकता भी फैलती है। स्वयं सहायता समूह का महिला सशक्तिकरण में भी काफी योगदान है। यह समूह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को

वित्तीय सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान में सक्षम बनाता है। समूह के सदस्यों की समान विचारधारा एवं समान आर्थिक स्थिति और समान उद्देश्य पूर्ति के लिए 10 से 20 सदस्यों द्वारा यह समूह बनाया जाता है, जिसमें सभी आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता करने का संकल्प लेते हैं। यह समूह स्वैच्छिक एवं अनौपचारिक संगठन है। इसमें किसी पर कोई दबाव नहीं दिया जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपनी इच्छा से इकट्ठी होती हैं और अपना एक समूह बनाती हैं और समूह के सभी सदस्यों की सहमति से जरूरतमंद को कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है, ताकि कोई भी काम करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। स्वयं सहायता समूह सदस्यों का अपना एक बैंक होता है, जिसमें सदस्यों की बचत राशि रखी जाती है। यह बैंक जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देता है और लेन देन का हिसाब रखता है। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण सदस्यों के बीच कर दिया जाता है। समूह का कोई भी सदस्य अपने इस बैंक से ऋण ले सकता है। स्वयं सहायता समूह को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्वयं को समूह में पंजीकृत करा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह में गरीब एवं वंचित वर्ग की महिलाओं को छोटे ऋण उपलब्ध कराना है, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही सामाजिक विकास में भी इसका काफी योगदान है। समूह में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पोषण आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए प्रेरित करता है। इसमें वह अपने हुनर के हिसाब से कोई भी व्यवसाय चुन सकती हैं और उसे काम के लिए किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। वह अपने व्यवसाय की स्वयं मालकिन है। आज के समय की हर महिला अपनी मेहनत और लगन से हर वो मुकाम हासिल कर सकती है जो वह चाहती है। जरूरत है तो सिर्फ सही दिशा निर्देशों की। समूह में महिलाओं को व्यवसाय चालू करने के लिए ऋण तो मिलता ही है, साथ ही महिलाओं को आपसी सहमति से काम के प्रति जागरूक भी किया जाता है। वह अपना काम करके अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सकती हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं। यही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आज अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बना रही हैं, साथ ही पुरुषों से कंधा मिलाकर अपना व्यवसाय चला रही हैं। भारत में आज के समय में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। ये सिर्फ पैसों का समूह नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का समूह है। इसमें अपना ही थोड़ा थोड़ा करके जमा किया पैसा अपने ही काम आता है। इसका मूल मंत्र यही है, अपनी मदद अपने हाथों। स्वयं सहायता समूह एक प्रकार से छोटी बचत बड़ी ताकत है। हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चालू की गई हैं, जैसे बैंक सखी योजना, लखपति दीदी योजना, बैंक लीकेज कार्यक्रम। ऐसे कार्यक्रम जो सरकार द्वारा हमारी स्थिति को सुधारने के लिए चालू किए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य गांव की गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। इन बैंकों से समूहों को कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है, जिससे कि वह अपना कोई भी छोटा या बड़ा व्यवसाय चालू कर सके। इसमें उन्हें ज्यादा ब्याज भी नहीं देना पड़ता है, साथ ही शाहूकारों के कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जिसमें महिलाओं ने बैंकों से ऋण लेकर कई व्यवसाय चालू किए हैं, जैसे बकरी पालन, डेयरी, अचार, पापड़, सिलाई, खेती आदि कामों को बड़ी ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ाया है। इन सभी कामों की महिलाओं को सरकार द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है। सरकार द्वारा कई तरह के सिलाई केंद्र, पार्लर केंद्र, खेती से संबंधित हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे ट्रेनिंग लेकर महिलाएं अपना कोई भी व्यवसाय चालू कर सकती हैं। महिलाओं

0: द्वारा तैयार किया गया हस्तशिल्प सामान का उत्पाद हमारे देश में तो होता ही है, साथ ही इसका उत्पाद विदेशों में भी होने लगा है। जैसे पापड़ की मांग विदेशों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पापड़ का कारोबार बहुत कम रकम और 7 महिलाओं द्वारा ही चालू किया गया था। ये छोटा सा कारोबार कब बड़ा ब्रांड बन गया पता ही नहीं चला। सबसे बड़ी खासियत इसका सिद्धांत है कि कोई मालिक नहीं, सब साझेदार हैं, हर महिला बराबर है, कोई अधिकारी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं। इससे जो भी लाभ मिलता है वह सब महिलाएं आपस में बांट लेती हैं। इस काम को शुरू करने के लिए महिलाओं ने कोई दान नहीं लिया और ना ही कोई विज्ञापन दिया, सिर्फ मेहनत और मुंह जबानी का प्रचार किया। इस उद्योग ने अनपढ़ और कम पढ़ी लिखी महिलाओं को घर बैठे सम्मानजनक रोजगार दिया है। वे घर के काम के साथ साथ थोड़ा बहुत समय निकालकर ये काम भी कर सकती हैं। इससे उन्हें पैसा तो मिलता ही है, साथ ही सम्मान भी मिलता है। अगर महिला घर के काम के साथ साथ पैसा भी कमाती है तो उसका घर में सम्मान और भी बढ़ जाता है। इससे उन्हें काफी लाभ मिलता है और वह कर्जदार भी नहीं बनती। स्वयं सहायता समूह का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को रोजगार देना और आय बढ़ाना है, जिससे महिलाएं छोटी बचत से बड़ी पूंजी बना सकती हैं तथा उन्हें कर से बाहर निकालने का यह कारगर उपाय है। इससे महिलाएं जागरूक होकर पंचायत और समाज में आगे आती हैं और अपना एक ऊंचा स्थान बनाती हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वार्ड मेंबर, सरपंच पद में भी भाग ले सकती हैं। वे सिर्फ पैसा नहीं जोड़ती हैं, वे हिम्मत, आत्मविश्वास और एक नया समाज भी जोड़ती हैं। एक अकेली महिला के साथ जब 10 महिलाएं और जुड़ती हैं, तब वह स्वयं सहायता समूह बन जाता है और ये 10 से 20 महिलाओं का समूह अपने परिवार और समाज के लिए कुछ भी कर सकता है। यह समूह सिर्फ बैंक नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की नींव है। इस समूह में गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को ऊपर उठाना है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाना है। आज के समय में हर घर और समाज में महिलाओं की बात सुनी जाती है और वे पारिवारिक मामलों के फैसले लेने में भी आगे आ रही हैं। समूहों की शुरुआत से महिलाओं में बैंक के कामकाज, हिसाब किताब और सरकारी दफ्तरों से जुड़ने का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। इससे महिलाओं में आपसी एकता भी बढ़ी है। वह अब हर किसी की मुसीबत के समय उसका सहारा बनती हैं। आज के समय की हर महिला आत्मनिर्भर है। एक महिला चाहे कुछ भी कर सकती है, वह पुरुषों से भी बड़ा बिजनेस चला रही है। यह समूह महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है। स्वयं सहायता समूह ने साबित कर दिया कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा नहीं है, अगर महिला ठान ले तो वह झोपड़ी को भी महल बना सकती है। वह अपनी समझदारी और मेहनत से हर मुकाम हासिल कर सकती है, वह बिहार की बैंक सखी तक बन सकती है। जब सरकार और महिलाएं मिल जाएं, तो गरीबी भी हार जाती है। महिलाओं को ऊंचा स्थान देने में सरकार का अहम योगदान है। ऐसे कई विभाग हैं जिसमें स्वयं सहायता समूह बनाकर सरकार द्वारा समूहों में पैसे डाले जाते हैं और वही पैसा जरूरत के हिसाब से लोगों पर खर्च किया जाता है। उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाती हैं।
1: बहनों, सुनीता रानी की वार्ता आपने सुनी, स्वयं सहायता समूह की सफलता। और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: बहनों, अब बात करें आधुनिक युग की, तो आधुनिक युग को विकास और परिवर्तन का युग कहा जा सकता है। ये वो समय है जब विज्ञान, तकनीक और समाज में नए नए बदलाव हुए हैं। आधुनिकता केवल तकनीकी उन्नति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने हमारे सोचने और हमारे जीवन जीने के तरीके को भी बदल दिया है। आधुनिकता का सबसे बड़ा पहलू विज्ञान और तकनीकी प्रगति है। हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में तकनीकी साधनों का उपयोग हो रहा है। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्ट डिवाइस, ये ऐसे उपकरण हैं जिन्होंने हमारे संचार और हमारी जानकारी प्राप्त करने के तरीके को बहुत सरल और बहुत तेज़ बना दिया है। चिकित्सा विज्ञान में भी आधुनिक तकनीकी ने अनेक बीमारियों का समाधान खोज निकाला है।

आधुनिकता से हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में भी बहुत बदलाव आया है। शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है और महिलाओं की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है और वे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में बहुत भाग ले रही हैं। बहनों, पुराने और रूढ़िवादी विचारों को हमने छोड़ दिया है और समय के साथ नए वैज्ञानिक और तार्किक विचारों को अपनाना प्रारंभ कर दिया है और यही है हमारा आधुनिकीकरण। ये जीवन जीने का ऐसा तरीका है जो विज्ञान, स्वतंत्र सोच और प्रगति पर जोर देता है। बहनों, इस विषय पर अभी चर्चा जारी रहेगी। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
4: रुक जा बुद्धू।
5: What?
4: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
3: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
5: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: बहनों, आधुनिकता के कुछ सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। बदलती जीवन शैली और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने हमें तनाव दिया है और हमें मानसिक परेशानियों की ओर भी अग्रसर किया है। प्राकृतिक संसाधनों का हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं और जिससे पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। तकनीकी आविष्कारों के कारण सामाजिक दूरियां भी बहुत बढ़ी हैं, क्योंकि आज हम व्यक्तिगत रूप से तो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और हमारी बातचीत, हमारा मिलना सोशल मीडिया के माध्यम से ही होता है। आधुनिकता ने हमारे जीवन को सुविधाजनक तो बनाया है, लेकिन हमें तनाव और मानसिक परेशानियां बहुत दी हैं। आधुनिकता के चक्कर में फिजूल खर्ची बहुत बढ़ी है और इसी आधुनिकता के चक्कर में दिखावा भी बहुत बढ़ गया है। आधुनिकता के नकारात्मक जो प्रभाव हैं, बहुत गहरे हैं ये। हमें इससे बचना होगा, इस नकारात्मक प्रभावों को समझना होगा और इससे समझदारी से निपटने की ज़रूरत भी है। बहनों, हम संतुलित और जागरूक होकर ही आधुनिकता के नकारात्मक पहलुओं से बच सकते हैं और हम इन आधुनिक साधनों का जो उपयोग है, बहुत सावधानी से करें, समझदारी से करें, ये बहुत आवश्यक हो गया है ताकि हमारा भविष्य सुखद हो और सुरक्षित हो। आधुनिकता का सार तो बहनों इतना ही है कि हम विकास करें, लेकिन अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और अपने सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखें, जिससे कि हमारे समाज में सुखद भविष्य हमें दिखाई दे। और अब प्यारा सा गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: बहनों, रफ ड्राइविंग एक जानलेवा कारण है। सड़क दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण रफ ड्राइविंग ही है। रफ ड्राइविंग यानी लापरवाही से गाड़ी चलाना, गैर जिम्मेदारी से गाड़ी चलाना और तेज गति से वाहन को चलाना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं, और कई बार यदि हम रफ ड्राइविंग करते हैं तो हमें दंड भी मिलता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो जाता है, भारी जुर्माना भी देना पड़ता है और कभी कभी जेल भी हो जाती है। इतना सब जानते हुए भी हम लोग रफ ड्राइविंग करते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये जानलेवा है, खतरनाक है, इसमें सामने वाले का भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान होता है। और रफ ड्राइविंग के दौरान आप अचानक ब्रेक लगाते हैं, बिना ज़रूरत के गाड़ी की स्पीड को कम कर देते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते ही अचानक बहुत रफ्तार से गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये सब है रफ ड्राइविंग। किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर या फिर बहुत तंग गलियों में बिना कोई संकेत दिए ओवरटेक करना, ये भी तो रफ ड्राइविंग ही है। और किसी भी मोड़ पर गाड़ी को बहुत तेज़ी से और ख़तरनाक तरीके से घुमाना, ये भी रफ ड्राइविंग है। रफ ड्राइविंग से सामने वाले का तो बहुत जान माल का नुकसान होता ही है, हमारा भी होता है। हम इस बात को समझें, क्योंकि यदि हम रफ ड्राइविंग करते हैं तो हमारी गाड़ी के इंजन, गियरबॉक्स, क्लच और सस्पेंशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और हमारी गाड़ी के टायर भी बहुत जल्दी घिसते हैं, और दुर्घटना होने का खतरा तो रहता ही है, और गाड़ी का माइलेज भी कम हो जाता है और पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इतने सारे नुकसान हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फिर ना जाने क्यों हम रफ ड्राइविंग करते हैं और अपने जीवन से खेलते हैं। तो बहनों, हम एक ज़िम्मेदार नागरिक बने, रफ ड्राइविंग से बचें, अपने जीवन को भी बचाएं और सामने वाले के जीवन को भी बचाएं, और हंसी खुशी ये जीवन जीते रहें। और अब प्यारा सा गीत।

कुछ मीठा हो जाए, ये हम सब का पसंदीदा वाक्य है। जब भी कोई शुभ अवसर होता है, कोई जश्न का माहौल होता है या फिर कोई भी खुशी का मौका होता है, तो हम हमेशा कहते हैं चलिए अब कुछ मीठा हो जाए। हाँ बहनों, बिल्कुल सही बात है। घर पर भी हम कोई भी त्यौहार का मौका होता है, खुशी का अवसर होता है, तो अपनी रसोई में हम बहुत मीठे व्यंजन बनाते हैं और बहुत आसानी से बनने वाले व्यंजन हैं चावल की खीर, सूजी का हलवा, बेसन के लड्डू, सेवई वगैरह, ये हम अक्सर घर पर बनाते ही रहते हैं। तो बहनों, अपने किचन में हम ये मीठे व्यंजन बनाएंगे, इनका स्वाद भी लेंगे। तो चलिए पहले कुछ पंक्तियाँ

जाएं, थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाए, कड़वे लम्हों की याद भुलाकर मीठा मधुर एक स्वाद चखा जाए, कड़वे हो चले रिश्तों की कहानी को कुछ जज्बातों के साथ पिरोकर स्नेह चाशनी में डुबोया जाए, थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाए। और अब ये मीठा सा प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन की 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: and disaster resilience, circular economy and adaptation. India is set to host the BWF World Championship starting from tomorrow till August 23rd at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. This will be only the second time India hosts the tournament after the 2009 edition. Indian players have won at least one medal at every World Championships since 2011. The country has claimed 14 medals across the last 11 editions. A report.
1: PV Sindhu will lead India's challenge in women's singles. The former world champion is targeting a sixth world championships medal after winning the Japan Open earlier this year. In men's singles, Lakshya Sen will look to make a deep run, while Ayush Shetty faces defending champion and top seed China's Shi Yuqi in the opening round. The men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will be among India's strongest medal hopes. Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will spearhead India's women's doubles challenge, while Dhruv Kapila and Tanisha Krasto will lead the mixed doubles campaign. India is yet to win a world championship medal in the mixed doubles. Jagyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
0: In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match of Murara Oval in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win on Australian soil and only its second victory over Australia. Mehdi Hasan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with 104 runs, his third test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the host to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए. आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय. झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की. राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है. गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया. बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा. BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी. और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत. ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं. एक रिपोर्ट.
3: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं. प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा. छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है. किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा. प्रोसेसिंग

0: शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है, और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
4: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाद

0: ता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथा चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। आईएमडी ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज

0: केंद्र और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गांव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस गीत से।

ज्योति बने ज्वाला, इसमें मैं अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

राधा पौडवाल को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मजबूर। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को। फिल्म का नाम प्यासा सावन, गीत के बोल संतोष आनंद के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आपने सफ़र फिल्म में मन्ना डे को सुना। गीत लिखा था इंदिवर ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।

लीजिए सुनिए, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को फिल्म का नाम है हनीमून। गीत के बोल वर्मा मलिक के हैं और संगीत दिया है आनंद मिलिन ने।

मांग भरो सजना, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस का प्रसारण सुनेंगे।

आदाब, ये आकाशवाणी है। दिन के 3 बजे हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज होता है। हमारी नशरियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है इस मजलिस में।

करनी चाहेंगी और दिन में 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 पर आपको सुनवाएंगे एक फीचर रहे नविदे शौक। शाम 4 आप फिल्मी नगमे सुनेंगे। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर होंगी। और शाम 5 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप हमारी नशरियात सुन रहे हैं 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। दोपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। भारत नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के माहौलियात से मुतालिक वज़रा की 12वीं मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इम्तहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 के 84 मजामीन के लिए अबूरी आंसर कीस जारी कर दी हैं। एतराजात दाखिल करने की सहूलत मंगल तक दस्तियाब रहेगी। आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में उनके मुजस्मे की नकाब कुशाई की। बैडमिंटन में भारत कल से शुरू होने वाली BWF आलमी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। और क्रिकेट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में तारीखी कामयाबी हासिल की है। अब खबरें तफसील से। भारत मंगल के रोज़ नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के माहौलियात से मुतालिक वज़रा की 12वीं मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इस मीटिंग से कबल कल ब्रिक्स ममालिक के माहौलियात से मुतालिक वर्किंग ग्रुप और आबोहवा में तब्दीली और मौसम के लिए साजगार पायदार तरक्की से मुतालिक राबता ग्रुप के सीनियर अहदेदारों की मीटिंग मुनाकिद की जाएगी। ये मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत 2026 इस्तेकाम इख्तरा बाहमी तआवुन नीस पायदारी के लिए तामीर के बुनियादी मौजू के तहत मुनाकिद की जाएगी। इस मीटिंग की सदारत माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव करेंगे। इम्तहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के इम्तहान के 84 मजामीन के लिए अबूरी आंसर कीस जारी कर दी हैं। NTA ने चैलेंज करने से मुतालिक सहूलत भी फराहम की है जो इस माह की 18 तारीख तक दस्तियाब रहेगी। उम्मीदवार UGC नेट पोर्टल के जरिए आंसर कीस को ऑनलाइन चैलेंज कर सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों को हर चैलेंज के ताल्लुक से दस्तावेजी सबूत पेश करना होगा। NTA ने यह भी कहा है कि किसी दीगर मोड के तवसुत से पेश किए गए चैलेंज को कबूल नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस अदा करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त है। NTA ने कहा है कि अंग्रेजी कॉमर्स और सोशियोलॉजी समेत बकिया 3 मजामीन के लिए सवालनामों में मुख्तलिफ तरह की गलतियों के ताल्लुक से शिकायतों की जाँच के लिए कमेटी बनाई गई है। उसने कहा कि कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर इन 3 मजामीन के सिलसिले में एक अलहदा पब्लिक नोटिस

आज बाद में जारी किया जाएगा। एनटीए ने मुतालिका उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वो एजेंसी की वेबसाइट और उसके तस्दीक शुदा सोशल मीडिया हैंडल्स पर दस्तियाब जानकारी पर ही भरोसा करें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि साबिक वजीर अजम अटल बिहारी वाजपेयी ने वजीर अजम का ओहदा संभालने से पहले तवील अरसा अपोजिशन में गुजारा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसीलिए वाजपेयी जी को आजाद शत्रु कहा जाता है। इसका मतलब ऐसा शख्स है जिसका के कोई दुश्मन ना हो। जनाब अमित शाह आज साबिक वजीर अजम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर उनके मुजस्मे की नकाबकुशाई और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिता करने के बाद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेरा के मकाम पर एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। आज साबिक वजीर अजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा अटल बिहारी वाजपेयी ने 2018 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कौमी राजधानी में साबिक वजीर अजम अटल बिहारी वाजपेयी के मेमोरियल सदैव अटल पर जाकर उन्हें गुलाय अकीदत नजर किए। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन भी इस मौके पर मौजूद थे। केरलम में त्यौहार की चहल पहल देखी जा रही है, क्योंकि रियासत का सबसे बड़ा सालाना त्यौहार थिरुवोनम इस माह की 26 तारीख को मनाया जाएगा। आज अथम के साथ ओनम मनाए जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। ओनम महज एक दिन का त्यौहार नहीं है, इसकी बाजाबता तकरीबात आज अथम के रोज शुरू हुई, जिन्हें आज सुबह से पूरी रियासत में मनाया जा रहा है। अथम के मौके पर घरों में मुख्तलिफ फूलों से बनाए जाने वाले रंगीन कालीन अथापुक्कलम को खास मकाम हासिल है, जिसमें थिरुवोनम तक हर रोज मजीद ताज़ा फूलों का इजाफा किया जाता है। इसके अलावा वस्ती केरला में तिरुपुनी थूरा के मकाम पर एक अजीमुशान अथाचामा यम जुलूस निकाला जाता है, जिसमें रियासत की मालामाल सकाफत और विरासत को रिवायती आर्ट के मुजाहरों से उजागर किया जाता है। सबरीमाला मंदिर को आज महाना पूजा अर्चना के लिए खोल दिया गया, जबकि ओनम पूजा का इनेकाद 24 से 28 अगस्त तक होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शिमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर फिर से हवा के कम दबाव का हल्का बनने से शिमाली उड़ीसा में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने वहां कल तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। बेतरनी, ब्रह्मनी, सालिंदी, जलाका और बूढ़ी गंगा बूढ़ी बलिंगा दरिया का पानी कई इलाकों में भर गया है। इसके मद्देनजर 6 जिलों बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केवनझार और केंद्रपाड़ा में सख्त चौकसी बरती जा रही है। 500 से ज्यादा गांवों में तकरीबन 2,70,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। 95,000 से ज्यादा अफराद को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है, जहां पका हुआ खाना, पीने का पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। भारत के महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और शिमाल मशरकी भारत के बाद हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आज शाम या रात तक हल्की से लेकर बहुत हल्की बारिश होने का इम्कान है। बहरुल काइल के मुल्क हवाई में आए जुमरा एक के शदीद आंधी तूफान लाला के सबब तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। अब यह तूफान बिग आइलैंड के जुनूब की जानेब बढ़ रहा है। लाला तूफान में तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने 63 सेंटीमीटर तक की शदीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके सबब अचानक सैलाब आने और मिट्टी के तोदे खिसकने का खतरा पैदा हो गया है। बिग आइलैंड के लिए भी शदीद आंधी तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है। हुकाम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो अपने घरों में ही रहें और सफर करने से गुरेज करें। दूसरी जानब बिजली की सप्लाई

0: कत्ल होने से हजारों अफराद मुतासिर हुए हैं। पनागाहें खोल दी गई हैं, जबकि अहदेदारों ने खतरनाक सैलाब आने, पेड़ गिरने और हवा के तेज झक्कर चलने की वार्निंग जारी की है। भारत इसराइल दोस्ती को यरूशलम में खास मकाम हासिल हो गया है, जबकि भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कोर्ट्स ब्रिज के नाम से मरूफ शहर के तारीखी फ्रेंडशिप ब्रिज को भारत के तिरंगे के रंगों से मुनव्वर किया गया। ज़ाफरानी, सफ़ेद और सब्ज रंगों की शानदार नुमाइश से अवाम के मुस्तहकम ताल्लुकात और एक ताबनाक नीज शानदार मुस्तकबिल की उम्मीदों को उजागर करने वाली भारत और इसराइल के दरमियान करीबी दोस्ती का पूरा असर इजहार होता है। इसराइल में भारत के सफारतखाने ने एक्स पर इस तकरीब को शेयर करते हुए इसे दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत रिश्तों की अक्कासी करार दिया। भारत कल से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने जा रही BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। खवातीन के सिंगल में PV सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। आयुष शेट्टी फिफ्टी राउंड में दिफाई चैंपियन और टूर्नामेंट में अव्वल सीट के खिलाड़ी चीन के शी याओकी का सामना करेंगे। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से तारीखी कामयाबी हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर बांग्लादेश ने पहली मरतबा टेस्ट मैच जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया पर उसकी दूसरी जीत है। बांग्लादेश की इस कामयाबी में मेहदी हसन मेराज का अहम रोल रहा। उन्होंने पहली इनिंग्स में अहमियत की हामिल हाफ सेंचुरी बनाई और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 284 रन बनाकर आउट हो गई। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के माहौलियात से मुतालिक वुज़रा की 12वीं मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इम्तहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 के 84 मजामीन के लिए उबूरी आंसर कीस जारी कर दी हैं। एतराजात दाखिल करने की सहूलत मंगल तक दस्तियाब है। आज साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में उनके मुजस्मे की नकाब कुशाई की है। और बैडमिंटन में भारत कल से शुरू होने वाली BWF आलमी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद। प्रोग्राम की पहली पेशकश साजन फिल्म से है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
2: रेशम की डोरी

आइए अब समाप्त करते हैं प्रोग्राम की आखिरी पेशकश शिकारी फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। रहे नविरते शौक उर्दू अदब की मारूफ शख्सियत मौलवी अब्दुल हक के हवाले से ये फीचर सुनिए। तहरीर जनाब अतहर फारूकी की है।

0: संदूक। संदूक के अंदर एक दो रजिस्टर और चंद पुराने बगैर मुरत्तब किए मुसव्वेदात, एक कलम और बाकी बस बिस्मिल्लाह का नाम। ये थी कुल कायनात जो अंजुमन के नए सेक्रेटरी यानी मौलवी अब्दुल हक को मिली थी। लेकिन चूंकि मौलवी साहब ने नए अज़्म और हौसले के साथ अंजुमन का चार्ज लिया था, इसलिए अंजुमन को फाल और सरगर्म इदारा बनाने के लिए उन्होंने बकौल खलील अंजुम अजीजों, दोस्तों और साहिब इख्तदार लोगों से चंदा जमा करना शुरू किया।
1: गुजर में है कैद मकाम से गुजर, मिस्र हिजाज से गुजर।

15 अगस्त सन 1947 को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जगह जगह फसादात होने लगे, लूट खसोट का बाजार गर्म था। उस वक्त बलवाइयों ने अंजुमन को भी नहीं बख्शा, फसादियों ने अंजुमन तरक्की उर्दू की बेसात ही उलट कर रख दी।

0: मौलवी अब्दुल हक अंजुमन की तबाहियों बर्बादी से मायूस होकर हिजरत कर गए और कराची में कुल पाकिस्तान अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद रखी। लेकिन पाकिस्तान में भी मौलवी अब्दुल हक की खातिर का कदर नहीं हुई और उन्हें हद दर्जा मायूसी का सामना करना पड़ा। मौलवी अब्दुल हक के उस वक्त के हालात के मुतालिक उनके मुतमिद बशीर अहमद कुरेशी लिखते हैं,
1: ये जमाना मौलवी साहब के लिए इस कदर अलमनाक था कि उन्होंने अपनी सारी उम्र की बाज़ आदतों को तर्क कर दिया था। मेहमान नवाजी और दावतें तकरीबन तर्क हो चुकी थीं और इसके साथ खाने का शौक भी। इसके बाद का जमाना मौलवी साहब की जिंदगी का सबसे परेशान कुन दौर था। उसको अगर मौलवी साहब की शानदार जिंदगी का अलमंगेज जवाल कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा।

रहे नवरदे शौक, उर्दू अदब की मारूफ शख्सियत मौलवी अब्दुल हक के हवाले से ये फीचर सुन रहे थे। तहरीर जनाब अतहर फारूकी की थी, तरतीब व पेशकश AM रज़ा की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमों का प्रोग्राम।

अभी आप समाप्त कर रहे थे इज्जत फिल्म का नगमा। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अभी आप समाप्त कर रहे थे घर फिल्म का नगमा। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश समाप्त करिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में।

0: अभी आपसे बात कर रहे थे उजाला फिल्म से नगमा। इसके साथ ही फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। भारत नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के माहौलियात से मुतालिक वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इम्तहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 के 84 मजामीन के लिए अबूरी आंसर कीस जारी कर दी हैं। एतराजात दाखिल करने की सहूलत मंगल तक दस्तियाब रहेगी। आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में उनके मुजस्मे की नकाब कुशाई की। बैडमिंटन में भारत कल से शुरू होने वाली BWF आलमी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और क्रिकेट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में तारीखी कामयाबी हासिल की है। अब खबरें तफसील से। भारत मंगल के रोज़ नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के माहौलियात से मुतालिक वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इस मीटिंग से कबल कल ब्रिक्स ममालिक के माहौलियात से मुतालिक वर्किंग ग्रुप और आबोहवा में तब्दीली और मौसम के लिए साजगार पायदार तरक्की से मुतालिक राबता ग्रुप के सीनियर अहदेदारों की मीटिंग मुनक़िद की जाएगी। ये मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत 2026 इस्तेकाम इख्तरा बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए तामीर के बुनियादी मौजू के तहत मुनक़िद की जाएगी। इस मीटिंग की सदारत माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव करेंगे। इम्तहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के इम्तहान के 84 मजामीन के लिए अबूरी आंसर कीस जारी कर दी हैं। NTA ने चैलेंज करने से मुतालिक सहूलत भी फराहम की है जो इस माह की 18 तारीख तक दस्तियाब रहेगी। उम्मीदवार UGC नेट पोर्टल के जरिए आंसर कीस को ऑनलाइन चैलेंज कर सकते हैं। एजेंसी ने कहा है कि उम्मीदवारों को हर चैलेंज के ताल्लुक से दस्तावेजी सबूत पेश करना होगा। NTA ने यह भी कहा है कि किसी दीगर मोड के तवसुत से पेश किए गए चैलेंज को कबूल नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस अदा करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त है। NTA ने कहा है कि अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी समेत बाकी 3 मजामीन के लिए सवालनामों में मुख्तलिफ तरह की गलतियों के ताल्लुक से शिकायतों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। उसने कहा है कि कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर इन 3 मजामीन के सिलसिले में एक अलहदा पब्लिक नोटिस आज बाद में जारी किया जाएगा। NTA ने मुतालिका उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वो एजेंसी की वेबसाइट और उसके तस्दीक शुदा सोशल मीडिया हैंडल्स पर दस्तयाब जानकारी पर ही भरोसा करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबादी के पैगाम भेजने के लिए आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू का शुक्रिया अदा करते हुए सदर जमहूरिया ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कहा कि भारत और मालदीव की साझेदारी से दोनों ममालिक के आवाम के मफाद में मजीद मजबूती आएगी। सदर जमहूरिया ने नेपाल के सदर रामचंद्र पौडौल का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में नेपाल के साथ अपनी खुसूसी शराकत दारी को मजीद फरोग देने का

मानी है। इसके अलावा सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया के सद पीटर पेलिग्रिनी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भारत दोनों ममालिक के अवाम के मफाद में साझेदारी को मजीद मुस्तकम बनाने के लिए कोशा है। सदर जमहूरिया ने इसराइल के अपने अहम मनसब का भी शुक्रिया अदा किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि भारत और इसराइल के अवाम के दरमियान रिश्ते मजीद मुस्तकम होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी आईटी के कौमी इंस्टीट्यूट ने साइबर सिक्योरिटी और मसनूई जहानत एआई से मुतालिक कौमी हैकाथन साइबर कुश्ती 2026 का आगाज किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत ने कहा कि इस हैकाथन का मकसद साइबर सिक्योरिटी के जायजे में इंसानी फैसला साजी की सलाहियत का अंदाज़ा लगाना और बासलाहियत अफराद की शनाख्त करना है। साइबर कुश्ती 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल कल से शुरू हुआ है और ये अगले माह की 10 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत ने कहा कि इसके लिए कोई फीस नहीं अदा करनी होगी और तलबा और आज़ाद मुहक्किकीन 3-3 अराकीन पर मुश्तमिल टीम बनाकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। वजारत ने बताया कि फातह टीम को साइबर केसरी 2026 का खिताब दिया जाएगा और रिवायती गदा भी पेश किया जाएगा, जबकि रनर अप टीमों को रुस्तम और पहलवान के खिताब से नवाजा जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा अटल बिहारी वाजपेयी ने 2018 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौमी राजधानी में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के मेमोरियल सदैव अटल पर जाकर उन्हें गुलाय अकीदत नजर किए। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता और बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने वजीर आजम का ओहदा संभालने से पहले तवील अरसा अपोजिशन में गुजारा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसीलिए वाजपेयी जी को अजात शत्रु कहा जाता है, इसका मतलब ऐसा शख्स है जिसका कि कोई दुश्मन ना हो। जनाब अमित शाह आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर उनके मुजस्मे की नकाबकुशाई और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का अफ्तिताह करने के बाद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेरा के मकाम पर एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। भारत के महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और शिमाल मशरकी भारत के बाज़ हिस्सों में भी कल तक तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आज शाम या रात तक हल्की से लेकर बहुत हल्की बारिश होने का इम्कान है। शिमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर फिर से हवा के कम दबाव का हल्का बनने से शिमाली उड़ीसा में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने वहां कल तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। बेतरनी, ब्रह्मणी, सालिंदी, जलाका और बूढ़ी बलिंगा नदी का पानी कई इलाकों में भर गया है। इसके मद्देनजर 6 जिलों बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केवनझार और केंद्रपाड़ा में सख्त चौकसी बरती जा रही है। 500 से ज्यादा गांवों में तकरीबन 2,70,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। 95,000 से ज्यादा अफराद को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें पका हुआ खाना, पीने का पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। केरलम में त्यौहार की चहल पहल देखी जा रही है, क्योंकि रियासत का सबसे बड़ा सालाना त्यौहार थिरुवोनम इस माह की 26 तारीख को मनाया जाएगा। आज एथम के साथ ओनम मनाए जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। हंगरी में आज सुबह एक मुसाफिर बस सड़क से फिसलकर एक खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा राजधानी बुदापेस्ट से तकरीबन 140 किलोमीटर मशरक में पेश आया। भारत कल से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने जा रही BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क़यादत करेंगी। मर्दों के सिंगल्स में लक्ष्य सेन शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए

0: पूरी तरह तैयार हैं। आयुष शेट्टी इफ्तिताही राउंड में दिफाई चैंपियन और टूर्नामेंट में अव्वल सीड के खिलाड़ी चीन के शी युकी का सामना करेंगे। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के शेट डार्विन में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से तारीखी कामयाबी हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर बांग्लादेश ने पहली मर्तबा टेस्ट मैच जीता है और यह ऑस्ट्रेलिया पर उसकी दूसरी जीत है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के माहौलियात से मुतालिक वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इम्तहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 के 84 मजामीन के लिए उबूरी आंसर कीस जारी कर दी है। एतराजात दाखिल करने की सहूलत मंगल तक दस्तियाब रहेगी। और आज साबिक वजी अजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी सुने कार्यक्रम युवा वाणी।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित है आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका हमारे आज के इस अंक में। श्रोताओं, आज रविवार है जिसका इंतजार हम सभी को रहता है, क्योंकि हर रविवार हम प्रस्तुत करते हैं आपकी पसंद, जिसमें हम आपके पत्र और संदेश पढ़ते हैं और साथ ही आपको आपकी पसंद के गीत भी सुनवाते हैं। तो मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस पहले पत्र से। ये पत्र हमें लिखा है नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, गगन, सोनी, जस्मीन और रेखा ने। बठिंडा से प्रेम जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सीमू एकम, दमन और महेंद्र भट्टी ने। दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंदर कुमार वर्मा ने। डब वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी ने। सिरसा हरियाणा से सुभाष लूणा, ओमवती, बुलबुल और शंकर चोयल ने। ढाबार तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिस हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा ने। करणपुर से राजू टुटेजा, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत वडवाल, शिव सेठी, स्माइल टुटेजा और राजेंद्र बारूपाल ने। सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार ने। आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म राम तेरी गंगा मेली से।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: साथियों, अगली फरमाइश हमें भेजी है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। गंज ढूंढवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। मोहाली चंडीगढ़ से गुरप्रीत तंगोरी, जसबीर कौर, महिकप्रीत कौर और सही

प्रीत सिंह ने। कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया ने। गांव बांडी जिला फाजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया ने। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर, हरविंदर मान, राज सिंह और प्रीत मान ने। भिलाई से उत्तम सिंह झंगेल, मोरस झंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष झंगेल और नंदनी झंगेल ने। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले ने। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, परभजोत मिशन और बेबी जानविका ने। जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। आइए सुनते हैं अब आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म दादा से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
6: दोस्तों, अगली फरमाइश हमें भेजी है गांव हांडी, जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा ने। नाभा, जिला पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत कौर मन्नू ने। बारा, राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। श्री गंगानगर से नेकी राम बंसीवाल, जोनी बंसीवाल और धनराज बंसीवाल ने। गांव अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और पूनम चालिया ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। गांव कलाना तहसील भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव कड़वासरा, किरसन मायल, हनुमान साहरण, केडूराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा ने। चक 58 NP रायसियानगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरबंश लाल, बनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी, मोनिका और गीतांजलि मलखट ने। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग और तानिया नारंग ने। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, शिवम ढुकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढुकिया और धोईती इवा धारणिया ने। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत फिल्म समाधि से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।

0: वॉशिंग में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: साथियों, अगला संदेश हमें भेजा है मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी ने। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्डा ने। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा ने। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी और प्रमोद कुमार डूडी ने। सांगली जिले के जज शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्लाह सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू ने। गांव 4 AM से कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत और जसदीप ने। नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र तरड़, कपिल देव तरड़ और हिमानी जाखड़ ने। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहरण, मोनिका और मनीष सहरण ने। जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी ने। हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा ने। तो साथियों, आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म दीवाना से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: दोस्तों, अगली फरमाइश हमें भेजी है गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिक्की शेखावत ने। कंवर कॉलोनी वडवाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से परवीन श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने। गांव कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, मोहनलाल, सुनील, भजनलाल,

मेला, कैलाश, लक्षिता और नरेंद्र सुथार ने। कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सदाम ने। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक गोहर और तन्वी गोहर ने। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव ने। डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी, सोनू और रजनी ने। बीकानेर से रानी जम और बिट्टू जम ने। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा ने। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी ने। नोहर जिला हनुमानगढ़ से पवन सुथार, अमरजीत सुथार, मोहन सुथार, सुनील सुथार, विष्णु सुथार और शिव सुथार ने। आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: दोस्तों, अगला संदेश हमें भेजा है भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता श्रीवास्तव, विमल श्रीवास्तव, आशा और राधिका श्रीवास्तव ने। जालना महाराष्ट्र से विजय पाटिल ने, गांव लोहेगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह ने। गांव निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने। गांव ढाणी लाल खां नोहर से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो और विनोद खां ने। आइए अब सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म जिंदगी और तूफान से।

दोस्तों, अगला संदेश हमें भेजा है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब ने। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डोली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर ने। नगर खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन ने। केसरी सिंहपुर से श्यामलाल, राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार और चिमनलाल ने। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, निप्पी साहनी और सुनीता साहनी ने। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा देवांगन ने। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत फिल्म दुनिया से।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। शाम के 6 बजे हैं। अब सुने कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में पहले जानकारी हमारे सभा के शेष प्रसारणों के संबंध में। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे सरायकी कार्यक्रम, ग्रामीण परिवार सुनेंगे मुकेश चावरिया के साथ दैनिक कार्यक्रम चौपाल, जिसमें आज राजस्थानी काव्य पाठ आपको सुनाया जाएगा, कवि होंगे विनोद स्वामी। एक ही फिल्म से कार्यक्रम रात 8:00, सुगम संगीत रात 9:15 पर और नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आप सुना करते हैं रात 10:00 रविवार के दिन। ये थे हमारे सभा के शेष प्रसारण और उनका प्रसारण समय। कार्यक्रम विवरण में जानकारी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:50 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे 6:10 पर। चिंतन के लिए समय रहेगा 6:45 का। कार्यक्रम खेतियारा वास्ते में किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा, मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय। समय रहेगा 7:10 का। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस पर आधारित गान पाठ मानस गान आप सुनेंगे प्रातः 7:20 पर। कल होगी इसकी 337वीं कड़ी। 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात के लिए। प्रातः 9:10 पर राजस्थानी लोक संगीत का आयोजन होगा, मरुमंगल कलाकार होंगे पेमाराम। युगल गीत आप सुनेंगे फिल्म संगीत के हमारे इस चंक में प्रातः 9:30 पर। 10:00 फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा आज के फनकार। कल दिन में 11:00 आप सुनेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बी राजेश्वर सिंह का आगामी निकाय चुनावों की तैयारी पर सजीव कार्यक्रम। 12:05 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। कुछ गजलें आप सुनेंगे सुगम संगीत के अंतर्गत दिन में 12:30 पर। किसान भाई सुनेंगे बेल वाली सब्जियों की देखभाल पर जानकारी कार्यक्रम खेत खलिहान में दिन में 12:50 पर। किरण कुमारी के साथ बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:05 पर। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5:00। सराय की शाम 6:05 पर और सुनील शर्मा के साथ चौपाल में जानकारी आपको मिलेगी शाम 7:00। 8:00 का समय रहेगा संसद समीक्षा के लिए निर्धारित और रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कल सोमवार है और कल रात 10:00 आप सुनेंगे खेल संबंधी कार्यक्रम खेल जगत, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। ये थे हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियो वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ऑल इंडिया रेडियो दी विदेश प्रसारण सेवा दा सिराइकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते अज दा प्रोग्राम घिन के हाजिर हाँ। कुछ बाता कुछ गीत अज असा तुहाडे नाल बहु गल्लां भी करेनियां हन ते बहु वधिया गीत भी तुहाकू सुनवेंदे हाँ। सुनन आलियो, दुनिया विच एक बहु प्यारा रिश्ता है पिता पुत्र दा। जड़न घर विच पुत्र पैदा होंदा है ता माता पिता बहु खुशियां पाए मनावदे हन। वला उसको पाल पोस के वड्डा करेंदे हन। वला ओ भावे परदेसां विच वेंदे वसेंदे जां मां प्यो को ना पुछेंदे हन, पर मां प्यो पुत्र को किवें भूल जावन। इसे भाव को दर्शेंदा मैं तुहाकू एक गीत सुनवेंदी पई हां। गावन वाले हन AS कंग।

मेरा ख्याल है गीत तुहाकू पसंद आया हो सी। कलाकार हन A.S. कंग। सराय की भैरों भरा वो जिंदगी विच कई रिश्ते इहो जहे होंदे हिन

अभी आप सुन रहे थे सराइकी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आपसे कुछ ही पलों में हमारे जयपुर केंद्र से रिले होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। राज्य के नगर निकायों के चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण लॉटरी कल निकाली जाएगी। और प्रदेश में बारिश के दौर में कमी, 19 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियां फिर से बढ़ने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। श्री शाह ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में 5,659 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें 15 जिलों के विकास कार्य शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 1,500 गांवों के लिए हर घर नल से जल योजना की शुरुआत की। श्री शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अष्ट धातु से बनी 21 फीट ऊंची प्रतिमा और मिनी अटल स्मारक का अनावरण भी किया। श्री शाह ने कहा कि अटल जी ने हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत नेशनल हाईवे बनाए। देश के आदिवासियों के लिए पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय बनाया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। राजस्थान पहले पानी की कमी के लिए जाना जाता था, लेकिन भजनलाल सरकार ने 3 बड़े जल समझौते कर प्रदेशवासियों की प्यास बुझाने का काम किया है।
1: राजस्थान को पानी की कमी के लिए जाना जाता था, भजनलाल जी ने 3 बड़े समझौते कर आधे राजस्थान की प्यास बुझाने का काम हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है। लगभग एक ही योजना से 3 करोड़ लोगों के प्यास बुझाने का काम होगा और बाकी 2 योजना से भी कुछ कॉमन भी है, मगर 2.5 करोड़ और लोगों का प्यास बुझाने का काम होगा।
0: कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ के बाद केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री अलवर पहुंचे। वहां से श्री शाह ने प्रदेश की 17 जिलों के लिए 6,453 करोड़ रुपए के 954 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें अलवर जिले में 200 करोड़ रुपए की लागत वाले सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास और अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण शामिल है। अलवर के विजयनगर ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में अलवर में सरस डेयरी प्लांट पशुपालकों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है।
1: आज अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास पशुपालक भाइयों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक प्लांट के निर्माण से दूध के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादनों को बेहतर बाजार मिलेंगे। आज विभिन्न संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का, कैटल फील्ड प्लांट का लोकार्पण भी आपने किया है। 4 केंद्रीय सहकारी बैंकों की आपने घोषणा की है। इन बैंकों के गठन से इन जिलों में भाई बहनों को शून्य ब्याज पर

0: फसली ऋण बीमा भी मिलेगा।
1: श्री शाह ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत प्रदेश की 10,548 नव नियुक्त कर्मचारियों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं प्रदेश के 66,74,000 लाभार्थी किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया गया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित श्री वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री वाजपेयी को असाधारण, दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताते हुए कहा कि अटल जी ने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अटल गौरव स्मृति समारोह में कहा कि लोकतांत्रिक गरिमा के प्रतीक और राष्ट्र निर्माण के शिल्पकार अटल जी का जीवन आज भी राष्ट्र नीति की आधारशिला है।
0: वाजपेयी जी देश के सबसे महान नेताओं में से एक थे। उनके कुशल नेतृत्व में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण 1999 में हुआ, 98 में हुआ और 1999 में कारगिल का युद्ध जीता। अटल जी के देश को एक सूत्र में परोने के लिए इस संकल्प को गति देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत आज जोधपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने जोधपुर के जिला न्यायालय परिसर में 60 कोर्ट क्षमता वाले नए 7 मंजिला भवन का उद्घाटन किया और नए हाईकोर्ट गेस्ट हाउस की आधारशिला रखी। जस्टिस सूर्यकांत ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून बंद किला नहीं बल्कि जीवंत और खुला मंच होना चाहिए जहां हर नागरिक की पहुंच और सुनवाई हो सके। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के 176 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई। वहीं मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोड मैप विषय पर आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव में AI और आधुनिक तकनीकों के समुचित प्रयोग और विधि पाठ्यक्रमों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में नगरीय निकायों के चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण लॉटरी कल निकाली जाएगी। जिलों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण कलेक्टर के स्तर पर किया जाएगा। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों सहित जिले की नगर परिषद और पालिकाओं के वार्डों की लॉटरी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं परसों ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। सरपंच और वार्ड पंचों की प्रक्रिया उपखंड स्तर पर और जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज डीडवाना में हॉस्पिटल चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा, लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। राज्यपाल ने युवाओं से पंडित दीनदयाल के विचारों को अपनाने का आह्वान किया। राज्यपाल लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। प्रदेश में मॉनसून की बारिश के दौर में कमी आई है। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच पश्चिमी स्थानों पर बारिश का दौर धीमा पड़ने से गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। विभाग ने कल और परसों राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त से एक बार फिर पूर्वी राजस्थान के जिलों में

0: बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं।
1: मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य अवस्था से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है। आगामी 4-5 दिन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, इसके अलावा कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 से 21 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से तहेज तेज बारिश होने की भी संभावना है।
0: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एआई हैकेथॉन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता देना है। साइबर कुश्ती के लिए अगले महीने की 10 तारीख तक पंजीकरण जारी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इसमें भागीदारी निःशुल्क है और 3 सदस्यीय टीमों में विद्यार्थी और शोधकर्ता भाग ले सकते हैं। विजेता टीम को साइबर केसरी 2026 की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें पारंपरिक गदा भेंट की जाएगी। उपविजेताओं को रुस्तम और पहलवान की उपाधि से नवाजा जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। राज्य के नगर निकायों के चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण लॉटरी कल निकाली जाएगी और प्रदेश में बारिश के दौर में कमी। 19 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियां फिर से बढ़ने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संदीप केड़िया। चिट्ठी में सबसे पहले बात स्वतंत्रता दिवस समारोह की। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, महिला पुलिस, स्काउट और गाइड के दलों ने मार्च पास्ट में भाग लिया। स्कूली विद्यार्थियों ने पीटी प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और बैंड वादन से सभी का मन मोह लिया। समारोह में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों के परिवारों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय आर्य ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का प्रदेशवासियों के नाम संदेश पढ़कर सुनाया। जिले के अन्य शहरों, कस्बों और गांवों में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर झुंझुनू के स्काउट्स मैदान में विभाजन विभीषिका संगोष्ठी और युवाओं से संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में नगरीय निकाय और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, इतिहास की सही जानकारी युवाओं को स्वतंत्रता के वास्तविक महत्व से परिचित कराती है और राष्ट्र प्रेम, समर्पण तथा त्याग की भावना को मजबूत करती है। अब बात करते हैं आस्था और परंपरा की। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहारगल धाम में हरियाली अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अरावली की सुरम्य वादियों में स्थित सूर्य कुंड में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान के बाद गोमुख की पवित्र जलधारा में पूजा अर्चना की। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का लगातार लोहारगल धाम में आवागमन बना हुआ है। वहीं तीज का पर्व भी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। पिछले दिनों स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने गर्भवती महिलाओं की जांच, एएनसी पंजीकरण और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की निगरानी में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद सिंह ने हर गर्भवती महिला का 12 सप्ताह से पहले एएनसी पंजीकरण सुनिश्चित करने और कम से कम 8 एएनसी चेकअप कराने पर जोर दिया। बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे स्पर्श अभियान के तहत 20 वॉलंटियर्स ने

0: इस विद्यालयों में 44 जागरूकता सत्र आयोजित किए गए और करीब 18,000 विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद किया। सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श, व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आत्मविश्वास और जीवन कौशल जैसे विषयों पर बच्चों को जागरूक किया गया। अभियान के प्रभारी सचिव डॉ. नवीन जैन ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉ. राजेंद्र सिंह ने सिंघानिया विश्वविद्यालय परिसर से जल संचय जन अभियान की शुरुआत की। जोहर स्थल पर तालाब पूजन, 300 से अधिक पौधरोपण और जल संरक्षण पर संवाद हुआ। डॉ. सिंह ने जल स्रोतों के पुनरुद्धार, चेक डैम निर्माण, अरावली संरक्षण और पारंपरिक जल संरचनाओं की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने शेखावाटी क्षेत्र के लोगों से जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। RUIDP के पांचवें चरण के तहत झुंझुनू, चिड़ावा, नवलगढ़, मंडावा और खेतड़ी में 129 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। अपशिष्ट जल प्रबंधन, ड्रेनेज, बाढ़ प्रबंधन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले आमजन और विभिन्न वर्गों से सुझाव भी लिए गए हैं। अंगदान जागरूकता में झुंझुनू ने प्रदेश में दूसरा और देश में तीसरा स्थान हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है। 31 जुलाई तक जिले में 19,086 नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया। इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। इसी के साथ झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कयो साल 2047 ताई भारत ने पूर्ण विकसित राष्ट्र बनावण सारू नौजवान, गरीब, महिलावां और काश्तकारां ने मजबूत बनावणो जरूरी। पहली रात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि माथे आज न्यारा न्यारा कार्यक्रमों री मार्फत राष्ट्र निर्माण में वारा योगदान ने याद करी जिया। राज्य रा नगर निकाय रा चुनाव सारू वार्ड आरक्षण लॉटरी काले निकाली जायला। और प्रदेश में बिरखारा दौर में कमी, 19 अगस्त अगुणी राजस्थान में बिरखारी गतिविधियां फेरू बदन रा आसार। समाचारों रे साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राज्य रा 12,000 करोड़ रुपयों बत्तीरा कमारी सौगात दी। श्री शाह चित्तौड़गढ़ रा निम्बाहेड़ा माए विया कार्यक्रम माए 5,659 करोड़ रुपया रा 944 विकास कमारी नींव धरी और लोकार्पण करियो। इन माए 15 जिला रा विकास रा काम भेड़ा है। ई मौके वणा जल जीवन मिशन रे तहत 1,500 गांव सारू हर घर नल से जल योजना री शुरुआत करी। श्री शाह पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अष्ट धातु बनी 21 फुट ऊंची मूर्त और मिनी अटल स्मारक रोई अनावरण करियो। श्री शाह कयो के अटल जी हर गांव ने सड़क जोड़न रो काम करियो। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना रे तहत नेशनल हाईवे बनाया। देशरा आदिवासियों सारू पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय बनाई जियो। वणा कयो के केंद्र और राज्य सरकार री कोशिशों राजस्थान में विकास रा नुआ आयाम थापित वे रिया है। प्रदेश पानी री कमी सारू जानियो जावतो हो फेरों ही भजनलाल सरकार 3 मोटा जल समझौता करने प्रदेशवासियों री प्यास बुझाउन रो काम करियो है।
2: राजस्थान को पानी की कमी के लिए जाना जाता था, भजनलाल जी ने 3 बड़े समझौते कर आधे राजस्थान की प्यास बुझाने का काम हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है। लगभग एक ही योजना से 3 करोड़ लोगों के प्यास बुझाने का काम होगा और बाकी 2 योजना से भी कुछ कॉमन भी है मगर 2.5 करोड़ और लोगों का प्यास बुझाने का काम होगा।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई भाषण करियो। चित्तौड़गढ़ रेपा छे केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री अलवर पूग्या वठे श्री शाह प्रदेश रा 17 जिला सारू 6453 करोड़ रुपया रा 954 विकास

0: विकास कामों लोकार्पण करो और नींव धरी। इनमें अलवर जिला में 200 करोड़ रुपये की लागत वाला सरस डेयरी रा नुआ प्लांट रे नींव अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज रो लोकार्पण भेड़ो है। अलवर रा विजयनगर ग्राउंड में विया कार्यक्रम में बोलता श्री शाह कहो कि साल 2047 ताई भारत ने पूर्ण विकसित राष्ट्र बनावण सारू नौजवान गरीब महिलावां और काश्तकारां ने मजबूत बनावणो जरूरी है। वणा कहो कि केंद्र में मोदी सरकार आ तबका माथे खास ध्यान दे रही है। ई कड़ी में अलवर में सरस डेयरी प्लांट मवेशी पालका में भरोसा ने आगे बढ़ावण वालो महत्व कदम है।
1: आज अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास पशुपालक भाइयों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक प्लांट के निर्माण से दूध के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादनों को बेहतर बाजार मिलेंगे। आज विभिन्न संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का, कैटल फील्ड प्लांट का लोकार्पण भी आपने किया है। 4 केंद्रीय सहकारी बैंकों की आपने घोषणा की है। इन बैंकों के गठन से इन जिलों में भाई बहनों को शून्य ब्याज पर फसली ऋण बीमा भी मिलेगा।
0: श्री शाह मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव रे तहत प्रदेश रा 10,548 नवा नियुक्त कर्मचारियों ने सरकारी नौकरी रा नियुक्ति पाना सौंपया। वठी प्रदेश रा 66,74,000 लाभार्थी काश्तकारा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि री छठी किस्त ने डीबीटी री मार्फत भेजी जिया। देश आज पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि माथे वाने श्रद्धा सुमन अर्पण कर रिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में श्री वाजपेयी रा स्मारक सदैव अटल माथे पुष्पांजलि अर्पण करी। प्रधानमंत्री आपरा सोशल मीडिया संदेश में श्री वाजपेयी ने असाधारण दूरदर्शी और ठावा राजनेता बतावता कहो कि अटल जी आपरो जीवन देश सेवा में समर्पित कर दियो। अठीने प्रदेश में न्यारी ने रिठोड़ा कई कार्यक्रमों की मार्फत पहली रा प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने याद कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आपरा संदेश में कहो कि लोकतांत्रिक गरिमा रा प्रतीक और राष्ट्र निर्माण रा शिल्पकार अटल जी रो जीवन आज ही राष्ट्र नीति री आधारशिला है।
1: वाजपेयी जी देश के सबसे महान नेताओं में से एक थे। उनके कुशल नेतृत्व में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण 1999 में हुआ, 98 में हुआ और 1999 कारगिल का युद्ध जीता। अटल जी के देश को एक सूत्र में परोने के लिए इस संकल्प को गति देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया।
0: भारत रा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत आज जोधपुर प्रवास माथे रिया। ई दौरान वणा जोधपुरा जिला अदालत परिसर में 60 कोर्ट क्षमता वाला नुआ 7 मंजिला भवन रो उद्घाटन करियो और नुआ हाईकोर्ट गेस्ट हाउस री नींव धरी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रा दीक्षांत जलसा में हिस्सो लियो। ई मौके वणा कहो कि कानून बंद किलो नहीं है बल्कि जीवंत और खुलो मंच वेणो चाहिजे जटे हर रहवासी री पहुँच और सुनवाई वह सके। जलसा में स्नातक स्नातकोत्तर और पीएचडी रा 176 पड़ेसरा ने सनद दिरी जी, वठे होशियार पड़ेसरा ने सोना रा तमगाई दिरी जिया। इनरे अलावा मुख्य न्यायाधीश लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोडमैप मुद्दा माथे राखी जी वाइस चांसलर कॉन्क्लेव रो ही उद्घाटन करियो। ई कॉन्क्लेव में एआई और आधुनिक तकनीका रा वाजिब उपयोग कानूनी कोर्स ने भविष्य री जरूरत मुजब बनावण माथे जोर दिरी जियो। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राज्य रा नगरीय निकाय रा चुनाव सारू वार्ड आरक्षण लॉटरी काले निकाली जायला। जिला में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं रा वार्ड आरक्षण कलेक्टर थर्माथे करिया जायला। जयपुर नगर निगम रा 150 वार्ड समेत जिलारी नगर परिषद और पालिकाओं रा वार्ड री लॉटरी ने लेर सगली तैयारियां पूरी कर लीजी है। वठी परसों ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच औहदारी लॉटरी निकाली जायला। सरपंच और वार्ड पंच री प्रक्रिया उपखंड थरमात है और जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों री प्रक्रिया कलेक्ट्रेट सभागार माए वैला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज डीडवाणा माए हॉस्पिटल चौराया माथे पंडित दीनदयाल उपाध्याय री मूर्त रो अनावरण करियो। ई मौके जलसा माए बोलता वणा कहो कि पंडित दीनदयाल रो जीवन संघर्षों भरियो रियो, फिर वणा खिलाफ हालात माए रह आपरी जिंदगी देश सारू समर्पित कर दी। राज्यपाल नौजवानों पंडित दीनदयाल उपाध्याय रा विचारा ने अपनावण री अरज करी। राज्यपाल

0: लोकतंत्र सेनानियों ने सम्मानित कराया। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान साइबर कुश्ती 2026 नामरी एक साइबर सुरक्षा और एआई हैकेथॉन री शुरुआत करी है। इनरो मकसद साइबर सुरक्षा आकलन माए मानवीय फैसला बुतारो परीक्षण और उन्हें मान्यता देवे है। साइबर कुश्ती सारू आवता मीनारी 10 तारीख तई पंजीकरण चालता रहेला। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बतायो कि इन माए भागीदारी मुफ्त है और 3 सदस्यों की टीम माए पड़ेसर और शोधकर्ता हिस्सों ले सके है। जीतने वाली टीम ने साइबर केसरी 2026 री सनदों सम्मानित कराया जाएगा और वाने रीत मुजब गदा भेंट करी जाएगा। उप विजेताओं ने रोस्तम और पहलवान री सनदों नवाजा जाएगा। अरबे मौसम प्रदेश माए मानसूनी बिरखारा दौर माए कमी आई है। फिर वहीं मौसम महकमो आज प्रदेश रात 13 जिला माए बिरखारो येलो अलर्ट काढ़ियो है। ई बीच राजेरा आथोणी हल्का माए बिरखारो दौर धीमो पड़नु गर्मी और उमस रो असर बद गयो है। महकमो काले और परसों राजेरा घनकरा हल्का माए मौसम साफ रहण री आस जताई है। फिर वहीं 19 अगस्त एक और फिर अगुणी राजस्थान रा जिला माए बिरखारी गतिविधियां माए बढ़वार री आस है।
1: मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य अवस्था से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है। आगामी 4-5 दिन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जयपुर इसके अलावा कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 से 21 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से दहेज तेज बारिश होने की भी संभावना है।
0: राज्य माए न्यारी न्यारी ठोड़ा बिरखाओं जलाशय माए पानी री आवक वेरी है। जल संसाधन महकमा मुजब प्रदेश रा छोटा मोटा 693 बंदा मायों 38 बंदा लबालब है वठे 447 बंदा अध भरिया है। राजधानी जयपुर माए आज बूढ़ी तीजरी सवारी निकाली जा रही है। बैंड बाजा और साई लवाज मारे साथ है जनानी ड्योडियों सवारी रवाना हुई जो परकोटा माए न्यारा न्यारा मार्गों वेता निकल रही है। सवारी माए लोक कलाकार आपरी मोवनी प्रस्तुतियां दे रिया है। देसी विदेशी सैलानियों री घनी तादाद ने देखता प्रशासन यातायात और हिफाजत रा खास बंदोबस्त करिया है। ध्यान जोग है के काले हरियाली तीज रे मौके ही साही लवाजमा रे साथ है तीज माता री सवारी निकाली जी ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित किया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए आपरा विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित कराया जाने वाला ये कार्यक्रम री 137वीं कड़ी वेला। इस हारू आप ही 28 अगस्त ताई मुफ्त नंबर 1800-1178-00 माथे आप री राय भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम री मार्फती आप विचार भेज सको हो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए इस साल जून महीना माए भी यूजीसी नेट परीक्षा रा 84 विषया रा आखिरी उत्तर कुंजी काट दी है। उम्मीदवार 18 अगस्त ताई आ उत्तर ने चुनौती देवन सारू यूजीसी नेट पोर्टल माथे ऑनलाइन अर्जी दे सके है। नबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फेरो सुन ले रहो। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कयो साल 2047 ताई भारत ने पूर्ण विकसित राष्ट्र बनावन सारू नौजवान गरीब महिलावा और काश्तकार ने मजबूत बनावनो जरूरी। पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि माथे आज न्यारा न्यारा कार्यक्रमारी मार्फत राष्ट्र निर्माण माए वारा योगदान ने याद करी ज्या। राज्य रा नगर निकाया रा चुनाव सारू वार्ड लॉटरी काले निकाली जायला। प्रदेश माए बिरखारा दौर माए कमी 19 अगस्त अगुणी राजस्थान माए बिरखारी गतिविधियां फेरू बदन रा आसार। नरेंद्र साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूर्वियो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।

आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडिया वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। शाम के 7 बजे हैं, ग्रामीण परिवार सुने दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनिए सगळ्या श्रोताओं, मुकेश भाई का घना घना राम राम, मोकला मोकला राम राम। किसान भाइयों, आपां जाना ही कि अपनी खेती सिंचाई के साधना पर या बारिश पर निर्भर है। कई बार सिंचाई वालों पानी मौके पर नहीं मिले और सही टाइम सारू जे बारिश भी नहीं होवे तो सूखे जैसी समस्या आ जावे। तो किसान भाइयों, आपने ध्यान वो देना है कि जब भी मे बिरखा होवे तो बी टाइम बारिश के पानी ने आप एक जगह भेड़ो करके या संग्रह करके रख लिया तो वो पानी फसल खातर जीवन रक्षक के रूप में आप भविष्य में काम में ले सका। किसान भाइयों, पानी की कमी और बिरखा कम होने के कारण फसल की बेअवस्थावां, जब फसल ने पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होवे और बी मौके पौधा ने पानी नहीं मिल सके तो ईशु फसल अच्छी तरह बढ़वार नहीं करेगी और उत्पादन पर भी इंगो बुरो असर पड़ेगो। इन वास्ते किसान भाइयों, बारिश में पानी ने व्यर्थ में बहाने की बजाय आप बी पानी को संग्रह करके जरूरत के हिसाब से सदुपयोग कर सका। जिस फसल में पानी की जरूरत वाली अवस्थाओं में पौधा में सिंचाई के साधना की कमी या बिरखा की कमी वाला टाइम आप दे सका। किसान भाइयों, बारिश के पानी ने इकट्ठो करने के तरीके की जे आप बात करा तो सहसू पहला खेत में मेड़बंदी अच्छी तरह से करनी चाहिए जिसु खेत को पानी बारे की तरफ व्यर्थ में बहगे न जावे। ईशु जमीन को जो जल स्तर है वो ऊंचो रहेगो हर माटी में नमी बनी रहेगी जिसु फसल को अच्छा उत्पादन होवेगो। किसान भाइयों, वर्षा जल को संग्रहण आप खेत में डिग्गी या तालाब आदि बना के भी कर सका, जगह ने आप वाटर हार्वेस्टिंग भी बोला। खेत को जो निचलो इलाको है जठे सारे खेत को पानी बहगे बारे निकले बठे एक खड्डो या पक्को तालाब बना के बिंगा माँ आप बारिश को पानी भेड़ो कर सका, जगह ने आप जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक पानी के रूप में अपनी फसल में उपयोग में ले सका। किसान भाइयों, सरकार की भी कई योजनाएं हैं जगह गमा जल संग्रहण से संबंधित कोई भी जानकारी आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके ले सका और आ सरकारी योजनाओं को फायदा उठा सका। किसान भाइयों, सिंचाई की आधुनिक विधियां जियाँ बूंद बूंद सिंचाई या फंवारा सिंचाई को जे आप प्रयोग करा तो इंशु पुरानी पद्धति से सिंचाई के मुकाबले दुगने क्षेत्र ने सिंचित आपा कर सका। इंशु फसल ने मौके सारू जरूरत के हिसाब से पानी पानी भी मिल जाएगा हर पानी व्यर्थ में बहगे बारे भी कौन जावे। तो इनके बारे में आप और भी बात करांगा, पहला आप सुन लिया वो भजन सुनो सा।

0: सुनियो भाई लोगों, भजन और खेतीबाड़ी की बातें आपां और भी करांगा। बीच में पहला थाने सुनावा एक राजस्थानी काव्य पाठ, जिंगा कवि है विनोद स्वामी। सगला मिलर आपां सुना सुनो सा।
1: मेरी राजस्थानी कवितावां आप रे सामने प्रस्तुत करूं मैं। और पहली कविता है, बलाई बनाई सूं कोनी अजे बारो दूर दूर रो वास्तो, बलाई डांग माथे डेरो है आज ही बारो, गाम माए बढ़ताई पहले ए लेसू पहली, गंडकड़ा गले पड़र करे मारी मनवार, उणारी कड़रे बंदी जोड़ी अचानचक मारे सामी, जुद्ध लड़ती जा सीरी राणी री छब मांडे। हाँ फरक बस इतरो है कि तलवार वाले हाथ माए कामड़ी, घोड़े री ठोड़ खुद री टांग्या, आँख्या सू गली गली घर घर टंटोलती, एला पाड़ती लारे लागे गंडकणा री अणदेखी करती, साच्याणी ए कोई माता रो अवतार हॉलीवुड री सेलिब्रिटी का इतिहास री नायिका कोनी। डांग माथे डेरो है आरो ए आजाद भारत री कमावणी, कमेरी जोधा सिर माथे समान रो छाबड़ो, गंठड़ी का भारो टाबर पेट।

माए का फिर गोदी का आंगली का कड़ रह बंध्यो। कई बारी पेट आंगली कड़ गोदी तीनू का दोनू होवे तो भी कोई अचंभो कोनी। जीवन जुद्ध रे मैदान माए उतरी अस्वाभिमानी फौज घणे हकारी हकदार है पण कुण जगावे कुण बतावे। कविता गो शीर्षक है दरी। बस दो दिन और दिखाओ क्यों करी तीन बिलांत रही है। बस दो दिन और दिखाओ क्यों करी तीन बिलांत रही है। बाबे री असंग कोनी सोच सी दो साल सुवाई रात रात ही कोनी रुकी। माई नटगी घर रो खोर सो इं ही रहसी मरिया निमड़सी सुनो सामली ताई धार काट जासी। नट्टे कोनी मैं घनी आड्डी आऊं बीरे दो साल हो गया पड़ा तो ली पण फेर समर्थी नहीं उगड़ियो। मन्ने ठाकोनी दिनगे आ जाई अर फोन कट गयो। मन्ने ठाकोनी दिनगे आ जाई अर फोन कट गयो। राजस्थानी कविता के माँ अगली कविता है कि नेल पेंट यानी नू रचनी लगावे ब्याऊ माए माँ। छोटी सी कविता है। नेल पेंट यानी नू रचनी लगावे ब्याऊ माए माँ। माँ सीरीज की छोटी सी एक और कविता। थेपड़ी देखर लाग्यो माँ उडंत स्त्री सारू छात छात वैज्ञानिका सू बहुत पहली जाने ही बहुत पहली जाने ही। एक साल हो गयो आज कविता को शीर्षक है माँ है। एक साल हो गयो आज दिन के 5 बजे माँ ने कैलेंडर रे हिसाब से पहली पुण्य तिथि पण मैं रोज माँ ने महसूस करी है। रात तो सपने में आई गारो लिपई बखारी आली भींत रे साल माए। कोई 10-11 दिन पहली सपने माए खेत जाऊन सारू बातो जचावे ही अचानक गा खुंटो पड़ागी। मैं हेलो मार्यो नींद टूटी ना गा ना मा। दाणा खेत स्यू आंगण माए आया या बीन दिन बखल माए कीड़ी नगरे रे अलदीरी कार लगावे ही। सुपने माए मा मरण ने मरगी दाणा खेत स्यू आंगण माए आया हा बीन दिन बखल माए कीड़ी नगरे रे अलदीरी कार लगावे ही। सुपने माए मा मरण ने मरगी पण जद जद दिखे सुपने माए काम करती दिखे। माँ शीर्षक की एक छोटी कविता और है। माँ झांझर के उठ गे चाकी जोंती। माँ झांझर के उठ गे चाकी जोंती घर माए एक मिठी राग पसरती। माँ संगत करती बी साथे भजन गाउंती बा मीठे बोला अर नींदे रह जोला साथे मोटो होयो मैं मोटो होयो मैं। कविता एक और भी आपने पेश करूँ मैं। कुंडी माए रगड़ेड़ी लाल मिर्च उगाड़ी गोटे रो मुंडो आंगली सू पूछती एलो मारियो गिटल्यो गोटो बींत रे कन्ने अरबो सुसाऊं तो बेवणी सारे सात रोट शेर लासी साथे सार गे माचली पर लंबो हूं तो बोलियो जिस सोर हो गयो जीवगे आज तो। बाजार री सब्जी सू इसी रंगत वही कोनी साचाणी बण आडे को या छाबड़ती का नहीं देखियो छाबड़ती सांप पकड़नारी सी कर दी। रोटियां रो साइज लारी रे टेरा मानो फलका ने ओड़मो हर होगरा री बड़ाई रो उछबो उनरो जीवन उछबो उनरो जीवन। ई तरीकों एक कविता आपने और सुनाऊं के तू जांटी छांगा हो जद मैं कविता लिखाओ। किसान और कवि शीर्षक है कविता को। तू जांटी छांगा हो जद मैं कविता लिखा हो बांसिये माए ही जद बीजरी बरेड़ी मुठ्ठी तेरी चिमठी शू माड़ारा मिणिया जू बोव हो खूड खूड माए मोती शब्द हो मेरी कलम री इणी माथे। तू जांटी छांगा हो जद मैं कविता लिखा हो बांसिये माए ही जद बीजरी बरेड़ी मुठ्ठी तेरी चिमठी शू माड़ारा मिणिया जू बोव हो खूड खूड माए मोती शब्द हो मेरी कलम री इणी माथे तेरी पल पल री खबर ही मेरी कविता ने। जद चोखी साख देख तू अरख्यो साखो मतलब फसल जद चोखी साख देख तू अरख्यो मन ही मन तद मेरी कविता रे मुंडई मुड़क ही। जद अचानक उजड़ गयो तेरो खेत तेरा सुपना कोजी त्रिया कुक्यो तू रोई मेरी कविता हौसलो बंधायो पण चूक रो मतलब मौत होए एक चूक थू भी करी काती माए जार श्याणो होयो काती माए जार श्याणो होयो। कविता एक अलग तरीके की। खेत शीर्षक है। खेत जाऊं जद लागे बुई बांट बेल बेलड़ी उडीके माने बंतल सारू। खेत जाऊं जद लागे

0: पीरी दो दुनिया ही निजू और समाजू, बीरा दो मन हा निजू और ओपरो, बण हरेक मोड़ हरेक मार्ग माथे दो फांटा महसूस करया। अचानचक उनने ठा पड़ो कि इन दो माए ही एक है और एक रो मतलब ही दो है, एक दूजे माए एकम एक है, पण है फांटो फांट। जून री राह रीत बहुत सीधी और सरल है, पण घना उलझ पुलझ, घना उलझ पुलझ।
1: सुनियो भाई लोगो, राजस्थानी काव्य पाठ कवि विनोद स्वामी और किशोक लागियो थे माने मेल कागज का माध्यम जरूर अवगत करवाया सा। अब बात करा खेती बाड़ी की और मैं भी बात करा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की। तो किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति शूँ पौधे की जड़ जकी ने पानी की ज़्यादा ज़रूरत हुए बिना अच्छी तरह पानी मिलेगो हर खाली जिग्ञान जटे पौधा नहीं है बैठे खरपतवार कम पैदा होगी। किसान भाइयों, खेत में पानी वाष्पित हो गए या भाप बन गए कम उड्डे, इंगा वास्ते जरूरी है कि आपा खेत में खरपतवार कम शु कम पनपण देवा, क्योंकि खरपतवार शू पानी वाष्प बन गए ज़्यादा उड्डे, इन वास्ते बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग शू खरपतवार कम पैदा होएगो, क्योंकि यही पद्धति में ड्रिपर पौधा की दूरी के हिसाब से लगाई जाए और पौधा की जड़ ने ज़्यादा पानी मिले। इनके अलावा किसान भाइयों, अपन ध्यान रखना है कि जब खरपतवार खेत में पैदा हो भी गई है तो टाइम टाइम पर खरपतवार निकाल के ख़त्म भी करता रहना चाहिए। किसान भाइयों, आप जाने यहाँ कि पानी के बिना खेती करना संभव को नहीं। इनमें बहुत सा किसान भाई खेती खातर बारिश पर निर्भर रहे, जका किसान भाइयों का न सिंचित क्षेत्र है बैठे भी सिंचाई का जका साधन है वे पानी की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जी शू सिंचाई साधन होने के बावजूद भी किसान भाई बारिश पर निर्भर होने लग रहे, भूमिगत जल स्तर भी धीरे धीरे नीचे जावन लग रहे। जे किसान भाइयों, आप बारिश को पानी इकट्ठो करांगा तो भूमिगत जल स्तर पर पड़न वालों दबाव कम होवेगो और भूमिगत जल को जो स्तर है वो ऊंचो भी आ जाएगो। बारिश का पानी ने खेत में डैम या तालाब बना के आप बेड़ो कर सका और फसल में ज़रूरत के हिसाब से दे सका, जी शू अपनी फसल में पानी की कमी को नहीं आवे और उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो बातें और भी करांगा, पहला आप सुन लिया वो गीत सुनो सा।

सुनियो भाई लोगों, गीत किसान भाइयों, खेती के सागे सागे आपा सहायक धंधा के रूप में पशुपालन भी करा, क्योंकि पशुपालन भी खेती के सागे ही जुड़ेड़ो धंधो है। और अपना कई पशुपालक भाई अच्छी अच्छी नस्ल का पशु पाल के अच्छा मुनाफा भी कमावे। पर भाई लोगों, पशुपालन ने बेहतर बनाने खातर आपा ने बहुत सी बातों को ध्यान रखना पड़े। पशुओं की निराचारी के बारे में, पशुओं के संतुलित आहार के बारे में, और पशुओं की जरूरत और बांगे स्वास्थ्य की जानकारी आपने होनी जरूरी है। भाइयों, आपने ही क्षेत्र में अपना पशुपालक भाई अच्छी अच्छी नस्ल की गाय भैंसियाँ रखे, बांगे अच्छे स्वास्थ्य खातर अच्छा संतुलित आहार और बांगी देखभाल करके अच्छा दूध उत्पादन आप ले सका। इनके अलावा पशुपालन खातर आपने बाड़े या गौशाला की जिग्ञा को चुनाव भी बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अच्छी नस्ल का पशु रखने खातर टाइम टाइम पर पशुपालन विभाग की तरफ से राखी जेड़ा सेमिनारा में भी आनो जानो रखना चाहिए, ताकि पशुपालन की जानकारी आपने बढ़िया तरीके से मिल सके। भाई लोगों, इनके अलावा भी बहुत सी बातें हैं बांगो ध्यान रखना और गौर करना जरूरी है। जहाँ पशुओं ने माँ बारे करता टाइम आपने ई बात को ध्यान रखना है कि जठे पशुआ ने आपा बांधा बठे गीली जिग्या हर पानी ठहरेड़ो नहीं होना चाहिए। बांधने से पहली जिग्या की साफ सफाई करके बढ़िया सुखेड़ो करके फिर ही पशुआ ने बांधना चाहिए। कई पशुपालक भाई पशुओं ने बिना सुखेड़ो करे ही बांध दिए, जगह की वजह से अपना पशु बीमार हो जाए। भाई लोगों, अभी बदलता मौसम का माँ अपने पशुओं का माँ कई तरह का रोग देखने ने मिले। जी हम बात करा मुँह पका खुरपका रोग है, इनके अलावा रीडरपेस्ट नाम की बीमारी है। आंगा लक्षण ई मौसम में अपने पशुओं में देखने मिले। आ रोगों से अपनी गाय भैंसा ने बचाने के वास्ते टीका जरूर लगवा देना चाहिए। इनके सागे सागे पशुओं ने कृमिनाशक दवाइयाँ भी देवता रहना चाहिए। कई बार पशुओं के पेट में कृमि पैदा हो जाए, जगह की वजह से पशु बीमार हो जाए, तो इन वास्ते डॉक्टर से राय लेके कृमिनाशक दवाई टेमो टेम अपने पशुओं ने देनी है। कई बार आपा देखा कि दुधारू पशुओं के थाना में सूजन आ जाए, जगह की वजह से दूध निकालता टाइम पशु लाता लड़ियों करने लग जाए और पशु बीमार भी हो जाए। तो इन वास्ते इन बात को ध्यान रखना जरूरी है कि पशुओं ने अपने गिल्ली जिग्या में कदई नहीं बांधना चाहिए। दूध निकालने से पहले थना ने साफ पानी से धोगे, साफ सूखे कपड़े से पूछ गए, फिर ही दूध निकालना चाहिए। भाई लोगों, पशुशाला को फर्श हमेशा हल्की ढलान में ही बनाना चाहिए,

0: शू पशुओं को पेशाब गोबर कीचड़ पशुओं से दूर रहे। जे बाड़ा में कोई बीमार पशु है तो बिना अपने स्वस्थ जो को स्वस्थ पशु है बांसू न्यारे रखना चाहिए। बिंगो इलाज करवाना है न्यारो इन वास्ते रखना है ताकि दूसरा पशुओं में बीमारी न फैले। इन बारे में भाई लोगों बात और भी करांगा, पहला आप सुन लिया भजन सुनो सा।
1: चले मारी माई बताऊ।

सुनियो भाई लोगो भजन। किसान भाइयों, टेमो टेम पशुओं की देखभाल, दवाई पानी, नीराचारी करनी जरूरी है सा। जे आप पशुओं ने अबांगी उम्र के हिसाब से और दुधारू पशुओं ने अच्छो संतुलित आहार देवा तो आप अच्छो मुनाफो भी ले सका। अब जी बात करा संतुलित आहार की, तो संतुलित आहार वो हुए जिके गा जल, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन और वसा ए तत्व होवे, बिना आप संतुलित आहार के वहाँ। जी जल की बात करा तो जल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर आप इन्हें जरूरी कम समझा, जबकि बहुत बड़ी गलती है। अगर पशु खुले बाड़ा में खुला खड़े है तो बीज या सफाई की और साफ पानी की व्यवस्था होनी जरूरी है, क्योंकि पशुओं ने टाइम सारू पानी नहीं दे जाए तो पशुओं को नुकसान भी हो सके। सर्दी गर्मी के हिसाब से भी पानी को तापक्रम रख के पशुओं ने पानी पियाना जरूरी है। जहाँ तक खनिज लवण की बात है तो पशु आहार में खनिज लवण होना भी बहुत जरूरी है। कई बार देखा कि पशुपालक भाई पशुओं ने खनिज लवण देना जरूरी कौन समझे, जिसू पशुओं में कई तरह की बीमारियां हो जाए, पशु माटी कपड़ा खावन लग जाए, पशु कमज़ोर भी हो जाए, तो टेमो टेम आहार में खनिज लवण देना भी जरूरी है। पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट होना भी जरूरी है, जगह की पूर्ति आप आहार में अनाज और चारे से कर सका। पशुपालक भाई इन बात को भी ध्यान रखे कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इंगा सागे ही वसा और प्रोटीन पचाने में भी अच्छी भूमिका निभावे। इंगा अलावा पशुओं के संतुलित आहार में विटामिन, प्रोटीन, वसा ये सगला होना भी जरूरी है, तो इंगा वास्ते अच्छी तरह मिला के ही आप आहार तैयार करा। संतुलित आहार में खनिज लवण का सागे सागे सूखो चारो हुए, जहाँ सूखी तूड़ी चाहे वह कणगी हुए या जोगी, और हरियो चारो हरे चारे का माँ जिया बरसीम, काउपी, सोयाबीन ये सब प्रोटीन युक्त होवे। कम प्रोटीन की मात्रा वाला चारा जिया मक्का, बाजरा, जई, अंजन घास, दूब घास ये सब होवे। इनके अलावा आपा दाणो भी तैयार करके पशुओं ने देश का, जहाँ कम प्रोटीन वालों दाणो जको अनाज के रूप में होवे। ज़्यादा प्रोटीन वाले दाणा में काउपी, काला चना, घोड़ा चना, बंगाली चना आ सगड़ा में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होवे। इनमें आप मूँगफली, सरसों, अलसी, बिनोड़ा, नारियल की खड़ के रूप में भी दुधारू पशुओं ने मात्रा तय करके दे सका। कई बार आप देखा कि पशुपालक भाई छोटा मोटा पशुओं ने एक जैसी मात्रा में ही आहार देवे, लेकिन आपा ने छंटनी करके ही फिर आहार की मात्रा तय करनी है। जहाँ दुधारू पशुओं ने अलग मात्रा के हिसाब से दाणो चारो देना है, जहाँ कोई गाय 10 लीटर दूध देने लग रही है, सागे बा गाय गर्भवती भी है, और बिना आप थोड़ो चारो देवन लग रहा तो पशु दूध तो घटासी ही कमज़ोर भी हो जासी। इन वास्ते पशुपालक भाई इन बात को ध्यान रखे कि प्रत्येक पशु ने उचित आहार पशु की जरूरत के हिसाब से देवे। जको आहार पशु ने आपा देवन लाग रहा बीमें 2/3 भाग मोटो चारो जिया बरसीम, तूड़ी और 1/3 भाग दाणो होनो जरूरी है। जिया कोई गाय जकी को वजन 4 क्विंटल का लगभग है और 10 लीटर दूध देवे, बिना आपा 20 किलोग्राम बरसीम, 15 किलोग्राम तूड़ी और 3 किलोग्राम मिश्रित दाणो देनो चाहिए। 10 लीटर से ज़्यादा अगर दूध देने वाला पशु है तो आपने बिना 2.5 किलो अतिरिक्त चारो और 1 किलोग्राम ज़्यादा दाणो देनो चाहिए, जिसू पशु अच्छो दूध भी देवे और अच्छो गुजारो भी कर लेवे। किसान भाई, 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल शरीर भार की गाय ने एक दिन औसत के हिसाब से 2.5 किलोग्राम सूखो चारो और भैंस ने 3 किलोग्राम सूखो चारो देनो चाहिए। भाई लोगों, पशु आहार जको आप तैयार करो है वो संतुलित होना जरूरी है, ताकि पाचन क्रिया अच्छी तरह हो जाए। एक दिन में 2 बार आहार देनो चाहिए, और अंतराल की बात करा तो 8 से 10 घंटा को अंतराल होनो चाहिए। आहार में कोई भी तरह की दवाई, जहरीलो तत्व या जहरीलो चारो नहीं होना चाहिए। इनके अलावा एक बात को और ध्यान रखना है कि जब भी आप पशु चारा में ज्वार, कड़बी, रिजको देवा तो काट के अच्छी तरह कुतर करके फेर ही देवा। और भाई लोगों, आजकल चलन सो बन रहे हैं कि पशुओं के टीका लगा के दूध निकालने को, तो आप बहुत माड़ी बात है। वो दूध मिनक जात खातर और पशु दोनों के खातर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हुए। टीको लगा के दूध निकालने को तरीको आपने छोड़नो पड़ सी। भाई लोगों, टीको लगा के जको आप दूध निकाल के पिया वो दूध अपने शरीर वास्ते बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हुए। इनसे कई तरह की बीमारियाँ हो जाए, जहाँ अल्सर है, पेट की बीमारियाँ हैं, नपुंसकता है, वो दूध पशुओं के शरीर पर भी बुरा असर डाले। जे आपनों पशु बीमार है तो पशुओं के डॉक्टर की राय लेके पशु को इलाज करवावा, और जब तक पशु की दवाई पानी चले भी पशु को दूध आप

उपयोग में नहीं लेना है और ना ही वो दूध बछड़ा ने पियानो है। भाई लोगों, दूध निकालने का आधा घंटा पहला पशु ने खुआनो पियानो है जो कर देना चाहिए। पशु को दूध आपने एक निश्चित टाइम पर निकालना चाहिए, क्योंकि कई बार हुए कि दूध कई कदी तो आप 2 घंटा देरी से निकाल लियो और कदी 2 घंटा पहला निकाल लियो, तो यह नहीं करना चाहिए। जे आप टाइम सग आगे पीछे करांगा, हेर फेर करांगा, तो दूध जो है वो पशु घटा जाएगो और जिबिंगी जकी दूध देने की क्षमता है वह भी कम हो जाएगी। पशु ने टाइम सर माँ बारे करनो, बिना टाइम सर निराचारी करनी, बिना टाइम सर नुआनो जरूरी है। पशु ने टाइम सर वजन और उम्र के हिसाब से संतुलित आहार देना भी जरूरी है। और भाइयों, टाइमो टाइम पशुओं का स्वास्थ्य भी आप डॉक्टर से जाँच करवाता रहवा। पशुओं ने टाइम टाइम पर इन्हें बिना घुमाना भी जरूरी है, बांगा खुर टाइम पर कटवाना जरूरी है। आ सगली बातों को जो आप ध्यान रखा तो आप अच्छो दूध उत्पादन ले सका, अच्छो पशुपालन कर सका। पर अब आप सुन लिया वो गीत लियो सुनो सा।

किसान भाइयों, खेतीबाड़ी में आपने जैविक खादां को जो को उपयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जिया गोबर की खाद, भाई लोगों घरेलू पशु जिया गाय भैंस बकरी ऊंट आगे मल मूत्र गोबर शू आ खाद आप तैयार कर सका। भाई लोगों गोबर की खाद में 0.51% नत्रजन, 0.4-0.8% फॉस्फोरस, 0.5-1.3% तक पोटाश, 40 PPM जस्तो, 2.8 PPM तांबो और इं ही लोहा मैग्नीज जैसा तत्व भरपूर मात्रा में गोबर की खाद में मौजूद होवे। जे किसान भाइयों आप खेत में गोबर की खाद को प्रयोग करा तो इंशु माटी की भौतिक रासायनिक और जैविक संरचना में सुधार कर सका। अब बात करा आप कंपोस्ट खाद के बारे में। कंपोस्ट खाद तैयार करने खातर खरपतवार फसल अवशेष पशुओं को बचेड़ो चारो पेड़ पौधा की पत्तियाँ कूड़ो कचरो और दूसरों कार्बनिक कचरो जका ने सड़ आगे कंपोस्ट खाद तैयार कर सका। इनमें 0.4-0.8% तक नत्रजन, 0.3-0.6% तक फास्फोरस और 0.7-1% तक पोटाश हो। किसान भाइयों कंपोस्ट खाद आपने जितनी प्रति बीघा अपना कृषि वैज्ञानिक बतावे बिंगा हिसाब से खेत में बुवाई से 3-4 सप्ताह पहले नागे माटी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए ताकि अपनी भूमि की उर्वरा ताकत भी बढ़िया बनी रहे और टेम सारू ना खड़ी खाद छू अपनी फसल भी बढ़िया हुए। इन वास्ते भाई लोगों खेत में जीवांशों की मात्रा बढ़ाने खातर आप कंपोस्ट खाद तैयार करके खेत में जरूर डालनी चाहिए। अब बात करा वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में। आ खाद भाई लोगों कैंचुआ से तैयार करी जाए और इन्हें ही आप कैंचुआड़ी खाद कहवा। भाई लोगों प्रकृति कैंचुआ ने एक अद्भुत क्षमता दी है जके की वजह से कैंचुआ खुद के भाष्यू ज़्यादा मलमूत्र त्याग करके उच्च कोटि की खाद तैयार कर सके। किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट खाद में 2.5-3% तक नत्रजन होवे और 1.5-2% तक फास्फोरस होवे। यहीं ही 1.5-2% तक पोटाश इं खाद से आप खेत खातर ले सका। इन वास्ते वर्मी कंपोस्ट खाद एक अच्छी और बढ़िया खाद होवे। कंपोस्ट खाद में एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा गोबर की सड़ी गली खाद से 8 गुना ज़्यादा होवे। इं खाद का एंटीबायोटिक गुणांगी वजह से अपनी खड़ी फसल में कीट रोग भी बहुत कम लगे। इनके अलावा वर्मी कंपोस्ट से इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी भरपूर और संतुलित मात्रा में हुए। इनके सागे एंजाइम विटामिन भी वर्मी कंपोस्ट खाद में भरपूर हुए। इन वास्ते अपना किसान भाई कैंचुआ से खाद तैयार करके खेत

इतने उपजाऊ और बढ़िया बना सके। भाई लोगों, भूमि की कठोरता ने खत्म करने खातर आप जैविक खादों को ही प्रयोग करना है ताकि भूमि बंजर होने से आप बचा सका। वर्मी कंपोस्ट खाद आप खेत में या घरे भी तैयार कर सका। आपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से केंचुआ ले आगे आप खाद तैयार कर सका। इनमें ज़्यादा खर्चों भी कौन लगे और ज़्यादा टाइम भी कौन लगे। इन वास्ते घरे या खेत में जठे भी जगह मिले आप छोटो मोटो वर्मी कंपोस्ट शेड और टब तैयार कर लेवा। इनके अलावा किसान भाइयों, आप खेत ने ज़्यादा बेहतर तरीके से उपजाऊ बनाने खातर हरी खाद को भी इस्तेमाल कर सका। हरी खाद बनाने के लिए आप दलहनी और अदलहनी फसला ने हरी अवस्था में ही माटी में जुताई हलसू मिला देवा ताकि माटी में जीवांश की मात्रा भी बढ़िया बनी रहे। इनके अलावा हरी खाद प्रयोग करने से माटी की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा पर भी अनुकूल प्रभाव पड़े। किसान भाइयों, हरी खाद के प्रयोग से भूमि में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिले। इनके अलावा माटी की जल धारण क्षमता में भी बढ़ोतरी होवे और माटी जकी है वह भुरभुरी कणाकार बन जाए जकी अपनी फसल के लिए फायदेमंद होवे। इन वास्ते आप अपने खेत में हरी खाद को इस्तेमाल भी कर सका। किसान भाइयों, हरी खाद तैयार करने के लिए ढेंचा, सनई, ग्वार ये फसलां आप बीजांत करके हरी खाद तैयार कर सका। भाई लोगों, आप जीवाणु खाद इस्तेमाल करके भी भूमि की उर्वरा ताकत बढ़ा सका और अच्छी पैदावार भी ले सका। भाई लोगों, जीवाणु खाद स्यूँ फसलों की पोषक तत्वों की पूर्ति आप कर सका। किसान भाइयों, जीवाणु खाद एकदम प्राकृतिक और आसानी से तैयार होने वाली खाद है। इनकी उत्पादन लागत रासायनिक उर्वरकों की तुलना में कई गुना कम हुए। राइजोबियम जीवाणु दाणा सागे मिल गए लगभग 100 से 300 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर तक उपलब्ध करवा देवे। भाई लोग, जीवाणु खाद शूँ फास्फोरस घोलक जीवाणु भूमि में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस ने घुलनशील अवस्था में लिया गए पौधा ने घणों सारो फायदो पुगावे। इन वास्ते मान सका कि जीवाणु खाद फसल, भूमि और पर्यावरण के लिए एक बढ़िया खाद है। किसान भाइयों, आपने कई भाई लोग आपने खड़ी की खाद तैयार करके भी खेत में ना के तिलहनी से तेल निकलने के बाद जकी खड़ बच जावे बीच खाद तैयार करके भी आप उपयोग में ले सका। खड़ी की खाद में नत्रजन को प्रतिशत गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद की तुलना में ज़्यादा होवे। पोषक तत्वों की मात्रा खड़ी की प्रकृति पर निर्भर करे। जी हम बात करें महुआ की खड़ी में 2.8%, अरंडी की खड़ी में 4.4%, नीम की खड़ी में 5.2%, सूरजमुखी की खड़ी में 7.9% तक नत्रजन होवे। इनके सागे फास्फोरस, पोटाश भी पूरी मात्रा में होवे। इन वास्ते दूसरी खाद का सागे आप खड़ी की खाद तैयार करके भी खेत को उत्पादन बढ़ा सका। तो इन त्रियां से भाई लोगों, आप जैविक खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैविक खेती अपना के आप बढ़िया मुनाफा पर्यावरण को भी पूरा बचाव कर सका। पर अब आप सुन लिया ओ भजन सुनो सा।

ग्रामीण परिवार सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं, कार्यक्रम सुने एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज की फिल्म बाजार। 1982 में फिल्म बाजार भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में पहचानी गई। इस फिल्म का निर्देशन सागर सरहदी ने किया। फिल्म के लेखक इब्राहिम रुंगाला थे। फिल्म के प्रोड्यूसर विजय तलवार रहे और फिल्म के मुख्य पात्र सलीम यानी नसीरुद्दीन शाह एक गरीब लेखक हैं जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए संघर्ष करता है।

दूसरा पात्र शकीला यानी स्मिता पाटिल हैं, जो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से जूझ रही हैं। इन दोनों के जीवन की कहानी एक ऐसे बाजार में आपस में मिलती है जहां दहेज के लिए लड़कियों की बिक्री होती है। फिल्म में सुहेब यानी फारूक शेख और नजमा यानी सुप्रिया पाठक की भी बेहतरीन अदाकारी है।

ये गीत जो भी आपने सुना, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, इसे लता मंगेशकर और तलत अजीज ने गाया है। ये गीत मखदूम मोहिउद्दीन ने लिखा था और एक ये भी एक रोमांटिक गज़ल है जो प्रेम और उसकी नाजुक भावनाओं को बयां करती है। खयाम के संगीत और रचना और लता मंगेशकर व तलत अजीज की आवाज़ इस गज़ल को और भी खूबसूरत बना देते हैं। बाजार का संगीत फिल्म की संवेदनशीलता और उसके भावनात्मक पहलुओं को बखूबी प्रस्तुत करता है। खयाम की धुनें और शायरों के गहरे बोल मिलकर एक ऐसी कमाल की रचना बनाते हैं जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है।

और लता मंगेशकर व तलत अजीज की आवाज इस गजल को और भी खूबसूरत बना देते हैं। बाजार का संगीत फिल्म की संवेदनशीलता और उसके भावनात्मक पहलुओं को बखूबी प्रस्तुत करता है। खयाम की धुनें और शायरों के गहरे बोल मिलकर एक ऐसी कमाल की रचना बनाते हैं जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है। इस फिल्म के कुछ गीत हैं, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है और इसके गीतकार बशर नवाज हैं। ये गीत फिल्म के सबसे लोकप्रिय और यादगार गीतों में से है। बशर नवाज के इस गीत में प्यार, बिछड़न और यादों की खूबसूरती को बेहद संजीदगी से प्रस्तुत किया गया है। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत ने एक अमर धरोहर का रूप ले लिया है।

एक गीत आप सुनेंगे, देख लो आज हमको जी भर कर। इस गीत को जगजीत कौर ने गाया है और बोल मीर तकी मीर ने लिखे हैं। ये गीत भी एक सादगी भरी लेकिन प्रभावशाली प्रस्तुति है, जिसमें प्रेम और विरह की भावनाओं को बड़े ही संजीदा तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मीर तकी मीर के शेर और जगजीत कौर की गायकी इसे एक अनुपम कृति बनाते हैं।

एक गीत आप सुनेंगे, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, लता मंगेशकर की आवाज़ में, मीर तकी मीर की रचना, और एक ऐसी गज़ल जो प्रेम की गहराइयों को उजागर करती है। मीर तकी मीर के शेर और लता मंगेशकर की आवाज़ भी इस गज़ल को एक अमर रचना बना देते हैं।

फिल्म बाजार के संगीत ने कहानी को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। खयाम के संगीत निर्देशन में बने इन गीतों ने दर्शकों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। इन गीतों की खासियत यह है कि ये फिल्म की कहानी और उसके पात्रों की भावनाओं को बखूबी व्यक्त करते हैं। गज़लों का चयन और उनकी प्रस्तुति फिल्म की संजीदगी को और भी बढ़ा देते हैं।

फिल्म बाजार की कहानी भारतीय समाज में दहेज प्रथा और उससे जुड़ी समस्याओं पर आधारित है। यह कहानी मुख्य रूप से चार प्रमुख पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, सलीम, नसीरुद्दीन शाह, शकीला स्मिता पाटिल, सुहेब यानी फारूक शेख और नजमा यानी सुप्रिया पाठक। सलीम एक गरीब लेखक है और जो हैदराबाद में रहता है। वह ईमानदार और आदर्शवादी है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। उसकी जिंदगी में बहुत संघर्ष और समस्याएं हैं, पर वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। शकीला सलीम की प्रेमिका है, जो एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार से है। उसके परिवार वाले उसकी शादी के लिए दहेज जुटाने की कोशिश में लगे हैं। शकीला को भी इस बोझ का सामना करना पड़ता है और वो भी अपने परिवार की स्थिति को समझते हुए एक दुख

जीवन व्यतीत करती है। सुहेब एक बहुत अमीर व्यापारी है, मुंबई में रहता है और उसकी नज़र शकीला पर पड़ती है। वह उसे शादी का प्रस्ताव रख देता है। शकीला के परिवार वाले आर्थिक संकट से गुजरते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। वही नजमा एक भोली और मासूम लड़की है जो अपने जीवन में बहुत से सपने देखती है, लेकिन वो भी दहेज की समस्या से जूझ रही है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। सलीम और शकीला का प्रेम उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद मजबूती से बना रहता है। सलीम शकीला की मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी अपनी आर्थिक समस्याएं उसे इस काबिल नहीं बनाती। दूसरी ओर शकीला को अपने परिवार के दबाव में आकर सुहेब से शादी करने के लिए राजी होना पड़ता है। जब शकीला की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं तो सलीम को इस बात का एहसास होता है कि शकीला के जीवन में आने वाले दुखों का मुख्य कारण दहेज की प्रथा है। वह इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला करता है। शकीला और सुहेब की शादी का वो दिन भी आ जाता है। शादी के दिन शकीला अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए सुहेब के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आखिरी समय में शकीला की आत्मा यह अन्याय सहन न करने का निर्णय करती है और वह इस शादी से इनकार कर देती है। इस घटना के बाद सलीम और शकीला मिलकर दहेज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेते हैं। फिल्म का अंत एक मजबूत संदेश के साथ होता है कि दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ा होना और समाज को जागरूक करना जरूरी है। बाजार की यह कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है और उन्हें समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित भी करती है। संगीत ने बाजार को केवल एक फिल्म नहीं, एक संगीतमय अनुभव बना दिया है जो आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस फिल्म के गीत न सिर्फ अपने समय में बल्कि आज भी लोगों के दिलों को छूने की ताकत रखते हैं।

इसी के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब समाप्त होता है। अपने साथी विशाल को दे अनुमति, नमस्कार। हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 8:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत ने गोल में श्रीलंका के खिलाफ अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 9 विकेट खोकर 460 रन बना लिए थे। वहीं एक और खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से, जहां बांग्लादेश ने कंगारुओं को हरा करके रचा है टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास। बात की जाएगी कार्यक्रम में महिला हॉकी विश्व कप की, जहां भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलते हुए इस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट टीम को एक कड़ी टक्कर दी है। और बैडमिंटन का मैदान अब सज चुका है राजधानी नई दिल्ली में, जहां कल से शुरू होगी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। और अंत में कार्यक्रम में बात की जाएगी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं गोल में। भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाकर के अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के लिए देवदत्त पड्डीकल ने 167 रन का शानदार योगदान दिया। दिन का पहला सत्र बारिश के कारण पूरी तरीके से धुल गया। इसके बाद भारत ने अपने कल के स्कोर

0: विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू किया। और क्रिकेट की खबरों पे और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, आज के मैच पहला सेशन जिस तरह से गया, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना मौका मिल पाएगा खेलने का, इतने रन बन पाएंगे, लेकिन भारत ने कह सकते हैं एक मजबूत पकड़ हासिल कर ली है मैच में।
1: जी शक्ति, बिल्कुल, जिस तरीके से बारिश आज हो रही थी उस समय ऐसा ही लग रहा था कि आज का खेल जो है वो धुल जाएगा, लेकिन देवदत्त पडिक्कल जब बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से आए तो उसी लय में नजर आए और शानदार बल्लेबाजी का उन्होंने प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत ने भी उनका अच्छा साथ निभाया, 39 रन का योगदान दिया, लेकिन जब ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 68 गेंदों पर 51 रन बनाए उन्होंने। एक अच्छी पारी, एक बैलेंस्ड पारी उन्होंने खेली और टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ाया। लास्ट में मानव सुथार ने भी 43 गेंद पर 24 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को 460 रन के स्कोर तक पहुंचाया है।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक मजबूत पकड़ भारत ने आज हासिल कर ली और दो ही सेशन का खेल हो पाया। आपने देवदत्त पडिक्कल की बात की, इसके पहले इस खिलाड़ी ने दो टेस्ट मैच खेले थे, 90 रन बनाए थे, लेकिन कह सकते हैं कि सारी भरपाई कर दी इस तीसरे मुकाबले में।
1: जी बिल्कुल, और कई कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किए हैं। नंबर 3 पर श्रीलंका की धरती पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है और इसके साथ ही साथ वो तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं नंबर 3 पर खेलते हुए जिन्होंने 150 प्लस स्कोर बनाया है श्रीलंका की धरती पर। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा ने कर पाया था। इसके अलावा अगर शक्ति बात करें तो इंडिपेंडेंस डे के दिन शतक लगाने वाले वे पहले टेस्ट बैटर बन चुके हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय शतकों की बात करें तो उन्होंने विराट कोहली की लिस्ट को ज्वाइन किया है जिन्होंने ओडीआई शतक लगाया था। तो इसके अलावा अगर कहीं कहा जाए तो 2024 के बाद नंबर 3 पर किसी ने शतक लगाया ही नहीं था भारत के लिए टेस्ट में। 19 मुकाबलों के बाद 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद देवदत्त पडिक्कल निखर कर आए और उन्होंने शतक जमाया।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं, और शतक का और मोल तब बढ़ेगा जब भारत इस मुकाबले में जीत हासिल करता है और शायद वो स्वतंत्रता दिवस के शतक की जो लहर है वो और मजबूत होती हुई नजर आएगी। भारत को दो टेस्ट मुकाबले खेलने हैं, इसके बाद भारतीय टीम अगला टेस्ट जो है वो 19 नवंबर को खेलेगी। बीच में एक लंबा फासला है और बहुत तेजी से बदलती हुई WTC की टेबल है जो आपका स्लॉट फिक्स करेगी फाइनल में, लेकिन भारत के साथ ही आज बात होनी चाहिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के टेस्ट क्रिकेट में सफ़ेद जर्सी में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया है और 23 साल बाद वो टेस्ट श्रृंखला खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली ये बांग्लादेश की टीम बनी है, जिसने डार्विन में पहले टेस्ट मैच में जब उसको चौथी पारी में जीत के लिए 57 रन की आवश्यकता थी, टीम ने महज एक विकेट खोकर के ये लक्ष्य हासिल कर लिया। और जिस तरह का ये पूरा का पूरा मुकाबला रहा, आज शादमान इस्लाम 25 रन और मोमिनुल हक 30 रन बनाकर नाबाद रहे और वो जीत दिलाई जो शायद दशकों तक बांग्लादेश क्रिकेट में और विश्व क्रिकेट में याद की जाएगी। भारत जैसा मजबूत देश, न्यूजीलैंड जैसी टीम भी उनकी धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराने से पहले कई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने कर दिखाया।
1: जी बिल्कुल शक्ति, और ऑस्ट्रेलिया जब मैदान पर उतरी तो उन्होंने टॉस के साथ ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे बल्लेबाजी चुन के कि वो इस मुकाबले को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने पहली पारी से ही मुकाबले पर पकड़ बनानी मजबूत कर दी। उनके गेंदबाज हसन महमूद ने पहली पारी में 6 विकेट लिए और पहले ऐसे गेंदबाज बने, बांग्लादेशी गेंदबाज बने, जिन्होंने 5 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर और 198 रन पर ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद तंजीद हसन जो कि पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाया और 426 रन के स्कोर तक टीम को पहुंचाया। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज ने तीसरी पारी में शानदार 5 विकेट हॉल लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर पहुंचा दिया और आखिरी पारी में तो सबने देखा ही कि बांग्लादेश ने किस तरीके से आसान जीत दर्ज कर ली। ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है शक्ति, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने तीसरे प्रयास में ही ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबला जीत लिया है, जबकि पाकिस्तान को 7 और भारत को 12 मुकाबले लगे थे। तंजीद हसन, मेहंदी हसन मिराज, हसन महमूद, इन सब खिलाड़ियों की जितनी भी बात करें उतनी कम। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने रंगना हैरत का 433 विकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वो बाएं हाथ के गेंदबाज सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में, और जोश हेजलवुड ने भी 300 विकेट का आंकड़ा जो है छू लिया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला चला और बहुत ही ऐतिहासिक ये मैच, जहां बांग्लादेश तीसरी एशियाई टीम बनी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबला जीतने वाली।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि सफ़ेद जर्सी में ऑस्ट्रेलिया को हराना हर टेस्ट प्लेइंग नेशन का एक ख्वाब होता है, और इसके पहले जब बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैच खेलने उतरी थी तो उसे जिम्बाब्वे से एक पारी और 85 रन से हार का सामना करना पड़ा था और काफ़ी आलोचना हुई थी उस टीम की, लेकिन कह सकते हैं कि एक नई

0: नीति नए जोश के साथ उतरी और ये वही बांग्लादेश टीम है जिसने इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया को एक दिवसीय श्रृंखला में 2-1 से हराया है, पाकिस्तान को टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से हराया है, आयरलैंड पे 2-0 की जीत दर्ज की है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा उदय नज़र आता हुआ इस टीम का क्रिकेट के मैदान पर और एक बहुत शानदार जीत जो शायद ये टीम, इस टीम का हर खिलाड़ी अपने दिल में सालों सालों तक सजो के रखेगा। और अब क्रिकेट के मैदान के बाद बात की जाए हॉकी की, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत एक दमदार प्रदर्शन के साथ की है। भारत ने 2024 ओलंपिक की रजत पदक विजेता चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। सुनते हैं इस मैच पर ये रिपोर्ट।
1: अम्स्टेलविन के वागिनर हॉकी स्टेडियम में चीन के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करने उतरी भारतीय महिला टीम भले ही नतीजे को जीत में तब्दील नहीं कर सकी, लेकिन टीम ने अपने शानदार खेल की बदौलत मुकाबले को 2-2 के स्कोर से ड्रॉ पर रोक दिया। भारत की ओर से नवनीत और दीपिका ने गोल किए। भारत ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। भारत को मैच के 8वें मिनट में पहली सफलता मिली जब नेहा ने डी के बाहर से गेंद सर्किल में भेजी, जिस पर नवनीत ने अंतिम टच देते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। 14वें मिनट में चीन की झांग यिंग ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भारत ने बार फिर आक्रामक खेल दिखाया। दीपिका ने शानदार प्रयास करते हुए चीनी सर्किल में प्रवेश किया और बेस लाइन तक पहुंचकर फाउल हासिल किया, जिससे भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने खुद जिम्मेदारी संभाली और बेहतरीन ड्रैग फ्लिक के जरिए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। भारत ने 2-1 की बढ़त बना ली और इसी स्कोर के साथ हाफ टाइम तक आगे रहा। हालांकि 39वें मिनट में चीन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जहां मा निंग ने शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर गेंद को भारतीय गोल में पहुंचा दिया और स्कोर 2-2 कर दिया। चौथे क्वार्टर में चीन ने विजयी गोल के लिए लगातार हमले किए, जबकि भारतीय टीम ने भी जवाबी हमले के जरिए मौके तलाशे। मैच के अंतिम मिनटों में चीन को पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, लेकिन भारतीय डिफेंस ने शानदार संयम दिखाते हुए सभी खतरों को टाल दिया। आखिरकार दोनों टीमें निर्णायक गोल नहीं कर सकी और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम अब 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला पूल डी मुकाबला खेलेगी। भारत की नजर इस मुकाबले में वर्ल्ड कप की पहली जीत दर्ज करने पर होगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जहां पर भारतीय महिला टीम ने एक शानदार शुरुआत कर दी है, अब पुरुष टीम जो पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हरा चुकी है, अब कल अपना दूसरा मुकाबला शाम 6:30 बजे से भारतीय समय अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। और अब बात की जाए नई दिल्ली में सेट हो चुके BWF विश्व बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप के स्टेज की, जो कि कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु और भारत की शीर्ष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इस प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। 2009 के बाद ये दूसरा मौका है जब भारत इस वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। 23 अगस्त तक चलने वाली इस 30वीं BWF विश्व चैंपियनशिप में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भारतीय सरजमी पर अपना दमखम आजमाते नजर आएंगे।
1: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पिछले महीने जापान ओपन का खिताब जीतने के बाद अपनी शानदार फॉर्म को इस टूर्नामेंट में भी बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगी। पीवी सिंधु 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट रही हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा भारत की दूसरी प्रतिनिधि है, वही पुरुष सिंगल्स में 2021 में इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भारतीय चुनौती रखेंगे। आयुष को एक कठिन शुरुआती दौर का मैच मिला है, जहां उनका मुकाबला मौजूदा विश्व विजेता और टॉप सीड चीन के शी युकी से होगा। पुरुष डबल्स की बात की जाए तो एशियाई खेलों के चैंपियन और 5वीं सीड सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर बैडमिंटन ओपन वाली अपनी फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हरिहरन, अमसा करुणन और MR अर्जुन की जोड़ी भी भारतीय दल का हिस्सा है। महिला डबल्स में भारत को त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद तथा कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी से उम्मीदें होंगी, जबकि मिक्स डबल्स में देश की 3 जोड़ियां हिस्सा लेंगी, जिसमें सबसे अधिक उम्मीद ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो से होगी। वही रोहन कपूर और ऋत्विका गदे तथा आशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में

0: भारत ने अब तक 1 स्वर्ण 4 रजत और 10 कांस्य समेत कुल 15 पदक जीते हैं। 2011 के बाद से भारत ने हर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम से कम एक पदक जीता है। ऐसे में अपनी सरजमीं पर खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीदें घरेलू दर्शकों के बीच अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर होगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि इन खिलाड़ियों के साथ साथ जो सबसे मजबूत फैक्टर होगा वो होगा घरेलू दर्शक और अपनी घर की कंडीशंस। पीवी सिंधु ने कहा है कि वो भारतीय सरजमीं पर इस टूर्नामेंट के लिए बेहद उत्साहित हैं।
2: Definitely, it gives me a lot of confidence and of course I'm really looking forward for the World Championships to start, and since it's happening in India, it's I think really excited and definitely, I mean, to answer to your question, I think after the Japan Open, I think winning that gave me a lot of boost and a lot of confidence.
1: संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सिंधु ने खेलों के क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की है।
3: I think it's really good to have that scope of thinking and making it happen in India. I think PM sir has that vision that, you know, we can host it. You know, there's nothing wrong in making it happen when PM sir said, you know, we want to make it happen. Now we all have to like work backwards since, you know, we have the facilities. It's just that we have to improvise it in a right way. And I'm hoping that we could, and that will be an amazing thing that even we can do it.
1: वहीं पीवी सिंधु के साथ उन्नति हुड्डा ने भी कहा कि वह भारतीय सरजमी पर खेलने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं।
4: It's my first world championships and it's happening in India. So I am really excited and looking forward for each match at a time. So I prepared well mentally and physically.
1: और आयुष शेट्टी ने अपनी तैयारियों को लेकर के क्या कहा है, चलते चलते ये भी सुन लिया जाए।
5: As far as I think world championship, I think it's a really big turn for everyone, even you know, for the world's best players. I think it's a huge stage and it's happening in India. I think it's more special for me.
1: तो एक बड़ा अवसर होगा इन खिलाड़ियों के लिए। और नई दिल्ली में आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देश भर में ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित रहा। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पहलवान शिवानी पवार ने कहा कि इस तरह की पहल हमारे दैनिक जीवन में फिटनेस को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।
6: संडे ऑन साइकिल का मेरा ये पांचवा इवेंट है। संडे ऑन साइकिल हमारे निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है फिटनेस की तरफ जाने के लिए, ज्यादातर उन लोगों के लिए जो अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जो घर में रहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा फिटनेस का एक मॉडल है।
1: और विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों 2025 की स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज पूनम बिश्क ने भी इस दौरान साइकिल चलाई और लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फिट इंडिया अभियान एक बेहतरीन पहल है जो साइकिल चलाना किफ़ायती और प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ फिट रहने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, इसके बारे में संदेश देती है। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली

0: में शुरू पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और

0: प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जाँच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सकें। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।

0: यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
1: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said that

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। रात के 9:15 हुए हैं, आप सुने कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: इसी गजल के साथ सुगम संगीत का प्रोग्राम यही खत्म होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 9:30 बजे अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
2: समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर ये वज्रपात से कम न था।

0: जी, राजमाता पद्मावती और राजपुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।
1: पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती, हमारी प्रसन्नता पर काल की कुदृष्टि पड़ गई। काल की कुदृष्टि,
2: अपने आप को संभालिए राजमाता।
3: राजमाता, क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी।

0: नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
1: मैं सती नहीं होंगी। मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। मां दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए।
0: पुत्री,
1: आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान में समर्पित होगी।
0: पुत्री दुर्गावती।
2: महारानी, महारानी, प्रणाम। राजमाता,
0: क्या बात है दीवान आधार सिंह?
2: क्षमा चाहता हूं राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
0: चंद्र शाह? बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुंवर चंद्र शाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें। लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दीवान जी।
2: जी राजमाता।
0: हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाते समय यदि चंद्र शाह कोई भी चाल चलता है तो हमारी आज्ञा है उसे बंदी बना लीजिए।
2: जो आज्ञा राजमाता।

0: और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद्रशाह ने वीर नारायण के राज्याभिषेक में रुकावट डाली और रानी ने उसे बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वो 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अवसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था।
1: जिल्ले इलाही गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता के चर्चे हैं।
2: बहादुरी, महानता, बीरबल, हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है।
1: हुजूर, गढ़ा एक छोटा और शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं।
2: खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा उठने की जुर्रत करता है, हर उस

0: राजा और राज्य को जीतना होगा जो सचमुच महान हैं या हो सकते हैं। हम किसी और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते।
1: बेहतर जहां पना,
2: लेकिन
0: लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा है, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों करना पड़ता है अगर महान बनना है तो? क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे, कहेंगे कि बैरम खान ने अकबर को तराशा और शहंशाह बना दिया, वरना वो तो इस लायक ही नहीं था।
1: और जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे,
0: मिट्टी में मिला देंगे उन्हें भी और उनके नाम को भी।
2: जहां पना, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं।
0: मिलने आया है या कुछ मांगने? ये रतनपुर है कहां?
1: जहां पना, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है।
0: ओ, तब तो पक्का दुर्गावती के खिलाफ कोई मशवरा देने आया होगा। यहां के राजाओं को दूसरे राजा से इतनी जलन क्यों होती है बीरबल? बुलाओ उसे, देखें क्या है उसके पास देने या सुनाने के लिए।
2: रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो।
3: जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे।
0: बैठिए। आप यहां किस लिए आए हैं कल्याण शाही?
3: जहां पनाह, गोंड राज्य की रानी दुर्गावती ने जब से मियां बाज बहादुर को मात दी है।
0: हमें मालूम है, कुछ ऐसा कहिए जो हम नहीं जानते।
3: जी, तब से हम पड़ोसी राज्य उनसे बहुत डरे हुए हैं। वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं।
0: अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मालवा पर हमला बोल दिया होता। क्यों बीरबल?
1: जी, आपने सही फरमाया हुजूर।
3: जहां पना, मालवा पर हमला ना करके वो खुद को महान दिखाना चाहती हैं, और असलियत यह है कि वो मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रही हैं।
0: भला वो किसके दम पर?
3: एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है जहां पना, और दूसरे उसके पास एक नायाब हाथी और एक नायाब सलाहकार है जहां पना।
0: इन दोनों को हमारे दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजा जाए। क्या हुआ बीरबल, तुम खामोश क्यों?
1: आलीजा, अंदेशा है कि बेवकूफी में वो कहीं आपके हुक्म की बेअदबी ना कर दे।
0: तब तो और भी अच्छा होगा बीरबल, हमें गढ़ा को कुचलने का सीधा बहाना मिल जाएगा। महान हिंदुस्तान के एक और महान राज्य की महान रानी की महानता साबित होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।

0: महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है।
1: मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे।
0: जो आ गया।

0: रानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। कहा है कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजेंगे।
1: और इस थाल में ये तोहफा क्या है?
0: दमकते सोने का बना पिंजरा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक औरत का काम राजपाट संभालना और जंग के मैदान में उतरना नहीं है, महल के अंदर रहना है।
1: आप अतिथि गृह में विश्राम करिए, हमारा जवाब लेकर जाइएगा।
0: जो हुक्म महारानी साहिब।
1: जलालुद्दीन की ये जरूरत कि उसने हमारे प्रिय सरमन हाथी और आधार सिंह जी आपको मांग लिया।
2: वो ऐसा ही करता है महारानी, वो कमजोर राज्यों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है।
1: जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है।
2: आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा।
1: उस मुगलिया दूत को वापस यहां लेकर आओ।
3: जो आ गया महारानी।
0: हुक्म महारानी साहिबा।
1: अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हां, उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे।
0: जो हुक्म।
2: महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
4: वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए?
1: एक पिंजिना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजिना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले।
4: परंतु सोने का?
1: हाँ, ठीक उतने ही वजन का जितने वजन का उसका पिंजरा है, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि गढ़ा की महारानी कोई भिखारिन नहीं है जो उसके सोने से दब जाए।
5: और इसे लेकर दिल्ली कौन जाएगा माँ?
2: मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझें।
1: उचित है। आखिर उस अहंकारी को पिंजिना भिजवाने का सही अर्थ भी तो समझाना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए।
2: जो होगा महारानी।

0: होशियार, शहंशाह हिंदुस्तान, जिल्ले इलाही, जिल्ले सुभानी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं।
1: जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे, जहां पनाह, गढ़ा रियासत के मंत्री आधार सिंह आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
2: अंदर ले आओ।
3: प्रणाम।
2: तो तुम हो आधार सिंह?
3: जी हां जहां पना, छोटी रियासत का एक छोटा सा कारिंदा।
2: बहुत नाम सुना है तुम्हारा।
3: आपने हमारी महारानी जी को एक तोहफा भेजा था, उन्होंने भी आपके लिए ये विशेष

0: उपहार भेजा है।
1: देखे तो इस थाल में है क्या, तोहफा पेश किया जाए।
0: ये
1: क्या है? ये
0: पिंजना है हुजूर, हमारी भाषा में इसे पिंजना कहते हैं। इससे कपास धुनी जाती है सूत तैयार करने से पहले।
1: पिंजना, वो भी सोने का। बीरबल, इस पिंजने का क्या मतलब हुआ?
2: आलीजा, महारानी दुर्गावती का मतलब है कि आप गढ़ा जीतने के मर्दाना ख्वाब छोड़कर स्त्रियों की तरह रुई ढूंढने का काम शुरू करते हैं। एक और अर्थ भी हो सकता है हुजूर।
1: वो क्या?
2: अगर आपने गढ़ा पर हमला किया तो आपको कैद में डाल देंगे। और आलीजा, कैदियों को कपास ढूंढने का काम दिया जाता है और आपको भी
1: बिनी जुर्रत। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास।
0: आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना भी है और शौर्य भी। हमारा राज्य करेले की तरह है, जो हमें निगलने की कोशिश करेगा उसका गला कड़वाहट से भर जाए।
1: आधार सिंह, जंग के लिए तैयार रहे, जाकर कह देना दुर्गावती से।
0: महारानी दुर्गावती कहिए आलीजा, महारानी दुर्गावती।
1: हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती। जा सकते हो तुम। आसफ खान, आसफ खान, जंग की तैयारी की जाए। गढ़ा पर तुरंत चढ़ाई करो, हमें गढ़ा चाहिए, समझे तुम?
3: ऐसा ही होगा जहां पर।

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को?
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
3: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने हजार सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसी मुगल सेना के हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान पूरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
1: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
2: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
1: जी महारानी।
2: अब पीछे देखने का समय नहीं है।

0: सुरक्षित पालकी में रखकर दुर्ग की तरफ ले जाओ, जाओ।
1: मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी।
2: नहीं मारा नहीं,
1: इस जलालुद्दीन को तो पता चले कि किससे सामना हुआ था उसका।
2: महारानी काफी खून बह गया है, संभाले अपने आप को महारानी।
1: ये आओ,
0: महारानी, महारानी, महारानी,
1: कौन?
0: रानी, मैं आपका सेवक आधार सिंह।
1: आधार सिंह, लगता है बहुत खून बह गया है मेरा। ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। सामने देखिए, वो उनकी विशाल सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। इसके लिए, इससे पहले कि वो दुष्ट मुगल मुझे बंदी बनाकर मेरा अपमान करे, ये लीजिए मेरी कटार, और अपने हाथों से मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए, मुझे वीर गति दे दीजिए।
0: नहीं महारानी, नहीं, ये अधर्म, ये दास अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता महाराज, कभी नहीं। हम आपको मार कर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आप चलिए, आप चलिए, हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं।
1: चलिए, क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो? गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी? नहीं, रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधार सिंह जी, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना चाहती है।
0: मान, मान, मान, मान,

0: 말하네, 말하네. 말하네. 단내 아빠 해발이 난 말하니 돌아가면 단내.
1: ये युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता, लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए चंदेल राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई जो आज भी जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी।
2: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौरभ। इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.akashvani@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर रात के 10 बजे हैं। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आपसे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से रिली किया जाएगा।
1: सरकार, केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेती रहती हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के 7 चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
2: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम सरकार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Raag Malkaus in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Raag Megh. It begins with an alap and the composition is set to gat in rupak tal.

0: आप रितम सरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Rag Kirwani.
2: The composition is set to Kaharwa Taal.

गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शौरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औशित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात

0: यही संपन्न होती है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग किरवानी इन द गिटार रिसाइटल बाय रीतम सरकार। ही वॉज अकॉम्पनीड ऑन द तबला बाय अशीत जाना। And with this, we come to the end of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल है। रात के 11 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: जुबैर, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित किया जाएगा।

0: Master's residence on the 20th of this month. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha for tomorrow. Similar conditions are also expected over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Eastern Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Uttarakhand for the next 2 days. The Met Department has said that heavy rainfall is expected over Assam, Meghalaya, Bihar, Haryana, Chandigarh and Delhi for tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 16.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर, आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारी इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।